ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि। तदनुसार 16 मई 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

6:05 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम सुप्रभात, 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 से लेकर 9 बजे तक सुनिएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। सुबह 9 बजे प्रस्तुत करेंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: स्वर्ण मंदिर से शबद कीर्तन।
1: सतगुरु नानक परगटे आ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 6 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेंसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में 3रा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता

0: के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: सुबह के 6:05 आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल 102.6 पर कार्यक्रम सुप्रभात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में मैं हूं नेहा, आपके साथ। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की तारीख की बात की जाए तो 16 तारीख है, शनिवार का दिन है, मई का महीना चल रहा है और आप सभी चेहरे पर मुस्कुराहट, मन में विश्वास, आंखों में उम्मीद की चमक के साथ करें अपने दिन की खूबसूरत शुरुआत। सुप्रभात।

साथियों, जिस बदलाव को आप दुनिया में देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत स्वयं से कीजिए। महात्मा गांधी के ये शब्द आज भी उतने ही सच्चे और प्रेरणादायक हैं। अक्सर हम दुनिया को बदलने की बात करते हैं, लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपने विचारों, अपने व्यवहार और अपनी छोटी छोटी आदतों को बेहतर बनाते हैं। एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द, किसी की मदद का छोटा सा प्रयास, यही वो कदम है जो समाज में बड़े परिवर्तन की नींव बनते हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

सुबह के 6:20 और आप सुन रहे हैं सुप्रभात। मेरे साथ मेरा नाम है नेहा। साथियों, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ चलिए। ये एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है जो बहुत ही अमेजिंग सी बात हमें बताता है। जिंदगी का सफर केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि रिश्तों, किसी का साथ और अपनापन महसूस करने का भी।

तो नाम है। अकेला इंसान शायद जल्दी आगे बढ़ जाए, लेकिन साथ चलने वाले लोग सफर को आसान, सुंदर और यादगार बना देते हैं। क्योंकि जब हाथों में हाथ हो तो मुश्किलें, मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लग जाते हैं और छोटी सी खुशी भी एक जश्न बन जाती है।

0: के जीवन में भी ऐसी ही बहार बनी रहे, जीवन में ढेर सारी खुशियां हो और परिवार का प्यार बना रहे, इसी आशा के साथ मैं नेहा अब आपको लिए चलती हूं हमारे प्रायोजित कार्यक्रम की ओर। 6:29 और 40 सेकंड हो गए हैं और 6:30 पर आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। और अब आपसे भेंट होगी 7:00 समाचारों के साथ और 8:00 गुड मॉर्निंग डेली NCR के दूसरे घंटे में मैं नेहा एक बार फिर से आप सभी से मुखातिब हो जाऊंगी। और आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुनते चले आ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि बुद्धिमान वो है जो अपनी समस्त कामनाओं के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए या भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए सिर्फ भगवान की ही आराधना करे, श्री कृष्ण की ही आराधना करे। और सुखदेव गोस्वामी जी ने ये भी बताया कि भागवत प्रेमी भक्तों का संग करना बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं के संग में हमें भगवान की लीला कथाओं की प्राप्ति होती है और उन लीला कथाओं से दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे भवसागर की जो भयानक थपेड़े हैं वो शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवत आनंद का अनुभव होने लगता है, इंद्रियों के विषयों में फिर आसक्ति नहीं रहती और भगवान से प्रेम हो जाता है। तो ये सब सुन करके, क्योंकि आपको याद होगा सूद गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में भागवत जी की कथा सुना रहे हैं जो कि उन्होंने सुखदेव जी के श्रीमुख से सुनी थी, उस समय जबकि महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाई थी, क्योंकि वहाँ उस समय बहुत ऋषि मुनि उपस्थित थे, उनमें सूद गोस्वामी जी भी थे। तो नैमिषारण्य में वही कथा शौनक आदि ऋषियों को सूद जी सुना रहे हैं। तो ये सुन करके शौनक जी ने कहा कि सूद जी, महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी की ये बात सुनकर उनसे और क्या पूछा, वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। तो देखिए, ऐसा होता ही है जहां पर भगवान की कथाओं की प्राप्ति हो, भगवान की कथाओं की उपलब्धि हो, तो वो जगह वैसे ही बड़ी ही सौभाग्यशाली होती है। और जिनसे हमें भगवत कथा प्राप्त हो तो वो तो बहुत ही बहुमूल्य होते हैं। इसीलिए शौनक जी ने कहा कि सुखदेव गोस्वामी जी सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ। और जिस तरह से आपने उनके संवाद का वर्णन किया, जो उन्होंने महाराज परीक्षित के साथ बातचीत की, उसका जो वर्णन आपने किया, उससे ये भी पता चलता है कि सर्वज्ञता होनी एक बात है और सर्वज्ञता होने के साथ साथ वर्णन करना आना चाहिए। यानी कोई भगवान को जाने, भगवत तत्व को जाने पर बता ही ना पाए, तो फिर ऐसे भगवत संग में हमें बहुत अधिक कुछ लाभ हो नहीं सकता, क्योंकि भगवत कथा की प्राप्ति ही नहीं होगी, भगवत कथा सुन ही नहीं पाएंगे। इसीलिए अगर कोई भगवान के अनुभव से युक्त है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान के तत्व को जानता है, पर उसमें यह भी कला है कि वो बता भी सके, मधुर वर्णन कर सके, जिससे श्रोता के हृदय में भगवान के प्रति भाव प्रकट हो जाएं, उत्पन्न हो जाएं, तब तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है ना। तो इसीलिए यहां पर शौनक जी कह रहे हैं कि सूद जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वो बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं, आप हमें बताइए। क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथा में ही होता है। तो यहां पर शौनक जी ये बात भली भांति जानते हैं कि संतों की सभा में बातचीत क्या होती है। संत अगर आपस में मिल जाएंगे तो वो कोई भी बात क्यों ना करें, वो बात अंततः भगवत कथा में ही पर्यवसित होगी, यानी भगवत कथा ही श्रीमुख से निकलने लगेगी संतों के। बात कहीं से भी क्यों ना शुरू की गई हो, लेकिन वो बात बढ़ते बढ़ते भगवान की रसमयी लीला कथाओं में ही पहुंच जाती है। तो इसलिए संतों की जो बातचीत है उसको भी बड़े प्रेम से सुनना चाहिए, क्योंकि बातें जो हैं उस समय नहीं लगता कि ये भगवान के बारे में हो रही हैं, लेकिन वो लौकिक बात भी जब भगवान से संबंधित हो जाती है, यानी
शुरुआत हुई लौकिक बातचीत से, सांसारिक बातचीत से, और फिर भगवान की कथा का आरंभ हो गया, तो वो लौकिक बात भी सुनने योग्य होती है, क्योंकि उसका पर्यवसान यानी उसकी परिणति भगवत रसमयी कथा में हो जाती है। तो पांडुनंदन महारथी महाराज परीक्षित तो वैसे ही बड़े भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वो श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे, ये हमने सुना ही है ना। सुद गोस्वामी जी ने बताया ही था शौनक आदि ऋषियों को, तो वही याद दिला रहे हैं शौनक जी कि आप ही ने बताया था हमें कि महाराज परीक्षित बचपन से ही बड़े भगवत भक्त थे। ऐसा नहीं है कि बड़े हुए हैं तो संतों का संग मिला है और संतों के संग से भक्ति उन्हें प्राप्त हुई, जी नहीं।

वो तो पांडुनंदन है, पांडुनंदन। अर्थात वो तो पांडवों के वंशधर हैं, उसी वंश में पैदा हुए हैं जहां श्री कृष्ण की भक्ति स्वाभाविक रूप से हुआ करती थी। तो बचपन से ही उनका भगवद भक्त होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई अलग सी बात नहीं है, है ना। और इसलिए जब परीक्षित जी बचपन में खेलते भी थे जिन खिलौनों से, उस समय भी वो खिलौनों से खेलते खेलते श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं हैं, उन लीलाओं का ही अभिनय करते थे, उन लीलाओं को लेकर ही वो खिलौनों से खेलते थे। और ये तो थी परीक्षित जी की बात, और फिर सुखदेव जी की बात भी ऐसी ही है, क्योंकि 16वें श्लोक में शौनक जी कह रहे हैं, व्यास किश्च भगवान वासुदेव परायणः उरुगाय गुणोदारः सदाम स्युरहि समागमे। कि भगवनमय श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही तो भगवत परायण हैं, और ऐसे ही संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। तो आप हमें बताइए कि आगे क्या हुआ, उन्होंने क्या बातचीत की, उन बातचीत के बारे में हमें बताइए। तो देखिए, भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी, यहां भगवान का अर्थ है वो जो सर्वज्ञ होते हैं। सुखदेव जी सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानते थे, भूत वर्तमान भविष्य काल कुछ भी उनसे छिपा हुआ नहीं था। भक्ति के प्रभाव से सब कुछ वो जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि वो वासुदेव परायण थे, भगवान के भक्त थे। तो परीक्षित जी भी और सुखदेव जी भी दोनों ही साधु हैं, और जहां दो साधु संत मिल जाएं, भगवान के परम भक्त मिल जाएं, तो वहां श्री कृष्ण के गुण कीर्तन रूपी उदार कथा का होना स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक ही है। अर्थात भगवान के जो गुण हैं वो तो बहुत ही उदार हैं, विश्व प्रसिद्ध गुण हैं। इसीलिए यहां आया उरुगाय गुणोदारा। उरुगाय अर्थात जिनकी बहुत ही कीर्ति है, बहुत ही जो प्रसिद्ध हैं, ऐसे विश्व प्रसिद्ध श्री कृष्ण के जो समस्त गुण हैं वो बहुत ही उदार हैं, और वो सबके मन की वासनाओं को पूर्ण करते हैं। जो जैसा चाहता है उसे भगवान वैसा ही प्रदान करते हैं, है ना। तो जो उस समय सभा में उपस्थित थे, अर्थात जो उस समय उस सभा में थे, यानी जब सुखदेव गोस्वामी जी मिले महाराज परीक्षित के साथ, तो उस समय बहुत संत वहां पर उपस्थित थे। तो उन सब के हृदय में जो वांछाएं थीं, और वो वांछा क्या थी, वो इच्छा क्या थी, वो थी भगवत कथाओं को सुनने की इच्छा। तो उसको प्रदान किया सुखदेव जी ने, और बाद में भी जो जन्म ग्रहण करेंगे उनके मन की भी अभिलाषा को सुखदेव जी ने ही पूर्ण किया है भागवत जी को प्रकट करके। तो दोनों जब मिले हैं तो अवश्य ही बड़ी ही सुंदर कृष्ण कथा भी हुई होगी, ऐसा शौनक जी कह रहे हैं। शौनक जी आगे 17वें श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। इस समय शौनक जी तत्व की बात बता रहे हैं सबको, हम सबके लिए बहुत जरूरी बात। आयुर हरती वै पुंसा मुद्यन स्तम च यन्न सव तस्यर्ते यत क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्दया। कह रहे हैं कि हे सूत जी, जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में बीत रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान

0: वन सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से सब मनुष्यों की आयु छीनते जा रहे हैं। देखिए यहां शौनक जी बहुत ही व्याकुल हैं भगवत कथा को सुनने के लिए, और वो एक सच्चाई जानते हैं कि सिर्फ भगवत भक्त जो भगवान की कथाओं को सुनते रहते हैं उन्हीं की आयु सफल है ना। जो उत्तम श्लोकों से पूजित श्री हरि की कथाओं में अपने जीवन को बिताते हैं उन्हीं की आयु सूर्यदेव हरण नहीं करते हैं, बाकी सब की आयु प्रतिदिन ही व्यर्थ जा रही है। तो देखिए यहां पर शौनक जी कह रहे हैं कि हे सूत जी, श्री कृष्ण कथा को सुनने में देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल विलंब नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहां उन्होंने कहा कि ये जो सूर्य हैं ये जब उदित होते हैं और फिर अस्त होते हैं, यानी पूरा दिन बीत जाता है, तो ये श्री कृष्ण कथा विहीन लोगों की परम आयु हरण कर लेते हैं, किंतु श्री कृष्ण कथा युक्त लोगों की आयु वो हरण नहीं करते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। अर्थात अगर कोई निमेश काल मात्र के लिए भी भगवान की कथा सुनने लगता है तो उसकी आयु सफल हो जाती है। यानी निमेश अर्थात बहुत अल्प समय भी अगर कोई भगवान की कथा सुनता है तो उसकी समस्त आयु सफल हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक पेड़ है और पेड़ की शाखा पर एक फल उग गया तो उस वृक्ष को कहा जाता है फलवान वृक्ष, है ना। और अगर उसकी प्रत्येक शाखा में ही फल लग जाए तब तो बात ही क्या है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्त आयु भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनने में बिताता है तब तो बात ही क्या है, लेकिन अगर अल्प आयु यानी अल्प समय भी वो भगवान की कथा को सुनता है तो भी उसका जीवन सफल है। तो अगर कोई कहे कि अच्छा अगर ऐसा ही है तो हमने देखा है भाई जो कृष्ण कथा सुनते हैं वो भी तो मर जाते हैं, तो क्या वो मरेंगे नहीं? तो उत्तर बोला गया है कि बिल्कुल मरेंगे नहीं। कैसे मरेंगे नहीं? क्योंकि वो लोग अपने शरीर को छोड़ने के बाद सीधा भगवान के पार्षद हो जाएंगे, तो वो एक आम आदमी की तरह मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। ये है भक्तों की प्राप्ति, है ना। जैसे अगर कोई सतपात्र को धन दान दे तो उसका जो धन है कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होता, समाप्त नहीं होता है। और इसको इस बात को इसीलिए कहा जाता है कि भाई तुमने बहुत दान किया है तो मरने के बाद तुम्हें ऐसा जीवन प्राप्त होगा जहां तुम्हें अनंत भोग प्राप्त होगा। इसी प्रकार से श्री कृष्ण को जिन्होंने अपनी परम आयु समर्पित कर दी है, यानी श्री कृष्ण की कथा सुनते सुनते कहते कहते जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया है, तो वो व्यक्ति भगवद लोक में, वैकुंठ में, गोलोक में जाकर के उनके पार्षदत्व को प्राप्त करेगा और उसकी अक्षय परम आयु हो जाएगी। अर्थात उसकी जो परम आयु है कभी समाप्त ही नहीं होगी। लेकिन अगर कोई कहे कि ठीक है भाई ये तो आपने कह दिया, मगर हमने तो देखा है कई भक्त हैं जो रोग से मर जाते हैं, कई भक्त हैं जो जन्म भी लेते हैं मरते भी हैं, रोग भी होता है। आप कह रहे हैं कि उनकी तो आयु सूर्यदेव हरण ही नहीं करते हैं, तो इसके पीछे कोई रहस्य है क्या? तो इसके पीछे क्या रहस्य है जानेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811

0: 56747 or 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
1: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा, और हम चर्चा कर रहे हैं बड़े ही सुंदर श्लोक पर, जहाँ पर शौनक जी, जो शौनक ऋषि हैं, वो सूद गोस्वामी जी से कह रहे हैं कि आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च यन्नसौ तस्यर्ते यत क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। यानी हे सूद गोस्वामी जी, जिसका भी समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान या फिर श्रवण में बीत रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ हो रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त होने से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। और हम बात ये कर रहे थे कि हम तो ये देखते हैं कि भक्त जो हैं वो भी रोगों को प्राप्त होते हैं, रोगी हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, तो ये सब क्यों होता है, वो भी मरते हैं, ये सब क्यों होता है। तो इसका उत्तर हमारे आचार्य देते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रतिपाद जी। वो कहते हैं कि देखिए, भक्तों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए, अर्थात भक्त जब किसी रोग से आक्रांत हो जाते हैं तो फिर वो बहुत उत्कंठित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दीनता से भर जाते हैं और बार बार बार बार कहते हैं कि हे प्रभु, जब ये सुना कि आप दीन बंधु हैं, तब बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा ही उत्साहित हो गया मैं। परंतु जब पता चला आप भक्त वत्सल हैं, तो मेरा अभक्त हृदय कांपने लगा। तो जो भक्त हैं वो कभी भी अपनी भक्ति पर अहंकार नहीं करते हैं, तो जब कोई रोग उन्हें घेरता है तो उनकी दीनता और बढ़ जाती है, हाहाकार बढ़ जाता है, व्याकुलता बढ़ जाती है भगवान को प्राप्त करने के लिए। वो कहने लगते हैं कि हे भगवान, मेरा जो चित्त रूपी गजेंद्र है वो भ्रम संकुल संसार रूपी समुद्र में इस दुर्भेद्य यानी जिस मगरमच्छ को मैं अपने बल से हटा नहीं पा रहा हूँ, वो है तीन ताप। तीन ताप रूपी प्रबल मगरमच्छ ने मुझे पकड़ रखा है, कहाँ, इस संसार रूपी समुद्र में। और मेरा चित्त रूपी जो गजेंद्र है वो बड़ा ही भयभीत हो गया है और उच्च स्वर में आपको बुला रहा है, आप अभी हे प्रभु भक्तों के क्लांति विनाशक समुज्ज्वल सुदर्शन के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। यानी आप अभी अपने उज्ज्वल दर्शन के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। तो बार बार जो भक्त है वो पुकारता है, कहता है प्रभु आप तो अनाथों के बंधु हैं और मैं तो विविध बाधा से घिर गया हूँ और अगाध संसार समुद्र के प्रवाह में डूब रहा हूँ, अब आप देरी ना कीजिए, एक बार अपने हाथों का सहारा मुझे दे दीजिए। तो इस तरह बार बार बार बार आंसू पोंछता रहता है, रोता रहता है। तो ये जो उत्कंठा बढ़ती है भक्त के हृदय में, तो वो भगवान के प्रेम को उसके हृदय में जल्दी से जल्दी प्रकट कर देती है। तो इसके लिए भी भगवान जो है अपने भक्तों को कोई ना कोई रोग दे देते हैं कि ठीक है, और ये रोग जो है उनके प्रारब्ध का हिस्सा नहीं होता है, ये भगवान की इच्छा होती है कि ठीक है, इससे तुम्हारी उत्कंठा और बढ़ेगी और इतना प्रेम तुम प्राप्त कर लोगे, तुरंत तुम मुझे ही प्राप्त कर लोगे। और दूसरी बात यह कि भगवान भक्ति को गोपनीय रखना चाहते हैं, भक्ति को रहस्य के पर्दों में रखना चाहते हैं, कोई कर्मी ज्ञानी वो जान ना पाए भक्ति की महिमा को। इसलिए भी भगवान अपने भक्तों के रहस्य को रखने के लिए, उनको रहस्य के पर्दों में रखने के लिए भक्तों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये प्रदान करते हैं, है ना। लेकिन वहां पर प्राकृतिक काल या कर्म इसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यानी किसी कर्म की वजह से कोई कष्ट मिला हो, दुख मिला हो, रोग मिला हो, ऐसा नहीं होता है। या कोई काल भगवान के भक्तों को ग्रास कर सके, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ जो बात कही गई कि जो सूर्य हैं वो जब उदित होते हैं और उसके बाद जब वो अस्त हो जाते हैं तो बलपूर्वक उन लोगों की आयु को वो छीन लेते हैं जो भगवान की कथा में मुहूर्त काल भी यापन नहीं करते हैं, जरा भी भगवान की कथा नहीं सुनते हैं। लेकिन जो लोग भगवान की कथा चाहे अल्प समय के लिए, कम समय के लिए भी सुनते हैं, उन्हीं की आयु वो वर्धित करते हैं, बढ़ाते हैं। क्योंकि उसी मुहूर्त काल में जब वो भक्त हरि कथा सुनते हैं तो उस हरि कथा से उनकी सर्व सिद्धि हो जाती है, सर्व सिद्धि। तो यहाँ शौनक ऋषि जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हैं सूत गोस्वामी जी के श्रीमुख से भगवान की कथा सुनने के लिए, इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। बात भी सही है। देखिए बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो भगवान की महिमा को समझ पाते हैं, जो समझ पाते हैं कि भगवान ही हैं जिनका आश्रय लिया जा सकता है इस संसार में। और अगर किसी का भी हम आश्रय लेते हैं तो वहाँ से हमें पूर्ण रूपेण यानी पूरी तरह से ऐसी प्राप्ति नहीं होती है जहाँ हमें संतुष्टि मिल जाए। संतुष्टि तो भगवान के चरणों में ही मिलती है। इसीलिए आचार्य लोग कहते हैं, हरि हे जगतेर वस्तु जतो बद्ध सब स्वभावतः देश काल वस्तु सीमा शय। इस जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं सब की सब बद्ध अवस्था में हैं, बंधी हुई हैं, बंधन में हैं। सबको देश काल ने बांध रखा है। काल के साथ ही सारी वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं। आज दिख रही हैं, कल नहीं होंगी, सड़ जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, गल जाएंगी, है ना। तो तुम ही प्रभु सर्वेश्वर न हो सीमा विधि पर, विधि सब कांपे तब भय। पर हे प्रभु, आप देश काल से बंधे हुए नहीं हैं, आप तो सर्वेश्वर हैं, आप किसी विधि निषेध की सीमा के दायरे में नहीं हैं, बंधन में नहीं हैं। विधि भाग्य तो आपको देखकर ही कांपने लगता है, विधि कांपने लगता है आपको देख करके। सम व अधिक तब स्वभावतः असंभव विधि लंघी तब अवस्थान। प्रभु, प्रकृति का कोई नियम आप पर कार्य नहीं कर सकता है, आप प्रकृति की सीमा के परे हैं। आपके बराबर या आपसे अधिक कोई हो नहीं सकता, असंभव है। तो आप कैसे हैं प्रभु? स्वतंत्र स्वभाव धरो आपने गोपन करो, माया बले करी अधिष्ठान, तथापि अनन्य भक्त तुम्हारे देखिते शक्त सदा देखे स्वरूप तुम्हार। ए भक्ति विनोद दीन अनन्य भजन हीन भक्त पद रेणु मात्र सार। तो प्रभु आप तो देखिए पूर्ण स्वतंत्र हैं, अपने आप को गुप्त रखते हैं, माया फैला देते हैं आगे, लेकिन आपके जो अनन्य भक्त हैं वो आपको देख पाते हैं क्योंकि उनके हृदय में रहता है आपके प्रति अनंत प्रेम, और उस अनंत प्रेम की सहायता से वो आपको देखने में सफल हो पाते हैं। पर मैं तो अनन्य भजनहीन हूँ, अतिशय दीन हूँ, तो मैं आपको कैसे देखूँ, कैसे आपको पाऊँ? हाँ, एक ही बात समझ आती है, भक्त पद रेणु मात्र सार। भक्तों की चरण रज ही मेरे नैया को पार कर सकती है, और भक्तों की चरण रज को ही मैं सिर पर धारण करके

उन्हीं का आश्रय ले सकता हूं और भक्तों की पद रेणु के कारण ही आप मुझ पर दया करेंगे, ये मुझे जानकारी है। तो यहाँ पर शौनक जी भी यही बात कह रहे हैं कि भाई जब दो भक्त मिलते हैं तो भगवान की कथा होती ही है और भक्तों का आश्रय लेकर ही भगवान को जाना जा सकता है, भगवान को पाया जा सकता है।

0: दीक्षित जो बहुत ही बड़े भगवत भक्त थे, और सुखदेव जी भी बहुत ही बड़े भगवत भक्त थे। ऐसे संतों का संग आपने किया है सूत जी, आपने उन दोनों के बीच की वार्तालाप को सुना है, और हमें ये पता है कि दोनों के बीच में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। इसलिए आप उन समस्त बातों को हमसे कहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हम भगवान के गुणगानों से परिपूर्ण इन कथाओं को नहीं सुनते तो हमारी आयु व्यर्थ ही चली गई। तो बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर कह रहे हैं शौनक जी, और भी बहुत कुछ कहेंगे वो, जिस पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण, और इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए प्रेमधारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।
1: तीर्थ यात्रा करने से पुण्य होता है और उससे मनोरथ सिद्ध होते हैं, किंतु तीर्थ यात्रा मात्र परिश्रम ही है। ये केवल मन का भ्रम है कि तीर्थ यात्रा से पुण्य होता है। वास्तव में श्री गोविंद के चरणों की भक्ति ही सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाली है। इसलिए दृढ़ विश्वास पूर्वक श्री गोविंद का अनन्य भजन कर अज्ञानमय अहंकार और दूसरों के उत्कर्ष को सहन ना करने की प्रवृत्ति का त्याग कर देना चाहिए।

0: करना, उनका ही सदा संग करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक श्री कृष्ण नाम लीला और गुणों को सुनना चाहिए।
1: ये थी कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने हेमस्टरडम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल

0: नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, आपकी बाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी के इस बहुत प्यारे से चैनल पर मैं आपके साथ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संचू और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली से यार मेरे साथ। बिल्कुल जी, और आपको हम बता दें कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों लेकिन लगातार बरसने से नदियों में बहाव बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, इसलिए जरूरत यह है कि हम अपने प्रयासों को बढ़ाएं और जीवन में उन बदलावों की तरफ बढ़ें, परिवर्तन की तरफ बढ़ें जो हमें सकारात्मक बनाते हों, पॉजिटिव बनाते हों और हमें ऊंचाइयों की तरफ ले जाते हों। शनिवार है आज और बहुत सारे लोग छुट्टी का दिन है, आराम फरमा रहे हैं और हमारा FM आपने ट्यून नहीं किया तो प्लीज़ ट्यून कर लीजिए। वैसे बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ट्यून कर लिया है क्योंकि मुझे पता है कि आप हमारे इस प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना

संजीव श्रीवास्तव संजू। सो इस प्यारे से प्रोग्राम के शुभारंभ में सबसे पहले उस शक्ति को नमन जिसने बनाया इस संपूर्ण प्रकृति को,

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: जी हाँ, हर रोज सुबह 7 से 9 बजे तक आते हैं हम आपसे मिलने के लिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संजू, और हमारा ये चैनल है बहुत खास। क्यों है खास, बता देते हैं आपको, क्योंकि हम हैं आपके अपने और ये है आपकी अपनी आकाशवाणी।
2: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। विभाजन से पूर्व ऑल इंडिया रेडियो के कुल 9 रेडियो स्टेशन हुआ करते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में सूचना का मुख्य स्रोत थे। देश के बंटवारे के बाद इनमें से 6 स्टेशन दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली भारत के हिस्से में आए। शेष 3 स्टेशन लाहौर, पेशावर और ढाका पाकिस्तान के नियंत्रण में चले गए। स्वतंत्र भारत में रियासतों के विलय के साथ ही मैसूर, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, औरंगाबाद और बड़ौदा जैसे स्थानों के लो पावर स्टेशनों को भी मुख्य नेटवर्क में शामिल कर लिया गया। 1950 तक सभी स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क का हिस्सा बन गए। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी एट 90 और प्रस्तुतकर्ता थी निशा भारद्वाज और फिलहाल आप सुन रहे हैं
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं, तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

वेलकम बैक। वक्त हो गया है 7:25 और 26वें मिनट की तरफ सेकंड की सुई लगातार बढ़ रही है। वक्त ऐसे ही बढ़ता है और ये जो भी व्यक्ति इस वक्त के साथ अपने को कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर देते हैं वही इस वक्त की कीमत को समझ पाते हैं। आज है 16 मई, दिन है शनिवार जी 2026। लेकिन देखिए ना, ये जो वक्त है ना, ये जो दिन है, ये कैसे गुजर जाते हैं और ये जो पिछले बीते हुए दिन हैं उनमें हमने क्या क्या किया, ये सब हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। 16 मई का दिन इतिहास, विज्ञान, राजनीति, समाज सुधार और उपलब्धियों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हम अगर भारत की बात करें या विश्व की बात करें तो इस दिन अनेक प्रकार की घटनाएं घटी हैं, समाज, विज्ञान, शिक्षा और मानव जीवन पर जिनका गहरा प्रभाव पड़ा। गणितज्ञ किरुनाना छत्रे, समाज सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर, आध्यात्मिक गुरु स्वामी मुक्तानंद जैसे महान व्यक्तित्व का संबंध भी आज के दिन यानी 16 मई से है। साथ ही सिक्किम का भारत में विलय, अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री बनना, एवरेस्ट विजय की ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धियां और विज्ञान तकनीक से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन इतिहास में दर्ज हुई। तो अगर आप भी अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है। आज ही एक संकल्प मन में बांधिए और संकल्प से सिद्धि की जो बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री करते हैं उसके साथ ही आगे बढ़िए। देखिए, जरूर निश्चित रूप से, क्योंकि मनुष्य का संकल्प अपने आप में इतना अटल होता है कि वो एक दिन सिद्ध होता है और ये इतिहास के पन्नों में आपके नाम से दर्ज होगा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

वेलकम बैक अगेन, प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। जी हाँ, मैं हूँ आपका अपना संजय श्वासव संजू। और आपको बताएं कि आज एक बहुत ही प्यारे से हमारे देश के बहुत ही सुंदर से पहाड़ी राज्य, जो हमारे देश के बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र यानी पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, आज उसका स्थापना दिवस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिक्किम की। सिक्किम बहुत ही प्यारा सा हमारा राज्य, आज है उसका स्थापना दिवस जो 16 मई यानी आज के दिन मनाया जाता है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं सिक्किम वासियों को और पूरे देश के लोगों को। सिक्किम नामग्याल राजतंत्र द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य को 1975 में जनमत संग्रह के बाद भारत में पूर्ण रूप से विलीन कर दिया गया। इस जनमत संग्रह के बाद राजशाही का अंत हुआ और भारतीय संविधान की नियम प्रणाली के अंतर्गत यहाँ प्रजातंत्र का उदय हुआ। बहुत ही प्यारे से इस राज्य में अंगूठे के आकार का ये राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर और पूर्व में चीनी तिब्बती क्षेत्र, दक्षिण पूर्व में भूटान से घिरा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य भी हमारे देश का इसके दक्षिण में है। इसके अलावा यहाँ की अगर भाषाओं की बात करें तो यहाँ अंग्रेजी, नेपाली, लेपचा, भूटिया, लिबू और हिंदी आधिकारिक भाषाएं हैं। शासकीय कार्य अंग्रेजी में होता है। हिंदू धर्म और बज्रयान धर्म यहाँ के प्रमुख धर्म। राज्य की राजधानी, सबसे बड़ा शहर गंगटोक है। तो एक बार पुनः आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा हमारा ये नॉर्थ ईस्ट का, पूर्वोत्तर का ये राज्य है। आज उनके स्थापना दिवस पर हम इस पहाड़ी राज्य के लिए बहुत ही सुंदर शुभकामनाएं देते हैं। अगर आपने अभी तक सिक्किम को नहीं देखा है, आप नहीं गए हैं, वहाँ की छटा नहीं देखी है, वहाँ के लोगों से नहीं मिले हैं, वहाँ के व्यंजन का आपने स्वाद रस नहीं लिया है, तो अवश्य जाइए। क्योंकि जो वहाँ की छटा है, वहाँ की जो मनोहर प्रकृति है, हरियाली है, पहाड़ों का जो हुस्न है, निराला है।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

जी हाँ, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। आपके साथ मैं हूँ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव। संजू, वक्त हो गया है 7:43 पूरे हो चुके हैं, 44 मिनट की तरफ सेकंड की सुई लगातार बढ़ रही है। आज एक बहुत ही खास दिवस है जिसकी बात मैं जरूर करना चाहूंगा आपसे, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय डेंगू दिवस। हमारे देश में प्रतिवर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य डेंगू के बारे में जागरूकता को प्रसारित करना, निवारक कार्रवाई की पहल और रोग के संचारण और मौसम के समाप्त होने तक डेंगू को नियंत्रित करना है। बिल्कुल जी, आपको बता दें कि डेंगू न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में अपने कदम फैला चुका है, और इसके अलावा ये रोग अफ्रीका, भारत के अलावा अमेरिका, पूर्वी मध्य सागर, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम प्रशांत सहित 100 से अधिक देशों को प्रभावित करता है। भारत में खासतौर पर बारिश के मौसम में ये रोग आता है, और ये एक, जिसे कहते हैं कि डेंगू वायरस के कारण होने वाला एक वायरल रोग है जो मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, और ये जो मच्छर है वो दिन में काटती है। ज़रूरत यह है कि इसके से बचने के लिए हमें बहुत ज़रूरी बात यह है कि हम कुछ खास उपाय जो हम हर बार करते हैं और बिल्कुल बहुत ही जागरूकता के स्तर पर करते हैं, वो हम अगर हर बार अपनाएं तो शायद हम इस रोग से बिल्कुल निश्चित रूप से बच सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। जैसे कूलर हैं, छोटे बर्तन हैं, प्लास्टिक के बर्तन हैं, बाल्टी हैं, उपयोग किए गए ऑटोमोबाइल टायर हैं, पीने के पानी के जगह हैं, फूलदान हैं, इन सब का पानी जो है ज़रूर साफ़ कीजिए आप सप्ताह में एक बार, क्योंकि जो एडीज मच्छर है वो यहाँ अपने अंडे देते हैं और बिल्कुल जी उनका जो लावा है वहाँ पैदा ना होने पाए। ताकि इसके अलावा आपके घर में जो भी बर्तन है, जहाँ पानी, जो भी ऐसी सामग्री है जिसमें पानी इकट्ठा होने की संभावना, खासतौर पर साफ पानी, उसी में ये लोग ये अपना प्रजनन करते हैं। पानी के भंडारण के जो बर्तन हैं उनको ढक के रख दीजिए। इसके अलावा मच्छरों से काटने के बचने के लिए जो भी क्रीम होती हैं वो आप लगा सकते हैं। अपने घर में जालीदार दरवाज़ों का उपयोग कर सकते हैं। मच्छरदानी का तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उसका उपयोग लोग करते हैं मच्छरों से काटने बचने के लिए। पूरे शरीर को ढकने के लिए कपड़े आप पहनिए, और कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप सब मिलकर, हम सब मिलकर इस बीमारी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ देते हैं, जैसे हम हर बार छेड़ते हैं और छेड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम डेंगू से बच सकते हैं। बिल्कुल, आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। मैं हूं आपके साथ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव। संजू, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

जी हाँ, यह आकाशवाणी रेनबो, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। 8 बजे तक आपके साथ मैं संजीव श्रीवास्तव संजू रहूंगा, उसके बाद आएंगी आपके पास नेहा 8 से 9 बजे तक। अब एक और खास व्यक्तित्व की बात करते हैं हम जी, जिनका जन्म हुआ टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, 16 मई 1948 को मंगलेश डबराल साहब का जन्म हुआ। हिंदी की आधुनिक कविता के अत्यंत सम्मान्य और शीर्ष रचनाकारों में से एक हैं। आपने हिंदी कविता को नए अनुभवों से संपन्न किया। पहाड़ पर लालटेन उनका पहला संग्रह था जो 1981 में आया, और नए युग में शत्रु सबसे नया संग्रह जो 2013 में प्रकाशित हुआ। मंगलेश डबराल साहब का सुंदर सोदृश्य गद्य, उनकी यात्रा डायरी, एक बार आयोबा और लेखक की रोटी में देखा जा सकता है। ये अपने समय के सिनेमा, सांस्कृतिक सवालों और संचार माध्यमों के अलावा विश्व की संवेदनशील घटनाओं पर एक बहुत ही शानदार लेखन है। विश्व कविता के उनके कुछ सुनहरे उन्होंने अनुवाद भी किए हैं। तो चलिए, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और आप सुनते रहिए हमारे साथ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और आपको एक और बहुत ही खास व्यक्तित्व की बात हम जरूर करेंगे आज के दिन। जी बिल्कुल, मैं इनका नाम लिए बिना अपने प्रोग्राम से जाना अपने आप में सोचूंगा कि बहुत मेरे लिए बड़े सम्मान की, बड़े गर्व की बात होगी कि मैं जब अपने देश के सिपाहियों का नाम लेता हूं, अपने देश के वीर सैनिकों का नाम लेता हूं, मैं जब अपने देश के वीर उन जाबाज जवानों की बात करता हूं जिनकी बदौलत आज हमारा देश सुरक्षित है, तो मेरा सीना, मेरा हम सबका जो हृदय है वो फक्र से चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं कर्नल धर्मवीर सिंह जी की। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। 16 मई 2022 को आप वीर गति को प्राप्त हुए। भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों में से एक थे। सन 1971 में लौंगेवाल की लड़ाई में पाकिस्तान पर भारत की जीत में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 4 दिसंबर 1971 की रात लौंगेवाल चेक पोस्ट पर ज्यादा जवानों की तैनाती नहीं थी। लेफ्टिनेंट धर्मवीर की अगुवाई में वहां पेट्रोलियम टीम गश्त कर रही थी। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से कुछ हरकतें उन्हें सुनाई पड़ी। इसकी खबर तुरंत ब्रिगेडियर चांदपुरी जी को दी गई। इसके बाद तत्कालीन मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में और लेफ्टिनेंट धर्मवीर की अगुवाई में छोटी सी भारतीय टुकड़ी ने भारतीय पाकिस्तानी उस फौज को धूल चटा दी। जी हां, आपको अपनी इस बहादुरी के लिए, अपनी इस जिसे कहते हैं अदम्य साहस के लिए पराक्रम पदक, सामान्य सेवा पदक, सैन्य सेवा पदक, भारतीय स्वतंत्रता पदक, अफ्रीका स्टार, वर्मा स्टार पदक, स्टार वॉर मेडल, रक्षा पदक, सामान्य सेवा पदक से सम्मानित किया गया। आपको बताएं कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर बॉलीवुड निर्देशक जेपी जत्ता जी ने एक फिल्म बनाई थी, बहुत ही पॉपुलर रही, बॉर्डर, और उस फिल्म में अक्षय खन्ना ने कर्नल धर्मवीर सिंह जी का किरदार निभाया था। तो हम सल्यूट करते हैं अपने उन फौजी भाइयों को, उन सभी जवानों को जिनकी बदौलत, जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारा देश, हमारा राष्ट्र सुरक्षित है।

जी हाँ, नेहा बेनीवाल आ चुकी हैं बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ स्टूडियो में। फिलहाल मुझे यानी संजीव श्रीवास्तव को दीजिएगा इजाजत। मुलाकात होगी दिल के तराने गाने नए पुराने में 9 बजे।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जैसे ही सुबह के 8 बजते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर शुरू हो जाता है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का दूसरा घंटा। आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल को आप 102.6 के माध्यम से दिल्ली NCR में सुन रहे हैं और विभिन्न माध्यमों से आप विश्व भर में हमें सुन पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में मैं हूं नेहा, आपके साथ। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं कि सैटरडे मॉर्निंग में आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारे लोगों की छुट्टी होगी ऐसा मेरा मानना है, और समर वेकेशन तो स्टार्ट हो ही चुकी हैं। तो ऐसे में बताइए क्या प्लान है आपका आज सैटरडे को बिताने के लिए। अब देखिए, जिन्हें घूमना फिरना होता है, जिन्हें कहीं ना कहीं जाना होता है, उनके लिए बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कितनी गर्मी हो रही है, मौसम कैसा है। वो जैसे ही सांझ ढलती है ना, निकल पड़ते हैं अपनी कहीं ना कहीं तफरी करने, कहीं ना कहीं घूमने फिरने। कितना मजेदार होता है ना ऐसा समा। और पता है क्या होता है कि शब्द जो होते हैं ना, इनमें बहुत ताकत होती है दोस्तों। इसीलिए हमेशा ऐसे शब्द चुनिए जो उम्मीद जगाएं, है ना, और साथ ही हमें मुस्कुराने पर मजबूर करें, हौसला बढ़ाएं और दिलों में बहुत ही ज़्यादा प्यार भर दें। अगर इस तरह के शब्दों को हम अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो हमें तो अच्छा लगेगा ही, साथ ही आसपास के लोगों को भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा। गुड मॉर्निंग।

अब ये तो आप ही ने मुझे बताना है कि आपने क्या कसम खा के कहा है कि आपको मुझसे प्यार है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमसे बहुत प्यार है और हमें आपसे बहुत प्यार है, इस बात का यकीन मैं आपको दिला सकती हूँ। चलिए अब जरा तापमान के बारे में बात करें। आज क्या तापमान रहने की संभावना है? फिलहाल दिल्ली का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है और मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा और मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है, यानी कि गर्म दिन रहने वाला है। और फिलहाल आपको बता दूं कि मुझे बहुत ठंड लग रही है क्योंकि हमारे स्टूडियो में बहुत ज़्यादा ठंड का माहौल बना हुआ है। तो ऐसे में आप क्या कर रहे हैं? आप ज़रा गर्मी जो बाहर हो रही है ना, उससे अपने आप को बचा के रखिएगा। मैं भी अपना कुछ इंतज़ाम करती हूँ कि मैं यहाँ पर बड़ा ही अच्छे से शो कर सकूँ और मुझे बिल्कुल भी ठंड ना लगी। फिलहाल अगला गाना आपके लिए आ रहा है कुमार सानू की आवाज़ में। क्या म्यूज़िक से आप गाना गैस कर लेते हैं? अगर कर लेते हैं तो जल्दी से बताओ विद इन 5 सेकेंड्स कौन सा गाना है। 1, 2, 3, 4, 5, क्या बात है, अब तो आप डेफिनेटली बता देंगे। दामिनी से बहुत प्यारा सा गाना सिर्फ आपके लिए।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
1: मन की बात है, जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

सुबह के 8:20 हो चुके हैं और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में नेहा है आपके साथ। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि जामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी यानी कि RCA, मैं बात कर रही हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में, इनके RCA कोचिंग और करियर योजना केंद्र सिविल सेवा कोचिंग कार्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है जिसकी अंतिम तिथि इस महीने की 26 रहने वाली है। इच्छुक उम्मीदवार admission.jmi.ac.in के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आपको गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर हमेशा सुनते रहना चाहिए। रोज सुबह 7-9 के बीच में होता है ये विशेष कार्यक्रम और फिलहाल ये मस्ती भरा गाना सिर्फ आपके लिए।

0: बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

8:27 बाय द रेनबो क्लॉक एफएम रेनबो दिल्ली आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है नेहा, प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और यहां बातें हो रही हैं कि दिल्ली

0: एनसीआर में क्या खास हो रहा है। तो दोस्तों, आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हो रहा है, जिसका नाम है नेशनल रेटिनोब्लास्टोमा कॉन्क्लेव। अब ये क्या इवेंट है, इसके बारे में जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए मिस पूनम बगाई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या है ये कॉन्क्लेव, क्या खास है इसमें। पूनम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
1: हाँ जी, नमस्कार नेहा जी।
0: नमस्कार पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो दिल्ली पर।
1: थैंक यू सो मच टू हैव मी ऑन रेनबो दिल्ली।
0: इट्स आवर प्लेजर मैम। मैं आपसे जानना चाहूंगी, नेशनल रेटिनोब्लास्टोमा कॉन्क्लेव हो रहा है, सो पहला सवाल किसी के भी मन में आएगा कि रेटिनोब्लास्टोमा क्या चीज है?
1: रेटिनोब्लास्टोमा एक आंख का कैंसर है जो अधिकतर छोटे बच्चों को होता है और एक नवजात न्यू बॉर्न बच्चे को भी हो सकता है ये आंख का कैंसर, और ज्यादातर 5-6 साल की उम्र तक के बच्चों को होता है। ये एक आंख में पहले चमक आती है जिसको हम बोलते हैं कैट्स आई, और उससे लग सकता है कि हाँ शायद इस बच्चे को ये कैंसर हो। बहुत कॉमन नहीं है, बहुत रेयर है, कम बच्चों में होता है। बट सबसे बड़ी बात नेहा जी इसमें ये है कि ये कैंसर है जो बहुत क्योरेबल है और 90-95% सर्वाइवल रेट्स हैं। फिर भी अगर हमने मिस कर दिया, वो चमक नहीं देखी, डिटेक्ट नहीं किया, टाइम से डायग्नोज नहीं हुआ, तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों का एक बड़ा सा ट्यूमर बाहर निकल आया, और फिर उसके बाद अगर ये और फैल गया तो ये उसकी आंख के जरिए से उसके ब्रेन में ही जाएगा।
0: यानी
1: तो रेटिनोब्लास्टोमा
0: जी मैम है कि इसको एकदम से हमें डायग्नोज करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके और इसका इलाज संभव है।
1: बिल्कुल सही। तो रेटिनोब्लास्टोमा की लड़ाई में हमने पिछले डेकेड से ज्यादा, मेरे ख्याल 2013 से बहुत मेहनत करनी शुरू की, और हमने एक स्टेक होल्डर ग्रुप बनाया फाइट आरबी इंडिया, और उसके जरिए से हमारी कोशिश ये रही है कि हम बहुत मिलके सारे कैंसर सेंटर्स, एनजीओज, पेरेंट्स, सर्वाइवर्स, इंस्टीट्यूशंस, जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, कि हम मिलके इसको टैकल करें। क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि अगर इसका 90% क्योर रेट है तो हमारे देश में क्यों ना वो क्योर रेट।
0: बिल्कुल मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज का जो कॉन्क्लेव हो रहा है रेटिनोब्लास्टोमा के ऊपर, जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर का एक कॉन्क्लेव है, इसमें क्या खास बात होने वाली है आज?
1: तो नेहा जी, जो सबसे एक्साइटिंग बात ये है कि हमारे ये डेकेड्स लॉन्ग 10 साल से ज्यादा अभियान के दौरान धीरे धीरे करके कई सेंटर्स जुड़ गए। आज 90 से ज्यादा ऐसे इंस्टीट्यूशन या ट्रीटिंग सेंटर्स हैं जो कि ऑप्थल्मोलॉजी और ऑन्कोलॉजी दोनों, कैंसर और आंख दोनों देखते हैं। इन्होंने पार्टनर करके एक्सेस हमने 100% तक पहुंचा दिया। इसका ये मतलब है कि हर एक बच्चा जिसको अगर ये कैंसर हो सकता है, वो उसके पास सुविधा है कि वो पहुंच जाए उपचार तक।
0: बहुत ही काबिले तारीफ बात है, कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस, कि हर बच्चे के पास इलाज पहुंचने की सुविधा आपके माध्यम से पूरी हो पा रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के इस इवेंट में कौन ऐसे लोग हैं जो आप चाहेंगी कि भाग ले रहे हैं और ले सकते हैं?
1: तो कॉन्क्लेव हमारा, जैसे आपने शुरू में बताया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में है और वहां पे एकत्रित हो रहे हैं पूरे देश भर के पार्टिसिपेटिंग सेंटर्स, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, सर्वाइवर्स जो इनफैक्ट प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, रेटिनोब्लास्टोमा के सर्वाइवर्स, और साथ में सरकार भी जुड़ी है। और ये बहुत जरूरी है कि हम लोग मिलके इसका सामना करें, और उसके लिए साथ में हमने सरकार को भी बुलाया है। और हम चाहते हैं कि जो भी वहां पे आके कोई माता पिता किसी को लगता है कि हम इसके बारे में जानना चाहें, तो वो भी इनवाइटेड है। 2 बजे से 5 बजे का प्रोग्राम है। ये जानकारी कि अच्छा हमारे देश में इतना कुछ हो सकता है, हो रहा है, और ये एक मिसाल है नेहा जी, जो हम सारी दुनिया को बता सकते हैं कि हमारे देश में भी ये रिकग्निशन, ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा एक कैंसर है जहां हम नियरली 100% एक्सेस बता रहे हैं, 100% उसका फाइनेंशियल प्रोटेक्शन या आपको पूरा सहयोग मिलता है सरकार की स्कीम्स के जरिए, आयुष्मान भारत और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के जरिए, और इसके वजह से सर्वाइवल भी हमारे देश में बेस्ट देशों की तरह होने लगेगा। ये बहुत

0: अच्छी बात है मैम, जानकर बेहद खुशी हो रही है कि कैंसर जैसी बीमारी हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों की आंखों को परेशान करती हैं और उसका इलाज यहाँ पर मौजूद है आपके इनिशिएटिव के माध्यम से, और हमारे देश भर में जो काबिल डॉक्टर्स हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहूंगी।
1: नेहा जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है,
0: जी
1: उन्होंने ये तय किया, राज घोषित कर रहे हैं
0: जी,
1: कि स्क्रीनिंग गाइडलाइन, जो इम्यूनाइजेशन टीकाकरण होता है
0: जी,
1: उसकी गाइडलाइन में उन्होंने रेड आई रिफ्लेक्स को डाल दिया है। इसका मतलब है हर टीकाकरण में आपके बच्चे को जांच की जाएगी कि उसको ये रेड आई रिफ्लेक्स के जरिए से क्या उसको ये कैंसर है कि नहीं। और ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजी सोसाइटी भी जुड़े हैं और वो भी ये वाली जो जानकारी है सब आंखों के डॉक्टर्स को ऑल ओवर इंडिया तक पहुंचा रहे हैं।
0: बहुत बहुत अच्छा काम हो रहा है मैम ये, और मैं एक बार फिर से आकाशवाणी FM रेनबो की ओर से आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी आज के इवेंट के लिए। बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, बहुत सारे लोग इसमें आए ताकि उनको जानकारी मिले और उनके माध्यम से और लोगों को भी इस बीमारी के बारे में, रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में जानकारी मिले और सही समय पर इलाज भी हो सके।
1: थैंक यू सो मच नेहा, आई एम रियली ग्लैड। मीडिया जब अवेयरनेस क्रिएट करती है, रेनबो FM जैसे रेडियो जब लोगों को ये बताते हैं तो लोगों को यही पता चलता है कि हमारे देश में क्या कुछ संभव है और हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।
1: थैंक यू, बाय बाय।

0: केले का छिलका सड़क पे, ना भाई ना। चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर, ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

क्या बात है, चॉकलेट फिल्म का गाना सुन के क्या चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। मेरा तो कर रहा है, घर जाके खाऊंगी ना शो के बाद। फिलहाल आपको ये बता दूं कि दिल्ली में क्या खास हो रहा है। भाई कल यानी शुक्रवार को दिल्ली की पहली हाइड्रोजन शटल बस सेवा शुरू हो चुकी है और ये सेवा केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और प्रदूषण कम करना, साथ ही निजी वाहनों पर निर्भरता भी घटाना है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से स्थानों से ये बस गुजरती है, तो चलिए कुछ स्थानों के बारे में आपको बता दूं। कार्य भवन, विज्ञान भवन, निर्माण भवन, अकबर रोड, बड़ौदा हाउस, रेल भवन, शास्त्री भवन जैसे प्रमुख सरकारी कार्यालयों से ये बस गुजरती है। और इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो करीब 35 यात्रियों के बैठने की इसमें क्षमता है और जीपीएस सुविधा से ये बस लैस है। साथ ही रियल टाइम निगरानी की व्यवस्था भी इसमें की गई है। किराए की बात करें तो 10 से 15 रुपए का किराया रखा गया है और आप जो टिकट है वो ले सकते हैं यूपीआई और नकद माध्यम से भी आप टिकट ले सकते हैं, यानी कि कैश देकर भी आप टिकट ले सकते हैं। संचालन समय की बात करें तो सोमवार से शुक्रवार ये बस चलेगी सुबह 7:30 से दोपहर 12:30।

तक, और उसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच ये बस चलेगी, और हर 30 मिनट में ये बस सेवा उपलब्ध रहने वाली है। तो देखिए, आप अगर दिल्ली वाले हैं और असली दिल्ली वाले हैं ना, तो आपको इमिडिएटली जाके ये बस चेकआउट करनी चाहिए। एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस ऑन FM रेनबो चैनल। तो अब एक और गाना सुने चलिए, अगला गाना अलका याग्निक की आवाज़ में, वाजी वाह क्या बात है। जब अलका जी गाती है ना, कसम से मैं हैरान रह जाती हूँ, इतना ब्यूटीफुल कैसे गा लेती हैं।

इट्स 8:52 बाय द रेनबो क्लॉक. और अब आपको बता दें कि आगे कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम आप सुनने वाले हैं FM रेनबो दिल्ली पर. तो अब से कुछ ही देर बाद ठीक 9 से 10 के बीच में आप सुनिएगा दिल के

पुराने गाने, नए पुराने, संजीव श्रीवास्तव इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे। और साथियों, मैं आपको बता दूं हमारे फोन इन कार्यक्रम के बारे में, दोपहर 3 से 4 के बीच में रेडियो डॉक्टर हमारा इम्पोर्टेंट ब्रॉडकास्ट होता है, ये कार्यक्रम आप जरूर सुनिएगा, जिसमें आज का विषय रहेगा स्पेशल ऑन नेशनल डेंगी डे। एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर एस के रसानिया, डायरेक्टर प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन LHMC न्यू दिल्ली से। और मैं आपको बता दूं विशेष बात यह है कि आज का ये प्रोग्राम पुनः प्रसारित किया जाएगा, इसलिए आज आप इसमें फोन ना करें, बल्कि पहले जो बातचीत रिकॉर्ड की गई है उसके माध्यम से आप अपनी जानकारी में इजाफा जरूर करें। और ये थी जानकारी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में। इसके अलावा हर घंटे हमारा हर कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें जानकारी होती है, एंटरटेनमेंट होता है, यानी कि कंबाइन करें तो इंफोटेनमेंट होता है। चलिए अब आपसे हम बात करेंगे, फिर किसी और शो में मुलाकात करेंगे आपके साथ। और अब आखिरी गाना आज के शो का आपके लिए प्ले कर रही हूँ। क्या बात है, गोविंदा जब स्क्रीन पर हैं और क्या थिरकते हैं करिश्मा कपूर के साथ, मजा आ जाता है। और आप सभी अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, आज का सैटरडे आप बहुत अच्छे से बिताएं, हैव अ वंडरफुल वीकेंड। गर्मी बहुत हो रही है, अपना ज़रूर ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का, पशु पक्षियों का भी ख्याल ज़रूर ज़रूर रखिए। और हाँ, अपने आसपास सफाई ज़रूर बना के रखिएगा। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

जी हाँ, आंखों से होके दिल में उतर जाएंगे, दिल में उतर कर तस्वीर बन जाएंगे, नजरों को झुकाकर चलना, वरना जमाने को तुम्हारी आंखों में हम नजर आएंगे। प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक 9 से 10 बजे तक आपके साथ इस संगीत में सफर में, पुराने और नए गानों के साथ। मैं आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संजू, सो वेलकम। दिल ही तो है भाई और आपके साथ तो हमेशा लगा रहता है, सो इस दिल को मना लीजिए और शानदार से म्यूजिक के साथ आप जहां कहीं भी निकल रहे हैं आज सैटरडे यानी छुट्टी के दिन या अपने काम पर, हम आपके साथ रहेंगे।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

जहाँ बिल्कुल आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, ये है आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। जी आज है शनिवार और आप बहुत सारे लोगों की छुट्टी है और खास बात ये भी है कि देखिए एक अपील है कि आप घर से अगर निकलें तो सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें और बचत करें हर तरह से, पेट्रोल की, डीजल की और किसी भी तरह से आप, क्योंकि किफ़ायत अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है ना, और ये तो करना भी चाहिए। कुल मिलाकर हम अपने देश की समृद्धि के लिए अगर ये संकल्प लें तो मिलकर हम सब एक और समृद्धि की ऊंचाई पर अपने, जिस तरह से हम लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और आगे जा सकते हैं। और अगर हम अपनी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो बहुत ही बढ़िया से हमारे दोस्त हैं जो हमें सुनते हैं और हमसे ढेर सारे मैसेजेस भी साझा करते हैं। बिल्कुल मैं आपको बताऊं, दिल्ली में इस वक्त आज है 16 मई, यानी कि गर्मी जो लगातार लुका छुपी मौसम हमसे खेल रहा है, लेकिन अब गर्मी लगातार बढ़ रही है, अपना रूप दिखाने लगी है। आज हम दिल्ली में टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। राइट नाउ यानी अभी 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ह्यूमिडिटी का लेवल है 41% और हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। पूरा दिन आज सनी, यानी कि पूरी तरह से सूर्य देवता मेहरबान रहने वाले हैं, इसलिए अपने साथ, अपने बैग में, अपने साथ जब आप चल रहे हैं तो पानी की बोतल, नींबू का पानी, नींबू पानी या कोई भी ऐसी चीज़, लस्सी, छाछ, जो हम गांव में, घर में दादी देती है, माँ देती है या धर्मपत्नी आपको देती है, वो ज़रूर पीजिए। आप अगर बाहर निकल रही हैं तो आप भी ध्यान रखिए कि, या निकल रहे हैं जो भी, कि इस गर्मी से बचने के लिए हमें अपने शरीर को बचाने के लिए सारे संभव उपाय अपनाने हैं, है ना। सुनते रहिए हमारे साथ प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने। मैं हूँ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव उर्फ संचो।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

जी हाँ, ये इश्क की धुन रोज जलाए और हम रोज रोज आपके पास आते हैं प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने के माध्यम से। दिल्ली में हम ट्रैफिक की बात करें तो आपको बताएं कि ट्रैफिक मूवमेंट ऑन दिल्ली लोनी रोड नियर शिव विहार मेट्रो स्टेशन टूवर्ड्स लोनी गोल चेकर्स लाइकली टू रिमेन अफेक्टेड ड्यू टू ऑन गोइंग रोड कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर वर्क इन द यूपी एरिया। यानी जो दिल्ली लोनी रोड है शिव विहार मेट्रो स्टेशन के पास में, वहाँ से टूवर्ड्स माने कि आप देखें तो लोनी गोल चक्कर की ओर जो ट्रैफिक है, यातायात है, वो थोड़ा अफेक्टेड रहेगा, प्रभावित रहेगा, क्योंकि वहाँ पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो सड़क का निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए जो भी यात्री वहाँ से गुजर रहे हैं वो अपनी यात्रा को वहाँ से गुजरने से पहले ऑल्टरनेटेड जो उसके वैकल्पिक मार्ग हैं उसको चुन लें, तय कर लें तो अच्छा रहेगा, है ना। और सुनते रहिए हमारे साथ प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। मैं हूं आपके साथ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संचु। तो दिल की बात करें दिल है तो सब कुछ है, इसलिए इस दिल को बनाए रखिए।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, और 10 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा इस प्रोग्राम में। 10:05 पर मैचलेस म्यूजिक आर में आरुषि आपके पास आएंगी जी, बिल्कुल प्रोग्राम लेकर। और 11:05 पर होंगी आरती मल्होत्रा आपके साथ बॉलीवुड ट्रेल्स में, और फिर हम दिन भर आपके साथ यूं ही सेवा में बने रहेंगे। फिलहाल 10:05, 10 बजे तक तो मैं आपके साथ हूं। फिलहाल मुझे यानी संजीव श्रीवास्तव संजू को दीजिए इजाज़त, अगली मुलाकात आपसे होगी जल्दी ऊपर वाले ने चाहा तो। लेकिन ये जो बहुत ही प्यारा सा एक नाइस सा सॉन्ग है, बहुत ही ल्यूसिड सा नगमा, ज़रूर आपको सुनाऊँगा और फिर लूँगा आपसे विदा। सो ये गाना सुनिए और दीजिएगा मुझको इजाजत जाने की, बस इसी दुआ के साथ कि आपसे मुलाकात किसी न किसी मोड़ पर होती रहे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया है। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल है। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की साझेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया। एक रिपोर्ट।
1: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर, उपकर और अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में जरा भी सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसके बाद समाचार एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट वापस ले ली और सोशल मीडिया से इससे संबंधित पोस्ट हटा दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रमुख समाचार एजेंसी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट गलत थी और त्रुटि के लिए खेद भी व्यक्त किया। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और

मान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। और खेलों में बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशिया के नूर रिजुद्दीन और गो शी फेई की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग न्यू दिल्ली। इट्स अ सैटरडे, वी आर ऑफिशियली इन द थिक ऑफ द वीकेंड फीवर। वेलकम टू द बेस्ट पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग, द मैचलेस म्यूजिक आवर ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम। आई एम आरुषि एंड वी आर स्टार्टिंग थिंग्स ऑफ विद सम मैचलेस सैटरडे एनर्जी विद शेयर।
2: Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny,

0: That was Baharu Se Keh Do, Woh Mere Ghar Na Aaye by Mukesh. But I would say it's so hot now that we will say, Baharu, please aaiye, hamare ghar aaiye. Anyway, it's time for a short break and don't go anywhere. We will be right back on the Matchless Music Hour on Akashwani.
1: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा
2: स्वस्थ रहने का फंडा रोज खाएं अंडा NECC द्वारा जनहित में जारी
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
0: आई टोल्ड यू इट वुड बी अ शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक टू द मैचलेस म्यूजिक आवर ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 FM वेल द क्रिकेट फीवर इज हाई विद द IPL T20 बीइंग इन इट्स सेकंड लास्ट वीक बिफोर द टॉप 4 टीम्स go into their playoffs and then the final is on 31st of May. It's a good plan for the weekend if you're a cricket lover. But sportsmanship isn't just about the stadium. So tonight our very

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जन

जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: We have to take a short break now, but on the other side of the break, we have George Harrison and Marvin Gaye serenading to us, so stay tuned.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
0: We are in the final stretch of the Matchless Music Hour here at Akashvani Rainbow 107.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबूधाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में कल नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. दग्गुबाती पुरेंद्रेश्वरी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पैनल में लोकसभा के 18 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। निचले सदन के सदस्यों में हेमा मालिनी, हरसिमरत कौर बादल और इकरा चौधरी शामिल हैं। राज्यसभा से समिति में सुधा मूर्ति, पीटी उषा और स्वाति मालीवाल सहित अन्य महिलाएं शामिल हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य अपना 50वां स्थापना राज्य मना रहा है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया था। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इज्जुद्दीन और गो सीफेई की जोड़ी से होना है। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडर मॉसम द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता

बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के तहत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप हैं अपनी दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ। एंजी प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स, आप सभी का पसंदीदा, जिसमें रहती हैं कपशप और बहुत सारी गॉसिप्स अबाउट द बॉलीवुड, न्यू बॉलीवुड रिलीज, ओटीटी रिलीज और क्या चल रहा है, क्या अपकमिंग है, किसमें घमासान है और कौन किसको डेट कर रहा है, कौन शादी के नजदीक जा रहा है, कौन डिवोर्स में आ रहा है, इन सभी बातों पर आपके साथ बात करेंगे हम। एंड डेफिनेटली बॉलीवुड का तड़का है तो वो तो जारी रहेगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स में। कमिंग अप नेक्स्ट इज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट, उफ तेरी अदा, कार्तिक कौलिक, कार्तिक शंकर महादेवन की वॉइस में।

बिल्कुल वापस है आप सभी के साथ और आदाब, हम करवा ही चुके हैं आपको और बॉलीवुड ट्रेल्स, जहां हम बात करते हैं सिर्फ बॉलीवुड की गलियों का, वो कच्चा चिट्ठा खोलते हैं और शायद हेडलाइंस भी जिनकी नहीं आती वो खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और आज का एपिसोड तो भैया बहुत खास है क्योंकि मई की इस गर्मी में बॉलीवुड का पारा भी हाई है। शिवाजी की दहाड़ से लेकर कांस के रेड कार्पेट तक सब कुछ है मेरे पास, तो आप बने रहेंगे किसके साथ? आरती मल्होत्रा के साथ। एंड वेल भाई, रितेश देशमुख की राजा शिवाजी का क्रेज तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रितेश देशमुख थोड़े से नाराज है क्योंकि उनकी फिल्म से ज्यादा उसके बजट को लेकर बात हो रही है कि भाई 100 करोड़ में बनी या ये बनी वो बनी। तो इस पर रितेश देशमुख का बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा सा एक जवाब आया है कि भाई क्यों आप फिक्र करते हैं कि कितना बजट लगा, कितना कमाया, क्या किया, आप फिल्म का असली एसेंस खो रहे हैं। जस्ट गो एंड वॉच द फिल्म्स। आपका तो सिर्फ 100 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, 1000 रुपए सिर्फ इतना ही लग रहा होगा ना, तो क्यों आप इन चक्रों में पड़ते हैं? क्योंकि भैया उनके हिसाब से तो असली बजट कभी भी रिवील आउट नहीं होता, ये तो प्रोड्यूसर्स ही जानते हैं कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। एंड साथ ही वो कहते हैं कि जब मैंने शोले देखी, इंजॉय किया, तो सिर्फ अमिताभ बच्चन को इंजॉय किया, अपने बचपन में ये नहीं सोचा कि ये कितना कमा रहे हैं या इनका कितना बजट रख रहा है। वेल एनीवेज, राजा शिवाजी इज डूइंग वेरी वेल एंड हमारी गुड गुड गुड गुड बेस्ट विशेस हैं। मराठी में तो बहुत कमाल ही कर रही है, हिंदी सिनेमा भी अच्छा चल रहा है। वेल रितेश देशमुख की बात की है तो उन्हीं की फिल्म हाउसफुल 2 से आप सभी के लिए अनारकली डिस्को चलेगी। आप चलेंगे डिस्को?

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पाद

0: मर्यादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
0: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: जी बिल्कुल, वापस आप सभी के साथ फिल्म रेनबो आकाशवाणी दिल्ली, दिल से दिल तक अपना रिश्ता बनाए हुए। और आप सब लोग वेट कर रहे होंगे ना कि भैया आरती क्या कर रही हो, वो सवाल तो पूछ ही नहीं रही ना जिसका हमें इंतजार है। जी हाँ, आपको इंतजार है उस सवाल का जो बनाएगा आपको बॉलीवुड सरताज। एंड वेल, मैं सच्ची बोलूं, दिल से बोलूं, आप सभी ना सही जवाब देते हो। आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, या फिर हम लोग बहुत आसान सवाल पूछते हैं। एनीवेज, जब आप सभी बॉलीवुड सरताज हैं तो चलिए इसी दौड़ में आगे बढ़ते हैं। और बड़ी ही फ्रेश पेयरिंग की बात करने वाली हूं मैं अभी। इंडस्ट्री में चर्चा है कि अभिषेक बच्चन शाहरुख खान की आने वाली फिल्म द किंग में विलेन का रोल निभा सकते हैं, और जिसमें सुहाना खान भी है। बिल्कुल, अब बाप बेटी की फिल्म और उसमें अभिषेक विलन, भाई ये तो ब्लॉकबस्टर गॉसिप है क्यों? वेल, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। कोई हिडन नहीं, कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी राय जानना चाहती हूँ आज। और वो ये है कि क्या आपको लगता है क्या अभिषेक बच्चन को विलन के रोल में देखना बड़ा रोमांचक होगा? सिर्फ इतना सा है, आपकी पर्सनल राय के बारे में बात कर रही हूँ, और जिसे आप मुझ तक भेज सकते हैं। आप अपने SMS मुझे भेज सकते हैं 9868107070 9868107070। और आप सभी हैं मेरे लिए बॉलीवुड सरताज। और जब अभिषेक बच्चन की बात की है तो उनकी फिल्म गुरु याद ही होगी आपको। उसी फिल्म से हरिहरन और अलका याग्निक की वॉइस में थे आशिकी, एंड इसमें उनकी पेयरिंग थी उनकी बिलवड वाइफ ऐश्वर्या राय।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

जी, वी आर अगेन बैक विद यू आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर दिल से दिल तक. एंड भाई, अब बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल. जी हाँ, इंटरनेशनल हो गए हम. और कांस 2026 का ड्रामा तो पता ही होगा आपको, हर साल ही होता है और हर साल ही कुछ ना इतनी सारी गॉसिप से इधर से उधर से निकल के आते हैं. लेकिन लेकिन लेकिन इस बार जो निशाना बनी है हमारी प्यारी सी आलिया भट्ट. कांस फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और आलिया भट्ट वहाँ रेड कार्पेट पर छाई हुई थी. लेकिन गॉसिप ये है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल पेपराजी ने उन्हें इग्नोर किया. है सच में ऐसा हुआ? वेरी बैड. अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वही जाने. लेकिन जो सोनू सूद है ना, उनके बढ़िया वाले भैया, उन्होंने उनके बचाव में उतर कर ट्रोलर्स की तो क्लास लगा दी है. और भाई लगानी भी चाहिए, क्यों ऐसे करते हैं हम अपने ही एक्टर्स को जब वो इंटरनेशनल जाते हैं कुछ अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और हम ही यहाँ बैठ के उनको ट्रोल्स करने लगते हैं. गलत बात है ना. चलिए, जब आलिया भट्ट की बात हुई है तो उनकी फिल्म 2017 की सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर बद्रीनाथ की दुल्हनिया की भी बात कर लेते हैं. धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी वरुण धवन के साथ आलिया भट्ट की इस फिल्म ने सुपर डुपर कमाई की और सुपर डुपर हिट रही. ये फिल्म 39 करोड़ की इसके बजट में बनी थी और 200 करोड़ से ऊपर की इसकी कमाई हुई थी. अमाल मलिक एंड श्रेया घोषाल की वॉइस में आप सभी के लिए आशिक.

जी, अभी आपकी राय मैं लेने वाली हूँ। जो मैंने सवाल पूछा था कि क्या आप चाहते हैं अभिषेक बच्चन को देखना विलन के रूप में, तो वो कैसा रहेगा? मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्ति नगर से मुझे कह रहे हैं कि जब हीरो में ज्यादा स्पेस ना बचे तो उसे विलन का रोल करना चाहिए। मेरा इसमें ये कहना है इम्तियाज जी कि जो विलन का रोल है ना वो हीरो से बहुत ऊपर होता है, और विलन का रोल करना बहुत मुश्किल होता है। पता है जब अच्छे अच्छे लोग उस नेगेटिव कैरेक्टर में आते हैं ना, पता नहीं आपको कितना मुश्किल होता है। डियर आरती जी, गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ इज धर्म भाटिया रोहतक। बिल्कुल अच्छा लगेगा, वेरी गुड। अभिनयकर्ता का काम है अभिनय होता है, इसीलिए सही लगेगा। नीलेश कुमार पाटकर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से कह रहे हैं मुझे, एंड शंकर गोवा पंजिम से कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं पहली बार देखेंगे इस कैरेक्टर में, तो अच्छा ही होगा एंड वी आर एक्साइटेड। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। एंड हमारे पास मैसेजेस और मोहम्मद कासिम किलपुर से कह रहे हैं कि अभिषेक

को हाँ विलन के रूप में देखना अच्छा होगा। और एक और मैसेज ले लेती हूँ, अभिषेक बच्चन ने पहले भी कुछ फिल्मों में नेगेटिव रोल किया है। एग्जैक्टली यही मैं सुनना चाहती थी आपसे, एंड इसीलिए किंग फिल्म में उनका नेगेटिव रोल बढ़िया ही होगा। प्रवीण चौहान खरगोर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रवीण जी बिल्कुल सही कहा आपने, इनफैक्ट उन्होंने कई फिल्म्स में ये साबित किया है और अपने अभिनय का लोहा हम सबको दिखाया भी है। एनीवेज हमारी तो बहुत बहुत सारी गुड विशेज है एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड और जल्द मैं उनको देखना चाहती हूँ। आप भी बात कर लेते क्योंकि अब समय रह गया है कम दोस्तों, अब हमें चलना होगा और नेक्स्ट प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग में मिलेंगे आपको। लेकिन ओटीटी पर जो धमाकेदार सीरीज रिलीज हुई है कल कर्तव्य, जिसकी हम लोग वेट कर रहे थे, लास्ट वीक मैंने बात भी किया था, सैफ अली खान साहब की स्ट्रीम हो गई है और भाई साहब सैफ का वो पुलिस वाला अंदाज एकदम माइंड ब्लोइंग है और ओटीटी पर ही इन्होंने इतना धमाका मचा दिया। वेल जब सैफ अली साहब की बात हुई है तो हम तुम की बात तो जरूर होगी और हम तुम की बात होगी तो अलका याग्निक और शान की वॉइस में आप सभी के लिए लड़कियां क्यों लड़कों से नहीं होती। इस फिल्म को एंजॉय करेंगे और मुझे यानी आरती को देंगे आप इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सीफे की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: निर्भया स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

0: जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट registrationandtouristcare.uk.gov.in।
0: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: Michael Jackson, he really was the king of pop, wasn't he? Well, now, I mean, I have to take a small break, but don't go anywhere because we have some cool tracks lined up for you, and right after you come back, I have Charlie XCX with Red Balloon.
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
5: पता का चाय, गजब का स्वाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वेलकम बैक, इट्स 12:54 बाय द स्टूडियो क्लॉक। वेल अलास, आवर जर्नी इज ऑलमोस्ट एंडिंग फॉर दिस शो, फॉर दिस आवर, बट वी विल बी बैक in the evening today, the 7:05 show and 10:05 show with Pooja Anand. So stay tuned for that. Don't miss that because we have some cool Saturday music that's going to be playing for you there. I also want to give you a little bit of tidbit of information. Today is International Day of Light, a day to recognize the fundamental role light plays in science, culture, art, education, and sustainable development. That's a lot. Let's talk about the cool tech of the future. Have you heard of Li-Fi? Well, while we all use Wi-Fi, right? Scientists are

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधि

0: आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
1: पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी और हिस्ट्री और नॉट।
2: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Yes, all is well, और कैसे हैं आप? आप सब हैं मेरे साथ अपनी दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, और मेरा वाला सॉन्ग में सबसे पहले all is well. जी हाँ, ये सॉन्ग उन सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनके दोस्तों को, उनकी फैमिली को, उनके चाहने वालों को डेडिकेटेड है जो आज इस एक टफ सिचुएशन के साथ गुजर रहे हैं. वो टफ सिचुएशन है उनके जो नीट के एग्जाम्स के साथ जो थोड़ी गड़बड़ हुई है, लेकिन गवर्नमेंट अच्छी बात है कि बहुत जल्दी क्विकली सारे स्टेप्स उठा रही है, दोषियों को पकड़ा जा रहा है. नई डेट भी रिजल्ट की अनाउंस हो चुकी है. आई अंडरस्टैंड एंड हम सभी समझते हैं इस चीज को कि प्रेशर बहुत है, लेकिन क्या करें, जो है सो है, वो जो सामने है उसको झेलना तो पड़ेगा ही. और कहते हैं दोस्त के फूल बनकर मुस्कुराना है जिंदगी, मुस्कुराते हुए सब गम भुलाना है जिंदगी. जीत का जश्न तो दोस्त हर कोई मना लेता है, हार कर खुशियां मनाना भी है जिंदगी. और सबसे अच्छी बात है अभी तो हम हारे नहीं, हमारे पास दूसरा रास्ता है और हम लोग इसे करके दिखाएंगे. आप हैं अपनी दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ मेरा वाला सॉन्ग, अपने पसंद का सॉन्ग में चलाई चुकी हूँ, डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा. और अपनी फरमाइश भेजने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9868107070 9868107070. वन मोर कैलाश खेर की वॉइस में आपसे

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

कहते हैं दोस्त कि तेरी मुस्कान पर जन्नत भी कुर्बान है, तेरी मुस्कान पर जन्नत भी कुर्बान है, तुम मेरे साथ हो मुझे इसी बात का अभिमान है। एंड वेल, हमें बहुत गर्व है कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं और देखिए कितना अच्छे लगते हैं, इतने सारे मैसेजेस करे। अब मैं मैसेजेस लेने वाली हूँ, फरमाइशें गीत भी चलाऊंगी, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा बढ़िया वाला। जिसके भी फरमाइश पूरी होगी, जिनके भी सॉन्ग्स मैं प्ले करने वाली हूँ, वो सब मुझे थैंक यू जरूर बोलेंगे। बोले फिर ना हमसे तो आप चलवा लेते हो, हमें तो थैंक यू बोलते नहीं, हमें भी तो अच्छा लगता है ना, थैंक यू बोलना चाहिए। ओके वेल, आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग और आपकी फरमाइशें हैं मेरे पास 9868107070। उनके लिए जिन्होंने अभी रेडियो को ट्यून किया है, आप मुझे अपनी मैसेजेस भेज सकते हैं। एंड वेल हम शुरू करते हैं। नमस्कार जी, तेरे नाम का गाने के बोल है तुमसे मिलना, ये सलीम अख्तर रेशमा बेगम अलीगढ़ से बोल रही हैं। एंड यार डेफिनेटली थैंक यू सो मच, ये किस बात के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, बहुत बड़ा मैसेज है, पढ़ नहीं पाएंगे। पंकज अमरावती महाराष्ट्र, गुड मॉर्निंग। आरती जी, और इन्होंने खिलाड़ी फिल्म से सुनना चाहे, वादा रहा सनम होंगे जुदा ना हम, बिल्कुल हम भी जुदा नहीं होंगे आपसे, और देखते हैं जी आपकी फरमाइश पूरी होती है कि नहीं। गुड आफ्टरनून लक्ष्मी, अरविंद, निशा, प्रमोद एंड मम्मी पापा, इन्होंने सलामी फिल्म का मिले तुमसे बिछड़ के हम की सॉन्ग की फरमाइश की है। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, इन्हें कोई भी नया पुराना सॉन्ग सुनवा दीजिए। इन्होंने कहा है सरस्वती चंद्र, गाना छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए मुनासिब नहीं आदमी के लिए। बहुत ही खूबसूरत गीत है और मैं पूरी कोशिश करूंगी दिग्दर्शन जी, अगर मुझे ये सॉन्ग मिला तो डेफिनेटली आई प्ले इट। एंड ये कौन है, नरेंद्र सोनी देवगढ़ पटियाला से कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, फिल्म का नाम फाइटर, गीत के बोल दिल आ रहा है या किसी पर जा रहा है। ओके एंड ये हमारे दोस्त है सौरभ बनेजा, ओके दोस्त मेरी कोई सॉन्ग एज यूजुअल, भाई आप तो रमता जोगी हैं, आपकी तो कोई फरमाइश होती ही नहीं कभी। गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन जिले से कह रहे हैं कि बेदवान गांव के फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश, गाने के बोल आया आया अटरिया पे कोई चोर आया, और नौशाद अक्रम चौधरी, आतिफा चौधरी, इमराना चौधरी, राजीव नगर मंडोली 93 से मूवी नेम प्यार किया तो डरना क्या सॉन्ग सुनना चाहते हैं। और पर

0: है इस मूवी का सॉन्ग आई लव माई इंडिया, कुणाल वर्मा, अम्बाला कैंट से इस सॉन्ग की फरमाइश आई है। साथ ही मैडम जी नमस्ते कुलारा रोड भोपाल से रामबाबू मालविया, मनीष मालविया फिल्म दीवाना से गाना तेरी उम्मीद तेरा इंतजार। वेल, अभी जिनकी फरमाइश पूरी हो रही है वो है खिलाड़ी फिल्म से वादा रहा सनम। आप सभी के लिए अभिजीत सिंह एंड अलका यानी।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग अपनी दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ एंड भाई आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर वो कहते हैं किसी ने हमें बड़ी प्यारी सी एक लाइन लिख के भेजी है कि तुम्हारी मुस्कान किसी तलवार से कम नहीं, कोई बैर रखे तुमसे किसी में दम नहीं. That's so sweet of you. इसके साथ ही अपना नाम भी लिख देते दोस्त तो अच्छा रहता. चलिए एनीवेज और देखिए मैंने दो तीन फरमाइशें पूरी की है एंड आई होप कि आप मुझे ओके एंड आपको मेरा नमस्कार. जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप आपका मैसेज हम पढ़ चुके थे. ओके गुड आफ्टरनून. मेरा वाला सॉन्ग में मेरी अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए. किशन वंजानी नीलम स्वाति कह रही हैं आदाब. किसी भी गीत पे हमारा नाम शामिल कर लीजिए. ये फारूक अली खान, फैजी फरहस, फरहीम, फरहान, फरिया, ताहिर, अरे पापे इन सभी ने ये फरमाइश की है. राहत और गज़ल निहत कौर बिजनौर.

और यूपी से राज मूवी का सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं आप। हमेशा राज फिल्म का ही सॉन्ग क्यों सुनना चाहती हैं, ये क्या राज है? जैद और हुडा गाजियाबाद यूपी से, नदिया के पार मूवी से, कौन दिशा में लेके चला रे बतूरिया, ये सुना दीजिए। बिल्कुल पक्का पक्का पक्का, अगर मुझे मिला तो मैं जरूर सुनाऊंगी दोस्त। रिस्पेक्टेड आरजे, किसी भी सॉन्ग में मेरा नाम शामिल कर दीजिए। तेरी यादों का दिया दिल में जलाए बैठे हैं, रात की तन्हाइयों को भी सजाए बैठे हैं। लोग कहते हैं भुला दो उस वक्त के साथ, हम तो हर सांस में आपका नाम बसाए बैठे। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। मोहम्मद सरफराज आलम, जोकी हाट, दर्शन बाजार, अररिया, बिहार से ये हमें बोला है। एंड अब हमारे कौन से दोस्त हैं, दीपक कुमार क्या कह रहे हैं? नेम दीपक कुमार, अमृतसर पंजाब से, गाने का नाम मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया। ओके, पनघट पिछेड़े। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, थैंक यू सो मच आरती जी। देखा, मैं इसी का वेट कर रही थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सच्ची बोलूं, किसी का एक सिर्फ एक शब्द है शुक्रिया, थैंक यू, एक ग्रैटिट्यूड फील करना। एंड बिलीव मी, जब भी आप ग्रैटिट्यूड के भाव में आते हैं तो पूरा यूनिवर्स जो होता है ना वो पॉजिटिव हो जाता है आपका। थैंक यू सो मच सर, एंड इट्स माई प्लेजर। तेरे नाम भाई, तेरे नाम बाप रे। आप मुझे वॉइस मैसेज भेज रहे हैं सात्विक भाटिया जी, जो कि मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। हम दिल दे चुके सनम की इन्होंने फरमाइश की है। और रंजीत मुकंदरपुर दिल्ली से, मुझे गाना सुनना है फिल्म पापा कहते हैं, प्यार में होता है क्या जादू। ओके, गुड आफ्टरनून। मनमोहन सिंह जिला मंडवा हसनपुर गांव से, मेरा वाला सॉन्ग, ये वाला सॉन्ग मेरी बीवी सोनम को डेडिकेट करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है धड़कन, तुम मेरी धड़कन में रहती हो। ओके जी, एंड थैंक्स आरती जी मेरा वाला सॉन्ग बजाने के लिए। मोहम्मद इम्तियाज एंड सलमा बेगम जवाहर कैंप से, अरे थैंक यू सो मच, यू मेड माय डे। एंड प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमें कह रहे हैं हमारे दोस्त। और अब हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन उछलने लगी है। प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा मैसेज भी शामिल कर लीजिए। सभी सॉन्ग एक से बढ़कर एक सुनवा रहे हैं आप। चलिए, अब किसकी फरमाइश पूरी होगी खुद मुझे भी नहीं पता, लेकिन किसी ना किसी दोस्त की तो जरूर होगी। और माचिस फिल्म से, छोड़ आए हम वो गलियां।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है वहां

गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

राम जी की कृपा से हम मिले जी हाँ, लेकिन क्या करें, राम जी की कृपा से समय तो रुकता नहीं है, समय बढ़ता चला जा रहा है। एंड वेल, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी कह रहे हैं शांति नगर सोनीपत से, रिस्पेक्टेड प्रेजेंटर जी, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी सैटरडे, गुड आफ्टरनून, ऑन आर रिक्वेस्ट प्लीज प्ले द न्यू सॉन्ग। ओके, सड़क फिल्म से इन्होंने सुनना चाहा है। ओके, अब समय तो कम रह गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का पक्का पक्का। अब आप मुझे वॉइस नोट भेजेंगे तो मैं क्या करूँगी। दानिश खातुली कह रहे कि आरती मैम कैसी हैं आप, वेलकम टू द शो। मैम मुझे फिल्म तारीख कही, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सॉरी सर, लेकिन वैसे भी अब टाइम कम रह गया तो शायद मैं आपकी फरमाइश पूरी कर भी ना पाऊँ। सुनीता शालीमार बाग विवाह मूवी का सॉन्ग सुनने की बात कर रही है, एंड थैंक यू सो मच स्वीट आरजे साहिबा, थैंक यू सो मच। एंड कविता उत्तराखंड से, सिर्फ तुम का सॉन्ग, एक मुलाकात ज़रूरी है। एंड मैडम जी, मेरी पसंद का सॉन्ग एक महीने से ज़्यादा हो गया, आपने अभी तक नहीं सुनवाया, निवेदन है मेरी पसंद का सॉन्ग फिल्म दीवाना से सुनवा दीजिए। तो आपके लिए खुशखबरी है जी, थैंक यू, तैयार कर लो, क्योंकि नेक्स्ट सॉन्ग दीवाना से ही है जो मैं चलाने वाली हूँ। वेरी नाइस सॉन्ग फ्रॉम माचिस मूवी, फ्रॉम अयांश गुप्ता एंड गोरखपुर उत्तर प्रदेश, रियली इन्जॉय, थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच आरजे आरती जी, शो में बहुत कम आती हैं आप, नहीं आज एक क्या, नहीं जी मैं तो बहुत पुरानी हूँ, बड़ा पुराना रिश्ता है अपना आकाशवाणी से, हाँ थोड़ा बहुत कभी हो जाता है ऊपर नीचे टाइमिंग्स का। मोहम्मद सरफराज आलम और ये जोकी हाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से कह रहे हैं। तो चलिए, अब आपके बहुत सारे मैसेजेस हैं, कई लोगों ने थैंक यू बोला है, कई उन्हें फरमाइश दी है, कई मुझे कह रहे हैं कि भैया हमसे क्या दुश्मनी है, तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है सर, बस समय की कमी है। और नेक्स्ट फरमाइश मैं अपने दोस्त की ज़रूर करूंगी दीवाना फिल्म से। उससे पहले बता दूं कि राजेश कुमार के साथ इसके बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम आशियाना, मनीष आजाद लेकर आएंगे रेडियो डॉक्टर, और अल्फा जैन में रहेंगे राकेश कुमार ही आपके साथ सैटेलाइट पे। मनीष आजाद के साथ सुनिए क्या है सिटी में हलचल। तो फिलहाल यानी मुझे आरती को दीजिए इजाजत, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।

आपकी वाणी आकाशवाणी। जी हाँ, आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है आशियाना और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। साथियों, मई का जो महीना होता है ना, अपने आप में बड़ा

गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं और इन गर्मियों की छुट्टियों को लेकर न सिर्फ अप्रैल से बल्कि ये कहिए कि जनवरी और फरवरी से ही मार्च से ही लगभग प्लानिंग शुरू हो जाती है कि ये करना है वो करना है। कई बार आपके हिसाब से छुट्टियां समय पर आ जाती हैं लेकिन कई बार थोड़ी लेट हो जाती है। पर हाँ ये है कि मई का महीना आश्वस्त करता है कि हमारी जो भागम भाग वाली ज़िंदगी है ना, एकदम दौड़ भाग वाली, उसमें थोड़े से फुर्सत के पल हमें मिल सकते हैं, वो पल जिसमें हम बहुत सारी योजनाएं बना सकते हैं और उन योजनाओं को सिर्फ बना नहीं सकते हैं बल्कि अमली जामा भी पहना सकते हैं, यानी कि उनको पूरा कर सकते हैं। तो ये जो समय है यानी कि गर्मियों की छुट्टियां, उसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आपको भी लगता है कि कुछ चीज़ है, आप बता सकते हैं कि क्या खास किया जा सकता है, क्या खास करना चाहिए, या पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ साथ, दोनों के साथ साथ ये किस तरह से गर्मियों की छुट्टियाँ और बेहतर हो सकती हैं, तो वो भी आप बीच में हमें अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। फिलहाल हम आपके स्वागत के लिए आप तक पहुंचा रहे हैं ये गीत, और इस गीत के बाद हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि ये जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, वैसे तो आप और हम सभी लोग जानते हैं कि कितनी खास थी हमारी भी गर्मियों की छुट्टियाँ। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कितनी खास हुआ करती थी, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारे ऐसे काम हम करते थे जिनको आज सोचते हैं तो मुस्कुराते हैं, उन पलों को याद करते हैं और उनमें खो जाते हैं।

कितनी हसीन ये दुनिया, और इस दुनिया को देखने के लिए भी तो आपको समय निकालने की जरूरत है ना। जब आप जाएंगे, देखेंगे, करीब से महसूस करेंगे, तो पता चलेगा कि ये दुनिया वाकई में कितनी हसीन है, कितनी खूबसूरत है। और वो मौका देते हैं गर्मियों की छुट्टियां। अभी इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे कि गर्मियों की छुट्टियां जब शुरू होती हैं तो बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। कोई घूमने की योजना बनाता है, कोई दिन भर खेलने की, तो कोई बस सोचता है कि आराम ही किया जाए। ये छुट्टियां केवल समय बिताने के लिए नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का भी एक शानदार मौका देती हैं। तो आज अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कैसे एक स्टूडेंट और पेरेंट मिलकर गर्मी की छुट्टियों को यादगार और उपयोगी बना सकते हैं। अब जरा एक यूं ही एक दृश्य की कल्पना कीजिए आप सभी कि सुबह के 10 बजे हैं और बच्चा जो है मोबाइल पर गेम खेल रहा है और माँ बार बार कहती है कि थोड़ी देर किताब भी पढ़ लो। बच्चा जवाब देता है, मम्मी छुट्टियां हैं, अब तो आराम करने दो। और ये स्थिति लगभग हर घर में देखने को मिलती है। लेकिन अगर यही देखें हम कुछ अलग नज़रिए से, और जो माँ है बच्चे से कहे कि चलो रोज़ एक घंटा कुछ नया सीखते हैं और फिर साथ में आइसक्रीम खाने चलेंगे या फिर कुछ ऐसा जो बच्चे को पसंद हो, तो शायद जो पढ़ाई जो है वो बोझ नहीं लगेगी और जो छुट्टियों में बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा रूटीन से हटकर कुछ करने की सोचते हैं। और ये मौका भी होता है कि आप करवा सकते हैं, यानी कि जो सुबह सुबह की भागम भाग होती है एकदम कि हाँ सुबह स्कूल जाना है, सुबह स्कूल जाने से पहले बच्चे तो थोड़ा देर से उठ जाते हैं लेकिन हाँ जो माता पिता हैं वो पहले से ही उठकर बहुत सारी तैयारियाँ करने लगते हैं, टिफ़िन के लिए ये वो, यानी कि 10 तरह की तैयारियाँ होती हैं। लेकिन ये वो मौका होता है कि आपके पास पहले से ज़्यादा समय होता है और उस समय का इस्तेमाल कैसे करें, इसी पर तो हम आपसे बात करना चाहते हैं और उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो अपनी इस बातचीत को और हम आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल समय एक और गीत आगे बढ़ाएं, यानी कि आप तक पहुंचाएं, और वो गीत है ये।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
3: पता का चाय गजब का स्वाद।
4: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है आशियाना, मैं हूं आपके साथ राजेश। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम आशियाना में कि कैसे हम गर्मियों की छुट्टियों को और बेहतर बना सकते हैं, क्या खास किया जा सकता है। तो खास तो बहुत कुछ किया जा सकता है और उसकी प्लानिंग्स भी हमारे बहुत सारे साथियों ने बना ली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जिनका ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है, और अगर हम उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो फिर चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं हमारे लिए, चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब देखिए, विद्यार्थियों के लिए ये समय, यानी कि जो गर्मियों की छुट्टियां मिलती है, ये समय खुद को पहचानने का मौका भी देता है। हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं, किसी को संगीत पसंद होता है, किसी को चित्रकला, तो किसी को खेल में ज़्यादा ये कहिए कि उसकी दिलचस्पी होती है। मान लीजिए कि एक बच्चा अगर छुट्टियों में चाहता है कि वो गिटार सीखे, शुरू में वो सिर्फ समय बिताने के लिए सीखता है, लेकिन धीरे धीरे वही उसका आत्मविश्वास बन जाता है जब उसको आने लगता है। यानी कि ये जो समय होता है ना, तो थोड़ा सा शुरू में किसी भी काम को हम जब करते हैं तो मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब हम थोड़ा और बेहतर तरीके से थोड़ा और समय देकर उस काम को निरंतर करते हैं ना, तो धीरे धीरे जब वो हमें आने लगता है तो फिर हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। और ये गर्मियों की छुट्टियाँ इस तरह के कामों के लिए बहुत ही ज़्यादा आदर्श होती हैं, इसलिए छुट्टियाँ बच्चों की रुचियों को पहचानने और उन्हें निखारने का सबसे अच्छा समय है। बस ज़रूरी ये है कि जो भी हम प्लान करें उसको ये ध्यान में रखें कि हाँ, जो हमारे दूसरे प्लान्स हैं वो प्लान्स कहीं उस प्लान पर हावी ना हो जाए, हम उस प्लान को करके उसको पूरी तरह से अमल में लाए, और धीरे धीरे जब हम देखेंगे कि लगातार हम उस कार्य को कर रहे हैं तो एक नई आदत, एक नई चीज़ हमारे अंदर विकसित होती है। और कहते भी हैं कि जब हम कोई काम करते हैं अच्छी चीज़, तो उसको सिर्फ एक बार करके छोड़ना नहीं चाहिए बल्कि उसको अपनी आदत बनाना चाहिए, क्योंकि ये आदतें ही जो है हमें सफलता की ओर ले जाती हैं।

ये जो तू आजा रे की ध्वनि थी ना, तो उससे ऐसा लगता है कि कुछ जगहें भी आपको बुलाती हैं। मतलब बहुत सारी जगह यूँ तो आप जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ जगह जो होती हैं आपके दिल में बहुत ख़ास जगह रखती हैं। तो वहाँ जाने का भी प्लान आप बना सकते हैं इन गर्मियों की छुट्टियों में। वो कौन सी जगह हैं, वो कौन सी बातें हैं, वो आप भली भांति जानते हैं। वैसे अगर मुझसे आप पूछें कि गर्मियों की छुट्टियाँ जब पड़ती थी स्कूल की, तो क्या करता था मैं, तो मुझे अक्सर ये होता था कि प्लान तो कई होते थे, लेकिन एक प्लान जो कभी भी टस से मस नहीं होता था, वो ये होता था कि गांवों की तरफ जाएं, वहाँ पर जो जीवन है उसको करीब से महसूस करें, वहाँ के लोगों से मिले जुलें। और बहुत सारे ऐसे काम, जैसे बाग में आम का सीज़न है तो आम जो है कच्चे आम भी खाएं, पक्के आम भी खाएं। इसके अलावा अगर आसपास कहीं नदी है तो नदी के किनारे भी जाना बहुत एक कमाल का अनुभव होता है। बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं वहाँ पर। ख़ासकर जो बच्चे हैं, अगर माता पिता की देख रेख में या फिर बड़ों की देख रेख में करें, तो वहाँ से भी बहुत कुछ वो चीज़ें समझते हैं, सीखते हैं। अब बात करें अगर हम पेरेंट्स की, अभिभावकों की, तो अक्सर माता पिता सोचते हैं कि छुट्टियों में बच्चों को अगली क्लास की करवा देनी चाहिए तैयारी। और तैयारी ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के साथ समय बिताना। कभी शाम को साथ में टहलना, कभी कैरम खेलना, या कभी पुराने किस्से सुनाना। ये छोटी छोटी बातें बच्चों के मन में जीवन भर रहती हैं। कई बार बच्चे महंगे खिलौनों से नहीं, बल्कि माता पिता के साथ बिताए गए समय से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और ये न सिर्फ बच्चों को खुशी देता है, बल्कि पेरेंट्स को भी उतनी ही खुशी देता है। क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में जितना हम तमाम चीज़ों में उलझे हुए होते हैं ना, उसमें ये एक फुर्सत के पल होते हैं हमारे पास, जब हम अपनों के साथ समय बिताते हैं और उन पलों को एंजॉय भी करते हैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पाँच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर 9:00 बजे।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है आशियाना, मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियों को कैसे बनाएं और भी खास। अगर आपकी कुछ प्लानिंग्स है पहले से तो वो तो चल ही रही हैं, लेकिन कुछ और भी चीज़ें निकल कर आती हैं ना जब हम और आप एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। वैसे जब हम गर्मियों की छुट्टियों की बात करते हैं तो छुट्टियों का नाम ही सुन के अच्छा लगता है कि वाह क्या बात है, कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ तो ऐसा मिलने वाला है हमें जो हम बहुत दिन से चाहते थे। यानी कि कुछ फुर्सत के पल, अपनों के साथ बिताए जाने वाले पल, कुछ ऐसा सोचते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना, हमारे आसपास अगर हम देखें तो ऐसी घटित हो रही हैं कि हम अपनों के साथ हैं लेकिन फिर भी लगता है कि क्या वाकई में हम अपनों के साथ हैं। और उनमें से एक चीज़ है, ज़रूरत से ज़्यादा जब हम मोबाइल या स्क्रीन टाइम देते हैं तो उसमें लगता है कई बार कि यूँ तो शारीरिक रूप से हम साथ में ही हैं लेकिन मानसिक रूप से शायद हम साथ में नहीं हैं, बल्कि ज़्यादा समय हमारा जो है स्क्रीन पर ही बीत रहा है। तो ऐसे में आजकल कई बच्चे भी हैं छुट्टियों का आधा समय जो है मोबाइल में गुजार देते हैं। लेकिन अगर परिवार मिलकर प्लान करे, कुछ समय ऐसा बनाए, कुछ नियम ऐसे बनाए कि मोबाइल से और स्क्रीन टाइम से कम मुलाकात हो तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे रात का खाना बिना मोबाइल के खाना, या फिर रोज़ एक घंटा आउटडोर खेलना। एक घंटा क्यों, एक घंटे से तो कुछ अच्छा लगता नहीं है, थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा माहौल पूरा बदल देता है जब पूरा परिवार छत पर बैठकर, गर्मियों में खासतौर पर अगर हम बात करें, बातें कर रहा हो, हंस रहा हो, तो ये है ना असली छुट्टियाँ। और ये जो फुर्सत के पल होते हैं वो हमें हमेशा याद आते हैं। और ऐसे ही फुर्सत के पलों की तो हम कल्पना करते हैं कि इन गर्मियों में जब हम बिताते हैं अपने अपनों के साथ, तो ऐसे ही पल तो हम चाहते हैं। तो ऐसे ही पलों को ढूंढना, ऐसे ही पलों को बनाना, ये हमारा काम है।

दोस्तों कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारी यादों में रहते हैं, जैसे ये वाला गाना। क्या कमाल की फिल्म थी और क्या कमाल का ये गीत था, और हम अक्सर इसको गुनगुनाते हैं। और इस गीत के जब गहराई में हम जाते हैं तो आभास होता है एक जिम्मेदारी का, कि जब हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर बहुत सारी कामयाबियां हमें मिलने वाली हैं, बहुत सारी सफलताएं हम अर्जित करने वाले हैं, तो उससे पहले जो कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, हमें अपने जो दायित्व हैं उनका भी तो निर्वहन करना होता है, अपने कार्यों को अच्छे से करना होता है, तभी तो हम अपनी मंजिल तक पहुँच पाते हैं। तो गर्मियों की जो छुट्टियाँ हैं उनके साथ अगर हम इस बात को जोड़ें तो बच्चों को भी ये जिम्मेदारी सिखाने का समय है। जैसे कि अगर माँ ये कहें कि आज पौधों पे पानी डालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, या पापा कहें कि चलो आज घर के लिए सामान साथ में खरीदते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी जो जिम्मेदारियां हैं वो बच्चों में आत्मनिर्भरता लाती हैं। साथ ही पानी बचाना, पेड़ लगाना और ज़रूरतमंदों की मदद करना जैसी बातें भी इन्हीं दिनों में आसानी से सिखाई जा सकती हैं। वैसे एक चीज़ और है, एक हमारे साथी ने अभी एक हमारे पास व्हाट्सएप भेजा और उसमें उन्होंने ऐसा कुछ लिखा तो नहीं, लेकिन उन्होंने ये एक यूट्यूब का लिंक भेजा और उसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे फ्री ट्यूशंस कोई दे रहा है और उससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। हालांकि मैं इस पूरे लिंक को खोल कर तो नहीं देख सका, लेकिन हाँ ये एक अच्छा विकल्प है कि जैसे हम लोग हर अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, हम सभी

और हमारे जो एक कौशल है हमारे अंदर, हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, कुछ वो बहुत से लोगों के लिए ख़ास हो सकती है जब हम उनका मार्गदर्शन करें, जब हम उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताएं, कुछ ऐसे टिप्स दें जिससे वो अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। ख़ासकर जब हम कहीं जाते हैं और वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें देखते हैं, वो बच्चे देखते हैं जिनके अंदर बहुत सी प्रतिभाएँ हैं लेकिन उनको सही समय पर सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, या फिर वो जो करना चाहते हैं। कई बार ये होता है कि एक छोटा सा एक कोई किसी

अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हाँ हमने कुछ ऐसा काम किया है जो ना सिर्फ हमारे मन को सुकून दे रहा है बल्कि और लोगों की भी ज़िंदगी में एक रोशनी लाने का काम कर रहा है, और फिर हमारा दिल ऐसे पलों को ढूंढता भी है।

जी हाँ, ये फुर्सत के जो पल हैं वो आपको गर्मियों की छुट्टियों में मिल सकते हैं। और जैसे इस गाने में सर्दी हो या गर्मी हो, सभी का जिक्र किया उन्होंने कि क्या प्लान कर सकते हैं आप। तो अभी तो हम गर्मियों की छुट्टियों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सर्दियों की छुट्टियों का भी प्लान जो है थोड़ा सा उससे आइडिया ले सकते हैं। फिलहाल हम आपको आइडिया दे देते हैं कि अगले कुछ घंटों में आप FM रेनबो पर कौन कौन से प्रोग्राम सुनने वाले हैं। तो आपसे थोड़ी देर बाद यानी कि 3 बजे से आप सुन पाएंगे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और रेडियो डॉक्टर में आज का जो कार्यक्रम है वो है स्पेशल ऑन नेशनल डेंगू डे। और इसमें एक्सपर्ट हैं डॉक्टर SK रसानिया, जो कि डायरेक्टर हैं प्रोफेसर LHMC नई दिल्ली में। इनसे बातचीत आप सुन पाएंगे। और उसके बाद 4:05 से होगा कार्यक्रम जिसका नाम है अल्फाजन लेट्स डिटॉक्स। इसमें मैं राजेश आपके साथ होऊंगा। और 5:05 से आप सुन पाएंगे प्रोग्राम जिसका नाम है सिटी लाइट्स। और शहर की तमाम हलचलों तमाम गतिविधियों को समेट कर आप तक पहुंचेंगे मनीष आजाद। इसके बाद 6:05 से आप सुन पाएंगे प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, जिसमें आप अपने संदेश भेज सकते हैं और आपके संदेशों को आपके अपनों तक पहुंचाने का काम करेंगे निखिल वर्मा। तो एक बार फिर से अपने विषय पर वापस लौटते हैं, और हमने बात की आज के प्रोग्राम में कि किस तरह से गर्मियों की छुट्टियों को हम खास बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं खास। तो गर्मियों की छुट्टियां केवल आराम का समय नहीं है, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने, नई बातें सीखने और खुशियां बांटने का भी ये एक मौका देती है। अगर स्टूडेंट्स जो हैं हमारे साथी छोटे बच्चे जो हैं वो उत्साह के साथ कुछ नया सीखें, और जो पेरेंट्स हैं प्यार और समझदारी के साथ उनका साथ दें, तो ये छुट्टियाँ सचमुच जीवन की सबसे खूबसूरत याद बन सकती हैं। तो चलिए, क्यों ना हम नई यादें बनाएं और इन छुट्टियों को और भी खास बनाएं। चलते चलते ये गीत आपके लिए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, रेडियो डॉक्टर में आज का अंक फिर विशेष जैसे हर बार होता है और उम्मीद है हमारे सारे श्रोता हमारे साथ अब तक जुड़ गए होंगे। तो आप सब आ गए हैं, हमें

0: है कम्युनिटी मेडिसिन में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका।
1: धन्यवाद शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार
0: जी। और आज का जो हमारा विषय है, हम आपको बता दें, बहुत खास विषय इसलिए क्योंकि आज है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। तो आज का हमारा रेडियो डॉक्टर भी केंद्रित होगा डेंगू पर, स्पेशल ऑन नेशनल डेंगू डे। तो डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमारे श्रोता जानते तो हैं, मच्छरों से जनित ये बीमारी होती है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, बहुत सारी जिज्ञासा भी आपके मन में जरूर होगी कि अगर ये हो जाती है तो किस तरह से, कब हमें डॉक्टर के पास जाना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करने के लिए 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में और जानकारी हम डॉक्टर साहब से लेते हैं। डॉक्टर साहब बताएं हमें कि ये डेंगू दिवस का जो अवेयरनेस हम करते हैं इस दिन, ये क्यों आवश्यक है?
1: शालिनी जी, जैसा आपने बताया कि प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है नेशनल डेंगू डे, इसलिए क्योंकि ये जो मौसम है, इस समय जो मौसम चल रहा है, इस मौसम के बाद में बरसात के बाद में ये डेंगू से रिलेटेड सब बीमारियां काफी कॉमन होती हैं। तो लोगों को इसके विषय में जागरूक करना, लोगों को इसके बारे में बताना कि डेंगू किस तरह फैलता है, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में जानकारी होगी तभी हम इससे बचाव अपना कर पाएंगे।
0: बिल्कुल
1: जी, तो इसलिए इसको लोगों को इसके बारे में जागृत करना, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है।
0: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम शुरू तो हो चुका है लेकिन आगे बढ़ूं, मैं ये जानना चाहूंगी इसको डेंगू बोलते हैं कि डेंगी बोलते हैं, क्योंकि पूरे कार्यक्रम में मैं गलत ना बोलती रहूं।
1: वही है कि हिंदी बोलो अंग्रेजी बोलो, बात है कि डेंगी अच्छा। और डेंगी एक ही चीज है, डेंगू बोलो या डेंगी अच्छा। बोलो
0: गलत तो नहीं है, दोनों
1: गलत कुछ नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप उसको बोलेंगे तो डेंगी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी में डेंगू है तो डेंगू या डेंगी बात एक ही है।
0: चलिए, तो डेंगू डेंगी दोनों नामों से आप इसको जानते हैं, लेकिन प्रश्न वही है। अगर आप डेंगू या डेंगी से संबंधित कोई भी प्रश्न डॉक्टर साहब से करना चाहते हैं तो हमारे साथ सीधे जुड़िए। लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: जी हाँ, जीवन चलने का नाम है, चलते ही रहना है। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी तूफान से डरता नहीं है, लेकिन अगर हमें जीवन को खुशी से जीना है तो हमें स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ शरीर ही हर खुशी को, हर जो जीवन की सुख को अच्छे से जी सकता है, और इसीलिए हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए आता है, आपको स्वस्थ रखने के लिए। आज हम डेंगू विषय पर बात कर रहे हैं, और हमारे साथ डॉक्टर एस के रसानिया, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली, ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, हमें एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, पहले इनका प्रश्न सुन लेते हैं। हेलो।
1: हाँ, शालिनी मैम को

0: मिलता से ही नमस्कार।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब को भी प्रणाम।
2: नमस्कार
0: मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ करमपुरा से। सर
1: जी अपना प्रश्न करें आप।
0: यहाँ करमपुरा बिल्कुल नियरेस्ट पंजाबी बाग के पास है, गंदा नाला भी बहता है। यहाँ मच्छर बहुत ही ज्यादा होते, एक तरीके से कह लो कुंभ का मेला मच्छरों का लगा रहता है। जी एक तो मैंने सुना है ये पहाड़गंज में पंचकुला रोड है वहाँ तो मच्छर होते ही नहीं, और उत्तम नगर में बिल्कुल मच्छर नहीं होते। और मैंने कहीं किताबों में पढ़ा है कि फ्रांस वाले तो मच्छर बला क्या है इसकी डेफिनेशन से ही वाकिफ नहीं है। तो अब मैं जानना ये चाहता हूँ कि इसकी वजह क्या होती है जो हिंदुस्तान में इतने मच्छर होते हैं, और इसका कोई घरेलू उपाय बताए, बड़ी मेहरबानी होगी, खासतौर से जो डेंगू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: राजेंद्र जी आपका प्रश्न बड़ा पेक्यूलियर है, पेक्यूलियर इन द सेंस आपने कहा कि मेरे इलाके में तो मच्छर बहुत हैं, और किसी दूसरे एक इलाके के दिल्ली का आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा वहां के लोगों को मच्छर देखे भी नहीं उन्होंने, और फिर तीसरा आपने कहा फ्रांस में उन मच्छर होते क्या उनको मालूम भी नहीं है। ये प्रश्न अपने आप में ही आपके प्रश्न जो है उत्तर है इसका, वो इसलिए क्योंकि देखिए जो कहीं जगह ऐसी हैं जहां पर कि ये जितने भी मच्छर हैं बेसिकली पैदा हो रहे हैं जहां हमारे आसपास का वातावरण कैसा है उसके हिसाब से। अगर आपके आसपास का वातावरण अच्छा नहीं, गंदगी बहुत ज्यादा है, जहां पर कूड़ा करकट बहुत इकट्ठा हो रहा है, जहां पर बरसात का पानी इकट्ठा हो जाएगा या जा कहीं पानी स्टेग्नेशन होगा तो वहां पर मच्छर पैदा होंगे, क्योंकि मच्छर जो है पानी में पैदा होते हैं। तो जहां भी कहीं मच्छर पैदा होने के लक्षण या कारण मौजूद होंगे तो वहां मच्छर होगा, और जहां यदि जनता भी जागरूक होगी, अगर आसपास कहीं आपके मच्छर अगर कहीं पैदा होते देखें, अगर आप उन्हें खुद ही उस जगह को खत्म कर दें तो वहां मच्छर नहीं होंगे, ठीक है। और कहीं जनता अगर जागरूक होगी ये देखने के लिए किस तरह मच्छरों का अपने आप हम समाप्त कर सकें, या हम सरकारी तंत्र का उपयोग करके अपने आसपास के मच्छरों को समाप्त करा सकें, तो यही वजह है कि कुछ इलाकों में मच्छरों के बहुत ज्यादा तादाद है, कुछ जगह बहुत कम है और कुछ जगह नाके बराबर है
1: जी। और एक और प्रश्न डॉक्टर साहब इन्होंने किया था कि कोई घरेलू उपाय है क्या इसको ठीक करने का।
2: देखिए मच्छर अगर पैदा हो रहे हैं कहीं भी तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा खुद का, स्पेशली जो डेंगी मच्छर है, डेंगी जो हम बोलते हैं एडीज मॉस्किटो, डेंगी जो होता है एडीज मॉस्किटो के कारण होता है, और एडीज मॉस्किटो जो पैदा होता है हमारे घर और घर के आसपास के वातावरण में पैदा होता है। जहां भी कहीं अगर पानी इकट्ठा होगा किसी भी जगह, अगर सिर्फ एक चम्मच पानी भी यदि कहीं अगर कहीं इकट्ठा है उसमें अगर बरसात का पानी है, कहीं कोई पानी अगर इकट्ठा है तो बरसात या बरसात के दौरान में उस पानी में मच्छर पैदा हो जाएगा। तो कहीं भी अगर आपके अगर घर में कहीं मच्छर पैदा हो रहे हैं, मच्छर आपको लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके और आपके घर के आसपास कहीं ये मच्छर पैदा हो रहे हैं तो देखिए कहाँ पैदा हो रहे हैं। जहां पे अगर पैदा हो रहे हैं तो उस जगह जहां पानी स्टेग्नेशन अगर कहीं हो रहा है, पानी अगर इकट्ठा है कहीं भी है, तो उस जगह को आप सूखा कर दें
1: जी। तो इसका उपाय यही है कि हम लोग मच्छरों को खत्म कर
2: बस जी, जी जी
1: और मच्छर होते हैं पानी जमाव पे
2: जी, जी,
1: तो
2: जी।
1: पानी कहीं भी जमा हो तो वहां पर हम कोशिश करें कि ऐसा सफाई करें।
2: स्पेशली ये जो बरसात का समय है, बरसात का समय तो मच्छर पैदा होने के लिए बहुत ही मतलब फेवरेबल एटमोसफेयर है मच्छर पैदा होने के लिए, क्योंकि उनको जो तापमान चाहिए, जो आर्द्रता चाहिए, ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेयर में चाहिए, वो सब बरसात में उपलब्ध होती है मच्छरों के लिए। तो वो एक ऐसी चीज है कि जिसमें मच्छर बड़े आराम से पैदा होते हैं। तो ये आप देखें कि आप घर के अंदर, घर के बाहर, घर के आसपास कहीं भी, आपके घर पे अगर छत पे चले जाए, कहीं अगर जैसे कहीं अगर बाहर कहीं खुले में जा रहे हैं, कहीं कोई टूटा हुआ कप है, टूटा हुआ कोई गमला पड़ा हुआ है, अगर उसमें कहीं जरा सा ही पानी इकट्ठा है, आप देखेंगे उसके अंदर पानी में बरसात या बरसात के टाइम में बाद में उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे लार्वा उसमें पैदा होंगे। तो यदि आपको कहीं भी ऐसा कोई जगह दिखती है जहां पानी जरा सा भी इकट्ठा है, इवन जो आपके पेड़ है, पेड़ के अंदर कहीं खोख बनी हुई है, कहीं पानी या इकट्ठा हो सकता है उसके अंदर, या कहीं बाहर कोई टूटा हुआ जूता, टायर, फटा हुआ टायर, कुछ भी, इवन घर के अंदर अगर आप देखें, घर के अंदर कहीं मनी प्लांट आपने लगा रखा है जहां आपकी पानी आप जिसमें पानी आप इकट्ठा करते हैं। और एक और बड़ी कॉमन चीज है जहां पर मच्छर पैदा होते हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो आजकल आपके फ्रिज जो आते हैं, फ्रिज के पीछे की जो ट्रे होती है जिसमें कि फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज जिसे आप बोलते हैं, जिसमें सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, पीछे उसके कंप्रेसर के पीछे पानी इकट्ठा हो जाता है, वो एक बड़ा ही फेवरेबल एटमॉस्फेयर है मच्छर पैदा होने के लिए। जो हमें बोलते हैं ना कि जो आपके घर के कूलर है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, आप यदि फ्रिज के पीछे की ट्रे को निकाल के बाहर देखें, उसके अंदर देखेंगे तो आपको उसमें मच्छर के लार्वा नजर आ सकते हैं।
1: अच्छा, तो उसकी भी सफाई करना बहुत जरूरी है।
2: उसकी रेगुलर सफाई, हफ्ते में रेगुलरली उसकी भी सफाई करें तो सारा पानी उसमें हटाते रहें, उसमें ये चीज बहुत जरूरी, ध्यान रखिए
1: जी, बहुत काम की बात है। डॉक्टर साहब हमारे एक और श्रोता फोन लाइन पर। हेलो,
3: सबको पहले मेरा नमस्कार आपको
1: जी। नमस्कार आपको।
3: मैं जम्मू

0: कश्मीर से बोल रहा हूँ राजेश कुमार
1: जी।
0: और हमारा डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि जो दिन वाला मच्छर काटने से डेंगू होता है या रात वाला मच्छर काटने से डेंगू होता है
1: जी।
2: राजेश जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए राजेश जी एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो डेंगू मॉस्किटो है इसकी खास चीज वह है जो दिन में मच्छर काटता है उसको डे बाइटर बोलते हैं। डे बाइटर इन द सेंस कि जिस वक्त ये दिन होता है दिन के समय मच्छर काटता है, रात के समय आराम करता है। और इसीलिए अगर आप देखें डेंगू वाला मच्छर या मलेरिया वाला मच्छर जो है उन दोनों में कौन सा ज्यादा खतरनाक है, वो दिन का मच्छर खतरनाक है। डेंगू मच्छर ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि दिन में काटता है, दिन में आप जो है कभी मच्छरदानी लगा के बाहर नहीं घूमते हैं। दूसरा बरसात या रेनी सीजन के दौरान में आपको ह्यूमिडिटी बहुत होती है, आप पूरी बाजू के कपड़े पहनते नहीं, आप हाफ शर्ट या हाफ पैंट इस तरह के उसमें घूमते हैं, तो जितने भी आपके शरीर के एक्सपोज्ड पार्ट हैं तो वहां पर ये मच्छर आराम से काट दो। दूसरा ये घर के अंदर अंधेरे में रहता है, ये तो कहीं भी आप अंधेरे में कोने में कहीं अगर बैठे होंगे तो वहां पर ये मच्छर काटता है। और दूसरा एक और इस मच्छर की खासियत ये है कि जब आप दिन में मच्छर काटता है इसको तो जो काटता है तो उसका थोड़ा पेनफुल होता है, इसका बाइट जो होता है, तो जैसे ही मच्छर काटेगा आप उसको उड़ा देंगे। तो इसका पेट एक बार के काटने से इसका पेट नहीं भरता है, एक बार के व्यक्ति का खून चूस के इसका पेट नहीं भरता। जैसे रात में अगर जैसे जो रात के वाले के मच्छर होते हैं वो किसी मच्छर के, अब व्यक्ति सो रहा है सोते समय मच्छर काट रहा है, काटने का तो पूरा एक तृप्त होकर वो अपना उसका हट जाता है मच्छर, रात वाला जब मच्छर होता है। मगर जो दिन वाला मच्छर होता है कम से कम 15-20 लोगों काटने के बाद में उसका पेट भरता है,
1: मतलब वो फैलाता जाता
2: तो
1: है।
2: वो इन्फेक्शन फैलाता है, इसलिए डेंगू का कभी भी आउटब्रेक होता है तो इसलिए वो काफी लार्ज स्केल पर होता है। इसलिए जो डे बाइटर मॉस्किटो ये डेंगू मॉस्किटो इसलिए थोड़ा ज्यादा पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा खतरनाक मानते हैं हम लोग
1: जी। और आपने बताया कि ये बहुत तेजी से फैलता है, अगर
2: इसीलिए
1: आउटब्रेक की तरह होता है, इसीलिए अवेयरनेस की जरूरत है,
2: इसलिए लोगों को इस बारे में जानकारी जरूरी है कि दिन के टाइम में अपने शरीर को पूरा ढक्के रखें, ढक्के इन द सेंस की पूरी बाजू के कपड़े पहने और हो सके तो रिपेलेंट क्रीम वगैरह जो भी क्रीम वगैरह होती है जैसे मच्छर वाली क्रीम होती है वो लगाएं। यदि बच्चे अगर दिन में सोते हैं तो उसको दिन में भी मॉस्किटो नेट के अंदर मच्छरदानी में बच्चों को सुलाएं, ये बहुत जरूरी है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब आपने कुछ तो बताया कि ये सुबह काटता है दिन में काटता है, इसको कुछ पहचान भी सकते हैं क्या देख के?
2: हाँ ये बहुत जरूरी, इसको डेंगू मॉस्किटो को टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। एक चीज खास ये है कि एक तो ये जो तीन मच्छर अगर आप देखें, डेंगू का मच्छर होता है एडीज मॉस्किटो, मलेरिया का मच्छर होता है एनोफिलीज मॉस्किटो, और जो दूसरा एक तीसरा मच्छर जो हिंदुस्तान में काफी पाया जाता है वो होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये तीनों मॉस्किटो को पहचानने का बड़ा आसान वो है कि जो डेंगू वाला मच्छर होता है दिन वाला मच्छर होता है तो थोड़ा डार्क कलर का होता है, दूसरा इसके पैरों पे स्ट्राइप्स होते हैं व्हाइट सफेद और सफेद और काले रंग की धारियां होती हैं, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। तो इसलिए एक तो दिन के समय आप उसको दिखेगा नहीं क्योंकि काला होता है, अंधेरे में वैसे भी नहीं दिखेगा। यदि आप उसको मारेंगे तो मार के यदि आप उसको ध्यान से अगर आप उसको देखें तो इसके पैरों पे इसके सफेद और काले रंग की धारियां सी होती हैं, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि डे बाइटर मॉस्किटो एडीज मॉस्किटो, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं, ये आराम से पहचाना जा सकता है जी।
1: एक और श्रोता ऑनलाइन पर, हेलो
3: नमस्कार
1: जी। नमस्ते,
3: मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ
1: जी। राजा जी प्रश्न करें डॉक्टर साहब से।
3: जी जी, किसी को डेंगू जब हो जाता है तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो डेंगू होने के बाद खास करके हमको किन बातों का ये ध्यान रखना है कि ज्यादा जो है ये बीमारी आगे ना बढ़ने पाए और कंट्रोल में रहे, ये जानना चाहते हैं।
2: राजा जी नमस्कार। एक तो एक चीज ये तो मुझे मालूम पड़ेगा कि शालिनी जी बहुत ही प्रसिद्ध हैं क्योंकि इनकी प्रसिद्धि का मुझे क्योंकि मैं भी रेगुलरली ये प्रोग्राम सुनता रहता हूँ और उसमें मुझे मालूम पड़ता है शालिनी जी वाकई काफी प्रसिद्ध है, लोगों में इनका काफी पहुंच है।
1: थैंक यू सर।
2: और दूसरा आपने एक प्रश्न पूछा कि ये जो डेंगू के बारे में हो जाए तो कैसे इसको क्या करें, तो पहले तो मैं इस बारे में राजा जी मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि डेंगू के लक्षण क्या है, थोड़ा ये जरूरी जानना जरूरी है। मेरे से अधिकतर लोग जानते होंगे डेंगू के लक्षण क्या है कि एक तो बहुत तेज बुखार आएगा और साथ में सर के आगे वाले हिस्से में काफी दर्द होगा, और दूसरा एक सबसे बड़ी चीज जो डेंगू के फीवर में खास होता है कि जब आप अपनी आंखों को घुमाएंगे, आंखों को घुमाने पर आपको आंखों के पीछे दर्द महसूस होगा, इसको बोलते हैं रेट्रो ऑर्बिटल पेन। ये बड़ा पिक्यूलियर चीज होती है डेंगू वाले उसमें फीवर में, तो ये जब कभी स्पेशली जब आंख वगैरह घुमाएंगे तो उसमें आपको दर्द का एहसास थोड़ा ज्यादा होगा, ये बड़ी कॉमन और पिक्यूलर फीचर है। और साथ साथ में उसके पूरे शरीर में मांसपेशियों में जोड़ों में बहुत दर्द होगा, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर इसलिए बोलते हैं। और धीरे धीरे इसमें फिर आपका स्वाद भी थोड़ा चला जाएगा, भूख भी नहीं लगेगी, ये सब चीजें इसकी काफी चीज होती हैं। धीरे धीरे इसमें जब यदि यूजली ये 5-7 दिन तक ये अवस्था रहती है, यदि ये फीवर अगर आप इसको किस तरह कंट्रोल कर लेते हैं और फीवर इसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, तो उसके बाद में यदि सही हो जाए तो ठीक है, अन्यथा क्या होता है कि फिर लगातार उल्टी आना, उल्टी के साथ में कभी कभी ब्लड भी आ सकता है खून में, खून के साथ मुंह से खून की उल्टी भी आ सकती है, मुंह से या नाक से भी खून आ सकता है, जो आपके गम्स हैं मसूड़े हैं वहां से भी खून आ सकता है, शरीर के ऊपर थोड़ा रैशेज आ जाते हैं एक स्टेज के बाद में, शरीर पे जैसे खसरे के जैसे रैशेज होते हैं उस तरह के रैशेज शरीर के ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा सा आ सकते हैं, और बड़ी बेचैनी रहती है, और जब वो स्टेज थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है तो धीरे धीरे वो लक्षण है कि शरीर में कहीं ना कहीं हेमरेज हो रहा है। तो उसको पहली स्टेज होती है डेंगू फीवर की, दूसरी स्टेज होती है डेंगू हेमरेजिक फीवर की, DHF बोलते हैं इसे हम। और यदि वो स्टेज अगर जो अगर उस समय अगर पेशेंट को अगर थोड़ा सावधानी ना बरते तो वही धीरे धीरे वो शॉक वाली स्टेज में पहुंच जाता है, जिसमें कि शरीर में से शॉक के सारे फीचर्स होते हैं, आपकी पल्स काफी कम हो जाती है, आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, ड्राई मुंह, आपका मुंह सूख जाता है, और ये सब चीजें लक्षण पे होते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम उसे हम बोलते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो अपने आप को ध्यान रखें कब आपको डॉक्टरी सलाह लेनी है, ये बहुत जरूरी है कि ये थोड़ा जानकारी आपको हमेशा होनी चाहिए।
1: जी, ये हमें आपने काफी विस्तार से डॉक्टर साहब लक्षण बताए, लेकिन कुछ लक्षण इसमें मैं जब सुन रही थी तो मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसे लक्षण चिकनगुनिया में भी होते हैं, जो आंखों में दर्द होना और हड्डी या पसलियों में दर्द होना, तो मच्छरों से फैलने वाली और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे चिकनगुनिया है, मलेरिया, इनके बारे में
2: आपने अच्छी चीज बताई, जो यही जो लक्षण होते हैं ये उसमें भी होते हैं चिकनगुनिया, मगर चिकनगुनिया बस एक चीज है, चिकनगुनिया हड्डी और जोड़ों में इतना ज्यादा दर्द होता है कि मतलब मरीज को उसमें उठा भी नहीं जाता है, तो वो जो बिल्कुल हड्डी जिसे तोड़ना जैसे बोलते हैं हड्डी तोड़, वाकई में हड्डी तोड़ टाइप की जो स्टेज आ जाती है वो चिकनगुनिया में काफी कॉमन होती है।
1: मलेरिया में
2: मलेरिया अच्छा आपने बोला, दूसरा प्रश्न था आपका कि ये मच्छरों से पैदा होने वाली और कौन कौन सी बीमारी है, तो एक तो डेंगू वाला मच्छर होता है एडीज मस्किटो, उससे आपकी मेन तो दो बीमारी हो गई आपकी,
1: डेंगू
2: हो गया और चिकनगुनिया हो गया, दो चीज हो गई। अब बाकी जो मलेरिया वगैरह है वो आपका एनाफिलीज से मॉस्किटो से मलेरिया भी होता है, फिर कुछ वेस्ट नाइल फीवर, कई सारी और बीमारियां जो दूसरे हमारे यहाँ पर होती है, फाइलेरिया है, ये सब चीजें ये बीमारी भी होती है मच्छरों से पैदा होने वाली।
1: जी। तो इनके बारे में हम किसी और कार्यक्रम में बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास डेंगू के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे पहले और फिर आएंगे।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और मैंने ये देखा कि डॉक्टर साहब तो गाने में खो गए थे। नीला आसमान सो गया और डॉक्टर साहब खो गए।
2: बहुत ही प्रिय थे।
1: और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर एस के रसानिया, बहुत बहुत अच्छे सिंगर हैं और बहुत गाने और शायद आपकी रिकॉर्डिंग्स भी मैंने सुनी है। और आज उम्मीद है कि मैं यहाँ पर लाइव भी कुछ आपसे गवा पाऊंगी, अगर मैं सक्सेसफुल हो गई तो। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कुछ सुना दीजिएगा, चलते चलते हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे। और ये सारे जो आज गीत बज रहे हैं इस कार्यक्रम में, वो डॉक्टर साहब की पसंद के हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे मैसेजेस भी भेजे हैं। चाणक्य चौक गाजियाबाद से मनोहर लाल गांधी लिख रहे हैं कि डेंगू बुखार तेजी से चढ़ता है फिर उतरता है, और ये सिलसिला कितने दिनों तक रहता है, प्लीज बताएं। डेंगू कितने प्रकार का होता है, क्या हम डॉक्टर की सलाह के बिना मेडिकल स्टोर से दवाई ले सकते हैं, ये सही रहेगा कि नहीं, प्लीज बताएं।
3: शालिनी जी, आपने जो प्रश्न पूछा उसमें कुछ प्रश्न का जवाब तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। डेंगू कितने प्रकार का होता है, अगर शुरुआती स्टेज में उसको बोलते हैं डेंगू फीवर, जिसको हम बोलते हैं साधारण जो वायरल फीवर की तरह से, जिसमें पूरे शरीर में पूरा फीवर होना, बुखार होना, हड्डियों में दर्द, जी मिचलाना और पूरे जोड़ों में दर्द, ये डेंगू फीवर। और यदि वो डेंगू फीवर का थोड़ा और अग्रणी रूप हो जाए तो डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें कि काफी कुछ चकत्ते शरीर में पड़ जाना और धीरे धीरे, और फिर उसका भी शॉक सिंड्रोम, वो थर्ड स्टेज होती है, वो मैं आपको पिछले समय बता दिया। फिर आपने बोला कि जो क्या डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा ले सकते हैं कि नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि कभी भी यदि आपको लग रहा है वायरल फीवर है, आपको लग रहा है कि डेंगू फीवर हुआ है, तो उसमें सबसे ज्यादा कुछ एक चीजें आवश्यक है कि कभी, क्योंकि बुखार काफी तेज होता है, तो बुखार को कम करने के लिए अपने कोल्ड स्पॉन्जिंग से बोलते हैं कि अपने माथे पे ठंडे पानी की पट्टी रखना, ये शरीर को थोड़ा ठंडे पानी की पट्टियां रखना, ये सब चीजें जरूरी हैं। और यदि बुखार हो रहा है तो दिन में पैरासिटामोल, सिर्फ जो बुखार उतारने के लिए, आप ले सकते हैं दिन में तीन चार गोलियां ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि उसमें, मतलब उद्देश्य यह है कि बुखार ज्यादा आपके दो दिन तीन दिन से ज्यादा ना रहे, तो सिर्फ पैरासिटामोल गोली आप ले सकते हैं, प्लस पानी लगातार लेते रहें, खाना कम ना करें, ये चीजें, वरना तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी। मगर यदि आपको लग रहा है कि आपका बुखार कम नहीं हो रहा है, प्लस आपके शरीर में कहीं चकत्ते पड़ने शुरू हो गए हैं, या आपको खून की उल्टी या लगातार कुछ उल्टी आ रही है, या पेट में दर्द हो रहा है, पेट फूल रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या मितली बहुत ज्यादा, नौजिया वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, सीने में कहीं आपको लग रहा है थोड़ा जकड़न टाइप की महसूस हो रहा है, मुंह सूख रहा है बहुत ज्यादा, ये सब चीजें हो रही हैं, तो तब आपको डॉक्टरी सलाह तुरंत लेनी चाहिए। और तब यूजुअली, अच्छा, इसमें एक और चीज है कि डेंगू फीवर में जब फीवर नॉर्मल आ जाता है तो उसके बाद में सेकंड पीक शुरू होता है फीवर का, वो थोड़ा एक थोड़ा डेंजर सिग्नल होता है, क्योंकि वो जो सेकंड पीक जो शुरू हुआ उसमें कई दफे डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम वाले फीचर शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए डेंगू फीवर कम होने के बाद भी कुछ दिन थोड़ा सावधानी बरतें, ये थोड़ा आवश्यक है। ऐसा नहीं कि अगर तीन चार दिन फीवर का, अगर फीवर रुक गया और अगर आपको लग रहा है सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, मगर यदि फिर दोबारा से यदि टेम्परेचर बढ़ता है, या आपको धड़कनें तेज होने लगती हैं, या आपको मुंह सूख रहा है, कहीं वॉमिटिंग शुरू हो जाती हैं, या कहीं मुंह से कहीं खून आने लगे, या मसलों में से कहीं खून आने लगे, नाक में से कहीं खून आने लगे, तो ये थोड़ा लक्षण है जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर सलाह लेनी चाहिए
1: जी। और डॉक्टर साहब, ऐसे भी सुना है कि इसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं और कभी कभी खून भी चढ़ाना पड़ता है, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है।
3: देखिए, आजकल वैसे जनता बहुत जागरूक हो चुकी है ऑलरेडी, उसमें यह कि जरा सा उनको लगता है कि उनको डाउट है तो खुद ही अपने आप जाके लैब में टेस्ट करा लेते हैं। प्लेटलेट काउंट उनका पहली चीज होती है, प्लेटलेट काउंट देखना, उनको लगता है कि अरे यूजुअली 1 लाख से ऊपर यदि प्लेटलेट है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 1 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नॉर्मल है वो, ठीक है। मगर 1 लाख से अगर नीचे होना शुरू होता है तो उन लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। मगर इसमें भी है कि यदि आपके प्लेटलेट अगर काउंट कम हो रहे हैं, 20,000 या उससे नीचे भी जा रहे हैं, तो डॉक्टर सलाह जरूर लें, डॉक्टर के पास जाएं। तो डॉक्टर अगर चाहेंगे तो उसमें यदि अगर शरीर में कहीं खून की कमी हो रही है या प्लेटलेट

0: भी कम हो रहे हैं, तो डॉक्टरी सलाह पर, डॉक्टरी डॉक्टर अपने आप उसको देख के, फिर मरीज को देख के डॉक्टर अपने आप इलाज करेंगे अस्पताल के अंदर, अपने आप से कोई इलाज ना करें उसके लिए, थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है।
1: तो मुझे जहां तक समझ में आई डॉक्टर साहब आपकी बात कि बुखार को कम करने के लिए आप दवाई लेते रहे, पर जरा सा भी आपको
0: जरा सा
1: लगता है
0: भी,
1: कि 4-5 दिन से ऊपर हो गया है तो डॉक्टर के
0: तो
1: पास
0: डॉक्टरी डॉक्टर
1: जरूर
0: डॉक्टर
1: जाएं।
0: पास जरूर जाएं
1: जी,
0: जी।
1: हमारे पास ये एक प्रश्न आया है, नाम नहीं लिखा है उन्होंने अपने श्रोता ने, लेकिन लिखा है कि किस एज ग्रुप में डेंगू ज्यादा होता है, ऐसा कोई एज ग्रुप होता है क्या डॉक्टर साहब?
0: देखिए सभी एज ग्रुप में ये होता है, कोई उसमें वो सभी एज ग्रुप, और दोनों में मर्द और पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों में हो सकता है डेंगू, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं। मगर हाँ बच्चों में थोड़ा सा ये इसका थोड़ा विकरालता थोड़ा ज्यादा होती है, थोड़ा सीवियरिटी इसकी थोड़ा ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे थोड़ा घर के अंदर ज्यादा रहेंगे तो उसमें ज्यादा उनको होता है, तो उसमें थोड़ा उसके अंदर थोड़ा सा वो दिक्कत वाली बात हो जाती है उनके अंदर थोड़ा। जी
1: हमारे श्रोता है विशाल मल्होत्रा सिरसा हरियाणा से, इन्होंने लिखा है कि घर के अंदर मच्छर को मारने के लिए अगर हम स्प्रे यूज करते हैं तो ये उपयुक्त होगा?
0: देखिए बिल्कुल सही बात है, मैं इसमें मगर एक चीज कहना चाहूंगा, आप यदि घर के अंदर जो भी स्प्रे करेंगे तो वो एडल्ट मॉस्किटो जो वयस्क मच्छर है उसको खत्म करेगा, मगर रोग की जड़ जो है आप उससे देखें कि मच्छर कहां पैदा हो रहे हैं, जब तक आप उस रोग की जड़ को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि तो आपने आज तो एडल्ट मॉस्किटो मार दिया स्प्रे करके, मगर कल को जहां मच्छर पैदा हो रहा है, जिस जगह पैदा हो रहा है, अगर आपने वो सोर्स खत्म नहीं किया, वो फिर दोबारा मच्छर वहां पैदा होकर आएगा। तो आप घर और घर के आसपास जरा देखें कहां पर मच्छर पैदा हो रहे हैं, आप उस सोर्स को खत्म करें, इसको हम बोलते हैं सोर्स रिडक्शन, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, आप रोग की जड़ों को खत्म करो ना, कि कहां मच्छर पैदा हो रहे हैं वो देखो, वो जगह पहले आप देखो कहां पर मच्छर पैदा हो रहे हैं,
1: जी।
0: उस जगह को खत्म करो।
1: नेहा लिख रही है मुंबई से डॉक्टर साहब कि डेंगू पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड बी द डाइट ऑफ डेंगू पेशेंट्स?
0: सब
1: थोड़ा
0: कुछ
1: तो आपने बताया था पानी का
0: देखिए,
1: इनटेक और
0: देखो एक चीज खासतौर से ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी बुखार ज्यादा हो, कभी ये जरूरी नहीं कि इसी डेंगू फीवर में, कभी भी यदि फीवर ज्यादा होता है तो शरीर में पानी की कमी होती है, क्योंकि जब फीवर ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं हमारा एक मुख्य उद्देश्य होगा कि अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, पानी की प्रचुर मात्रा अपने शरीर में बनाए रखें। तो पहली चीज तो यह है कि नियमित रूप से पानी और या तरल पेय पदार्थों का सेवन करते रहें, प्लस जो हृष्टपुष्ट बनाने वाली चीजें हैं, जैसे जो घर की चीजें हैं, जैसे मेरे हमें याद है हमारे जो बचपन में डॉक्टर थे तो फैमिली डॉक्टर थे, कुछ भी चीज हो बोलते खिचड़ी, दलिया, खिचड़ी, दूध, चाय, ये जरूर लेने, मतलब उनका कहना ये था कि कुछ ना कुछ खाते रहो मगर भूखे मत रहो, और खाने के लिए भी जरूरी नहीं कि आप बाजार की चीजें, घर की बनी हुई जो बिल्कुल सेहतमंद चीजें हैं वो सब लेते रहें। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए कि कभी खाना कम नहीं करना है, और पीने के लिए तरल पेय पदार्थों का सेवन करते रहें लगातार। जी
1: जी दिल्ली से परिधि लिख रही हैं कि क्या डेंगू होने की वजह से कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं? क्या ऐसा होता है कि एक बार डेंगू हो गया या बिगड़ गया उसका रूप तो वो ता जिंदगी उससे कुछ होता रहे नुकसान?
0: परिधि जी देखिए वैसे तो अभी वो विकराल रूप जो होता है, वो जो इस तरह का विकराल रूप जो होता है डेंगू का, वो थोड़ा देखने का इतना वो नहीं मिलता देखने का, वो क्योंकि यदि आप उसको समय पर डेंगू को कंट्रोल कर लें, क्योंकि कई दफे क्या होता है जो डेंगू के अगर एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, उसमें शरीर में कहीं ना कहीं किसी अंग के अंदर कई दफे गैंग्रीन या कुछ इस तरह की चीज हो सकती है, कोई या कोई शरीर का कोई अंग थोड़ा वैसा हो सकता है, मगर वो एक स्टेज अगर आप सही तरह से अगर डेंगू के मरीज का इलाज हो रहा है तो उसमें वो सब चीजें नहीं होती हैं, मगर वैसे रूटीन में कोई ऐसा उसका ये नहीं कि आफ्टर लॉन्ग टर्म आफ्टर इफेक्ट्स ऐसे कुछ नहीं होते हैं।
1: जी,
0: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न
0: जी
1: करने के लिए, उम्मीद है आपको प्रश्न के जवाब मिल गए। और हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर, हेलो।
2: हेलो शालिनी मैडम नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: हाँ जी अच्छा बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: प्रश्न करें सर।
2: डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कोविड के लिए वैक्सीन बनी थी तो क्या डेंगू के लिए भी कोई वैक्सीन बनाने का प्रयास किए जा रहे हैं? दूसरा डेंगू का वो खत्म करने के लिए लोकल अथॉरिटी स्प्रे करती हैं तो वो उसका जो स्प्रे का जो धुआं होता है वो आम आदमी के लिए कितना हार्मफुल होता है?
0: बहुत अच्छा जी, जी आपने बहुत अच्छी चीज पूछी, दोनों प्रश्न आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आपने पहला प्रश्न पूछा कि जैसे कोविड के लिए वैक्सीन है क्या इसके लिए कोई वैक्सीन है कि नहीं है। देखिए तीन देश हैं जहां पर कोविड की वैक्सीन ऑलरेडी लग रही है, मगर वो हमारा देश इसमें शामिल नहीं, मगर वहां पर वो अभी ट्रायल बेसिस में, हमारे देश में वैक्सीन में हम उम्मीद करते हैं कि 2026-27 तक शायद हम वैक्सीन
1: मतलब उसको कुछ देशों में डेंगू की वैक्सीन,
0: वैक्सीन जी, वो जी। अभी मगर लग रही है, मगर वो काफी समय से उनके, मगर वो अभी इंडिया हिंदुस्तान में अभी अभी वो नहीं आई है। हमारे यहाँ कुछ ट्रायल चल रहा है, ट्रायल स्टेज में है और उम्मीद है कि 2026-27 तक ये वैक्सीन शायद हमारे को उपलब्ध होगी। दूसरी चीज आपने बोली स्प्रे के बारे में, देखिए जो स्प्रे है जो हम जिसको फॉगिंग बोलते हैं, फॉगिंग जो असर करता है एडल्ट मॉस्किटो के ऊपर, जो व्यस्क मच्छर होता है जो उड़ता है मच्छर उसके ऊपर असर करता है, उसके कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि वो जो एडल्ट मॉस्किटो है उसको खत्म कर देता है, और एडल्ट मॉस्किटो खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर उसका एक टेम्पररी इफेक्ट तो रहता है, मगर उसका एक नुकसान ये भी है कि उसमें फॉगिंग में डीजल या केरोसिन का इस्तेमाल होता है, तो कुछ ना कुछ जो सांस के मरीज होते हैं उनको थोड़ा सा नुकसान कर सकता है वो। दूसरा एक और चीज है कि उसमें फॉगिंग में कई सारी चीजों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि उस समय कहीं हवा तेज ना चल रही हो, दूसरा लोग अपने घर की खिड़कियां दरवाजे खुले रखें ताकि वो फॉग जो है या धुआं जो निकालते हैं वो घर के अंदर तक प्रवेश कर सके। लोग क्या करते हैं कि जब फॉगिंग होती है तो उस समय बल्कि और घर के अपने दरवाजे बंद कर देते हैं कि बाहर के मच्छर कहीं अंदर ना जाए, जबकि फॉगिंग में तो उद्देश्य होता है कि जितने मच्छर हैं सब पे उसका असर हो, तो ये थोड़ा जानकारी इसके लिए जरूरी है लोगों को। मगर फिर भी मुझे उससे ज्यादा अच्छा लगता है जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं सोर्स रिडक्शन, कि जहां ये मच्छर पैदा हो रहे हैं हमारा उद्देश्य उस तरफ होना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब एक हमें प्रश्न आया है कि क्या ट्यूबलाइट, जैसे आपने कहा दिन में काटता है ये मच्छर, तो क्या ट्यूबलाइट की रोशनी डेंगू के मच्छर को काटने के लिए लाइट का काम करती है क्या? ये माना जाएगा कि लाइट है।
0: मैं इस बारे में अपने अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। मैं अपने मेडिकल कॉलेज में हमने अपने स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं, तो उनको कई बार उनको जानकारी देने के लिए कि उनके घर में कौन से मच्छर पैदा हो रहे हैं तो वो जरा इकट्ठा करके लाओ, तो उनको मैं ये थोड़ा बताता था कैसे मच्छर इकट्ठा करने हैं, तो उनको बोलता था पूरे कमरे के थारे खिड़की दरवाजे बंद करके एक मॉस्किटो मैट जलाओ, उसका धुआं करो और एक लाइट खुली छोड़ दो, तो सारे सारे मच्छर उस धुएं की तरफ आकर्षित होंगे, उस लाइट की तरफ आकर्षित होंगे, धीरे धीरे बेहोशों के नीचे गिर जाएंगे। अब वो उसमें इकट्ठे करके लाओ, अगले दिन उनको हैंड लेंस से आप आइडेंटिफाई करो। हम वो उनको सिखाते हैं कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मॉस्किटो है। तो ये जो प्रश्न है कि क्या वो ट्यूबलाइट की रोशनी वो मच्छरों को रोकने के लिए सही है कि नहीं है, देखिए जो भी कहीं भी कोई डार्क जगह होगी वो मच्छर वहां पर आराम करता है, रात के समय तो वो वैसे ही आराम करता है, दिन के समय वो काटता है, और दिन में भी जो अर्ली मॉर्निंग है सुबह का समय या शाम का समय, शाम से थोड़ा पहले या दिन में कभी भी वो काटेगा, तो कहीं रोशनी अगर थोड़ा अंधकार होगा तो वहां पर वो, जहां अगर आपका शरीर कहीं खुला होगा एक्सपोज पार्ट होगा उसमें वो काटेगा। ट्यूबलाइट की रोशनी हो या बल्ब की रोशनी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अंधेरा कहीं भी है तो वो वहां पर रहेगा और काट जाएगा।
1: जी तो हमारे श्रोता लगातार हमसे जुड़ रहे हैं फोन लाइन के माध्यम से भी और मैसेज के माध्यम से भी। लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और फिर बता दूं गाना खासतौर पर डॉक्टर साहब को बेहद पसंद है, तो हम लोग भी सुन लेते हैं इस गीत को।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत डॉक्टर साहब, ये आपकी जो पसंद का हमने अभी सुना आशा जी की आवाज में, मन आनंदित हो गया, आनंद आनंद छायो, बिल्कुल। और अब हमारे श्रोता हमें और मैसेज और फोन कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि आपने बताया कि इसको पूरी तरह से इस पर काबू पाने के लिए डेंगू पर हमें मच्छरों पर काबू पाना होगा, तो क्या ये जो वेक्टर कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हैं और कैसे इसको फॉलो किया जाए, प्लीज बताएं।
1: हाँ शालिनी जी, मैं इसको संक्षेप में इसको ये थोड़ा चार हेडिंग्स में थोड़ा इसको कवर करना चाहता हूँ। देखिए, एक तो सबसे जो भी डेंगू का मच्छर है, मच्छर डेंगू से बचाव अगर आप कहें तो डेंगू से बचाव के चार विभिन्न तरीके हैं। सबसे पहला है आप अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा कैसे करते हैं, पर्सनल प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स। उसमें यह है क्योंकि बरसात और बरसात के बाद के मौसम में जबकि वातावरण में ऑलरेडी आर्द्रता काफी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो मैं समझ सकता हूं उस टाइम में पूरे शरीर को ढके हुए कपड़े पहनना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। मगर कोशिश करें कि फुल स्लीव्स क्लोथ पहने, अपने शरीर को थोड़ा ढककर रखें, और अगर वो संभव नहीं है तो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स जो होती हैं जो आप लगाते हैं जिसमें मच्छर आपके ऊपर ना आए, वो क्रीम्स बाजार में उपलब्ध होती हैं, वो लगा सकते हैं। दिन में यदि सोते हैं तो दिन में बेड नेट्स वगैरह ये मच्छरदानी का प्रयोग करें, स्पेशली बच्चों के लिए खासतौर से। कमरे में, जिस कमरे में भी आप काम करते हैं या रहते हैं, वहां पर कोई ना कोई मॉस्किटो रिपेलेंट जो आपके कॉइल्स वगैरह होती हैं या जो जो प्लगीज आते हैं वो इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका है कि आप मच्छर, जहां आपको लग रहा है कि मच्छरों का पानी पानी बहुत इकट्ठा होता है, जहां पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा है, वहां कहीं ना कहीं लार्वा पैदा ना हो पाए ताकि मच्छर वहां पे अंडे ना दे पाए, तो उसके लिए जरूरी है, जैसे आपको बताया भी गया हो कि सप्ताह में एक बार अपने कूलर को ड्राई रखें। वो इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि जो मॉस्किटो जो पैदा होता है उसका पूरा चक्र 7 दिन का होता है, अंडे से लेके उसके एडल्ट बने तक 7 दिन का समय होता है, तो हफ्ते में एक दिन अपने जो जहां पे पानी आपका इकट्ठा होता है उन बर्तनों को साफ करके रखें। एक और चीज है, इस मच्छरों के जो एडीज के जो अंडे होते हैं वो अगर एक साल तक भी अगर उसमें कहीं अगर चिपके रहे, एक साल बाद यदि उनको पानी मिला तो फिर दोबारा वो पूरा मैच्योर हो सकते हैं, तो इसलिए उसके अंडे एक साल तक सर्वाइव कर सकते हैं, डेंगू के जो अंडे होते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि मच्छरों को जो जो आप जो वाटर कंटेनर है उनको आप सप्ताह में एक बार पूरा ड्राई करके साफ करके रखें, और अगर आपको लग रहा है जिनको आप इकट्ठा जिनको साफ करके नहीं रख सकते हैं, या जो उसमें अगर फॉर एग्जांपल कोई तालाब है या कोई ऐसी जगह जहां पानी इकट्ठा रहता है, तो वहां पर जो पानी के अंदर मॉस्किटो लार्विसाइडल ऑयल होता है या दवाई आती है एबेट वगैरह, उसमें वो डाल सकते हैं, वो सरकारी सिस्टम में उपलब्ध होती है, तो ये थोड़ा जरूरी है। या जैसे आप देखेंगे जैसे इंडिया गेट है, इंडिया गेट के आसपास वाटर काफी सारे वो हैं, बोट क्लब वगैरह है, वहां पर गेंबूशा फिश या गप्पी फिश उसमें डाल देते हैं, वो जो है लार्वा को खा जाती है। और तीसरा सोर्स रिडक्शन, कहीं भी जहां आपको आप कहीं भी पार्क में जा रहे हैं, लग रहा है कहीं भी घूम रहे हैं, जहां के आपको लग रहा है कि आपके मच्छर पैदा हो सकता है, दिख रहा है कोई ऐसा बर्तन जिसपे कि इकट्ठा कुछ पानी इकट्ठा हो रहा है, उसको खत्म करें, उसको पैर से लुड़का दें। जैसे हम अपने यहाँ, मैं जिस बड़े कॉलेज में हूँ लेडी हार्डिंग में, हम स्टूडेंट्स को जानकारी देते हैं कि जहां कहीं वो जब कभी राउंड लेते हैं कहीं भी कोई लग रहा है कि कहीं पानी इकट्ठा दिख रहा है, किसी कोई पेप्सी कप पड़ा हुआ है, कोई कप पड़ा हुआ है जिसमें पानी इकट्ठा है, कोई ऐसी चीज पड़ी है उसमें लग रहा है पानी इकट्ठा, तो पैर से उसको उड़ाल दो, उसको क्रश कर दो, तो ताकि वो खत्म हो जाए। तो और सबसे बड़ी चीज, लोगों को जानकारी देना इस बारे में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब चीजें जरूरी हैं तो इसमें वेक्टर कंट्रोल मेजर्स के लिए।
0: जी जी, हमारे एक श्रोता ऑनलाइन पर है, देखें क्या पूछना चाहते हैं। हेलो,
2: मैं बोल रहा हूँ किशन दिल्ली से।
0: जी जी।

0: साथ में प्रश्न करें।
1: प्रश्न ये है कि छोटे बुजुर्गों को ज्यादा काटती है छोटे
0: किसको ज्यादा काटते हैं जानना चाह रहे हैं, बच्चों को कि बुजुर्गों को? जी जी
2: किशन जी
1: को कम काटते हैं, बच्चों में देखते ज्यादा काटते हैं।
2: किशन जी देखिए, ऐसा मच्छर ना तो उम्र देखता है ना ये देखता है कि वो मर्द है या स्त्री है जिसको काट रहा है। वो मच्छर तो सिर्फ ये देखता है, अगर वो मनुष्य का खून पिएगा तो वो सिर्फ देखता है मनुष्य है कि नहीं, वो किसी का भी, इसको इसके लिए कोई डिमार्केशन नहीं कि बच्चों को ज्यादा काटता है। मगर हाँ, उसका विकराल रूप किसमें ज्यादा होता है वो थोड़ा देखने वाली बात है। तो इसलिए जरूरी है कि हर कोई अपने आप को उससे बचा कर रखे, मच्छरों को काटने से बचाए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया, विस्तार से बताया किस तरह से वेक्टर कंट्रोल मेजर्स हैं, मच्छरों को कैसे खत्म किया जा सकता है और किस तरह से करना चाहिए, कौन कौन से तरीकों से। ये भी बताएं कि अगर गर्भवती महिला है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको अगर डेंगू हो जाता है तो कुछ खास सावधानियां लेनी होती
2: है। देखिए, गर्भवती महिला को थोड़ा सा ये बहुत जरूरी है कि उनको ये थोड़ा हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाती है गर्भवती महिलाएं जो होती है, क्योंकि ये जो डेंगू इन्फेक्शन है स्पेशली जब कभी बच्चा डिलीवरी के टाइम में बच्चे से माँ से बच्चे में भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये सब चीज थोड़ा गर्भवती स्त्री को खासतौर से ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी डेंगू के कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो दोनों पर, माँ पर और बच्चे पे, दोनों पे उसका इफेक्ट आता है। माँ को यदि गर्भवती स्त्री को होता है तो कहीं ना कहीं उसके बच्चे का डेवलपमेंट, जो इंट्रायूटराइन डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर उसका असर आता है, और डॉक्यूमेंटेड है कि कहीं ना कहीं उसका वो इन्फेक्शन बच्चे में भी, न्यूबॉर्न बेबी में भी उसका इन्फेक्शन पहुंच सकता है। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को तो खासतौर ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा एक और चीज मैं थोड़ा बताना भूल गया, सबसे ज्यादा जरूरी है कि घर में यदि कोई भी व्यक्ति जिसको भी इन्फेक्शन है, जिसको लग रहा है कि उसको डेंगू हो गया है, बहुत जरूरी है कि उस व्यक्ति को मच्छरदानी के अंदर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो व्यक्ति है जिसको भी डेंगू हुआ है तो उससे अगर मच्छर काटेंगे तो वो कहीं ना कहीं मच्छर काट के दूसरों को फैलाएगा। तो जरूरी है कि उस व्यक्ति को तो कम, इसलिए हॉस्पिटल में जब भी कभी आउटब्रेक होता है हॉस्पिटल में डेंगू वार्ड सेपरेट बनाते हैं जिसमें सभी मरीजों को मच्छरदानी में लिटाया जाता है। तो इसलिए उनका, उनको एक तरफ इस तरह से आइसोलेट करना इन द सेंस कि उनको मच्छरदानी में रखें ताकि वो दूसरों के लिए सोर्स ना बने, दूसरों को मच्छर, मच्छरों के
0: मच्छर अगर उन्हें काटेगा तो किसी और को फैला सकता है,
2: सबको फैलाएगा। जी
0: जी, अभी हमारे जो श्रोता इससे पहले हमारे साथ जुड़े थे वो जानना चाह रहे थे कि बच्चों को ज्यादा काटता है कि बड़ों को कुछ ऐसा, वो आपने बताया ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर है डॉक्टर साहब कि कोई कोई लोग ज्यादा प्रोन होते हैं, उसकी जो परेशानी होती है उसको, डेंगू का जो एक स्टेज होती है शायद वो उनको ज्यादा इफेक्ट करता है, तो उनमें से कुछ लोग होते हैं जो ओल्ड एज के हैं या जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है।
2: ये आपके पास सही, जो स्पेशली जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी, जिनकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम होती है, बुजुर्ग लोग हैं, तो जाहिर सी बात है उन लोगों में तो ये सही बात है कि उनमें थोड़ा सा ये सब चीजें, उनका किसी यही नहीं, कोई भी उनको बीमारी होगी तो उसका विकराल रूप उनके अंदर ज्यादा परिलक्षित होगा। तो ये तो थोड़ा सही है कि इस तरह के लोगों में थोड़ा सावधानी उनको ज्यादा बरतनी होती है। जी।
0: अच्छा, एक डॉक्टर साहब ये हमारे एक पास प्रश्न आया है, रंजन लाल जी लिख रहे हैं, फार्म हाउस में रहते हैं और उन्होंने लिखा है कि मैं दिल्ली के पास में एक फार्म हाउस में रहता हूँ, बारिश में बहुत बढ़ जाते हैं मच्छर यहाँ पर, तो मैं क्या करूँ? कुछ तो आपने बताया है लेकिन कुछ शॉर्ट में बताना चाहें तो समय बहुत कम है। तो
2: देखिए रजनीला जी, यही मैं शुरू से इस बात को बता रहा हूं कि मच्छर जो है बरसात और बरसात के मौसम, बाद का मौसम, ये दोनों मौसम ऐसे हैं जिस समय, क्योंकि टेम्परेचर उनको अच्छा खासा मिलेगा और ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी मिलेगी उसमें तो पैदा हो गई होगा। तो मच्छर जहां बरसात, ये तो मच्छर ही मौसम बरसात का ही प्राणी है, बरसात या बरसात के बाद का प्राणी है, तो इसलिए तो जहां बरसात हो गई तो, अगर आप फार्म हाउस आप बता रहे, फार्म हाउस में आप रहते हैं तो फार्म हाउस में तो आसपास कहीं भी अगर पानी इकट्ठा होगा तो जाहिर सी बात है फिर तो ये होगा।
0: तो बहुत सफाई रखनी है आपको और बारिश आने से पहले ही आप पूरा ऐसा इंतजाम कर लें कि बारिश का पानी जमा ना हो कहीं पे। डॉक्टर साहब, हम जब बात कर रहे थे तो हम आपने अपनी बात में भी कहा कि जनता का सहयोग बहुत जरूरी है इस मिशन में कि हम डेंगू मुक्त हों, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? हमारे बहुत सारे श्रोता आज सुन रहे हैं, आपसे प्रश्न भी कर रहे हैं, क्या सहयोग की उम्मीद करते हैं, क्या भागीदारी की उम्मीद करते हैं आप?
2: देखिए, एक सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम हर चीज के लिए, हम किसी भी चीज के लिए सरकार की तरफ निगाह मारते हैं, सरकार की तरफ देखते हैं, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, मगर कहीं ना कहीं किसी भी समस्या के निपटान के लिए, खासतौर से इस तरह की बीमारियां जो होती हैं उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। जनता का सहयोग आइडेंटिफाई करने में कि क्या समस्या है, क्या उसके कारण है

0: और उसमें वो क्या सहयोग दे सकते हैं? आपको मालूम होगा कि जब भी कभी बरसात के टाइम में, उसके बाद में, खुद जो सिविक एजेंसीज हैं, एमसीडी, एनडीएमसी, ये सब ऑलरेडी कहीं भी आपके यहाँ घर के आसपास कहीं कूलर में या कहीं मच्छर पैदा होते हैं तो आपके आसपास आ जाते हैं, आपको चालान काटना शुरू करते हैं, क्योंकि वही एक लीगल ऑप्शन बचता है अगर किसी घर में अगर मच्छर पैदा होते हैं तो। मगर ये मौका आना ही क्यों चाहिए? ऐसा हो ही क्यों कि कोई चालान काटे आके आपके घर पर? हम क्यों नहीं स्वयं ही जिम्मेदारी लेते हैं? और दूसरा एक और चीज है इसमें, मैं बहुत समय पहले कहीं एक बाहर गया था इस डेंगू सिलसिले में ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वहां पे मैंने बहुत अच्छा प्रयोग देखा। उन्होंने स्कूल के बच्चों को इस्तेमाल किया डेंगू को कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को, इवन दिल्ली में भी ये किया गया था प्रयोग, बच्चों को डेंगू कार्ड उनको दे दिया गया, कार्ड दे दिया गया, उनको अपने घर के आसपास के 50 घर जाके वो चेक करेंगे कहाँ कहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं, और जिस किसी के घर में मच्छर है तो वो जानकारी अस्पताल देंगे, उनको अध्यापकों को आके देंगे, और फिर वहां पे वो जो सिविक एजेंसी वहां आके एंटी मॉस्किटो मेजर्स करती थी। तो इस तरह से बच्चों को, स्कूल के बच्चों को इसमें शामिल करना, या गृहिणी को इस काम इस में शामिल करना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं महिला समिति बना के लोगों के घरों में जा जाकर देखें कहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं, कौन कौन से ब्रीडिंग साइट्स हैं जहां मच्छर पैदा हो रहे हैं। ये सभी का सहयोग इसमें जरूरी है। लोगों को जानकारी, लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है कि वो उनका कर्तव्य है, वो कैसे इस समस्या को खत्म, क्योंकि ये एक बीमारी ऐसी है कि यदि एक बार यदि आउटब्रेक हुआ, कभी भी ये एपिडेमिक फॉर्म में कभी हुआ, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल या प्राकृतिक तरीका ही है जबकि ये खत्म हो सकती है। यानी कि बरसात, या जैसे मई या जून के जून जुलाई में शुरू होती है ये बीमारी, और अगर आउटब्रेक यदि हुआ तो फिर ये नवंबर दिसंबर तक पीक होता है, फिर दिसंबर के बाद जब मौसम बदलता है तभी अपने आप ही खत्म होती है। तो ये एक बार यदि आउटब्रेक हुआ तो ये अपने आप ही कंट्रोल होता है, उसमें फिर ज्यादा कंट्रोल करने का फिर स्कोप ज्यादा रहता नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा किया जाए कि ये आउटब्रेक हुई ना, कभी भी डेंगू फैले ना, ये सभी का इसमें सहयोग बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, आपने
0: जी
1: बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब बोली कि सभी का सहयोग जरूरी है। हम अगर डेंगू मुक्त होना चाहते हैं तो हमारे सारे श्रोताओं का और जितने भी लोग हैं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं उन तक भी ये मैसेज आप पहुंचा सकते हैं कि इस तरह की बात आपने सुनी है आकाशवाणी पर, रेडियो डॉक्टर पर, और ये बहुत जरूरी है। पर एक जिम्मेदारी और है डॉक्टर साहब मेरी, मैंने अभी श्रोताओं को प्रॉमिस किया था कि आप गाना सुनाएंगे तो वो जिम्मेदारी मुझे पूरी जरूर करनी है रेडियो डॉक्टर खत्म होने से पहले। तो आप प्लीज कुछ तो गुनगुना दीजिए, आप इतना अच्छा गाते हैं वही गाना हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता फिर पूरा भी सुनेंगे।
0: बड़ा आपने मुझे बड़े पेशो पेश में डाल दिया
1: नहीं, आपको तो बहुत सारे गाने आते हैं। आप ये मन्ना डे वाला गाना आप बोल रहे थे कि आप मन्ना डे जी वाला सुनाएंगे,
0: अच्छा,
1: तो यही गाना सुने, जीवन से लंबी। जी।

0: सच है जीवन से लंबे हैं जीवन के रास्ते, और इस वादे के साथ कि हम कर फिर होंगे आपके साथ, धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर एस के रसानिया, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली को, कि आप स्टूडियो में आए, आपने इतने सारे प्रश्नों का डॉक्टर साहब जवाब दिया हमारे श्रोताओं का। और आज हमने खासतौर पर प्रश्न, ये जो हमारा समय था राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे आमंत्रित करने के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच सर। और इसी तरह से जुड़ते रहिए रेनबो के साथ, जुड़ते रहिए रेडियो डॉक्टर के साथ, और आप सुनते रहिए ये आपका कार्यक्रम। आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं तो healthairdelhi@gmail.com पर लिख सकते हैं। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नीदरलैंड्स दोस्ती का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने हैग में एक सामुदायिक कार्यक्रम में हैग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है।
1: नीदरलैंड्स के समाज और यहाँ की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता का, यहाँ की सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं

0: यहां की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर का तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी

विधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्नपत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने 14 मई को गिरफ्तार की गई मनीषा वाघमारे के माध्यम से नीट परीक्षा के संभावित उम्मीदवारों को जुटाया और पुणे स्थित अपने आवास पर इन विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं चलाई। इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली का उपयोग किया है। नोटिस में सीबीएसई ने कहा है कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेजपिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार भारत को नशा मुक्त देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्षों में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गोह सजेफेई को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपकी वाणी आकाशवाणी। नमस्कार, आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप। आइए सुनते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम और मैं हूं आपका आरजे चेतन। स्वास्थ्य विभाग का पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा अपने मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्रों और महिला स्वास्थ्य केंद्रों की श्रृंखला के जरिए जन्म से 5 साल तक के शिशुओं और 64 साल से कम उम्र की महिलाओं को स्वास्थ्य संवर्धन और रोग रोकथाम सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य सेवा में शिशु स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और गर्भाशय ग्रीवा की जांच शामिल है। शिशुओं के समग्र जैसे शारीरिक, संज्ञात्मक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्रों में एकीकृत शिशु स्वास्थ्य और विकास कार्यक्रम लागू किया गया है। पालन पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्रों के भाग लेने वाले सभी शिशुओं के माता पिता को स्वस्थ शिशुओं और उनके बेहतर लालन पालन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से उन्हें अवेयरनेस देना। सूचनात्मक पुस्तकाओं, ऑडियो विजुअल संसाधनों, वेबसाइट, रिकॉर्ड की गई हॉटलाइन, पालन पोषण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत परामर्श के रूप में प्रसवपूर्व अवधि के दौरान और फ्री स्कूल वर्षा के दौरान शिशुओं के विकास, शिशु देखभाल और पालन पोषण पर माता पिता को प्रभावित

मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जरूरतमंद माता पिता को सहायक सेवाएं प्रदान की जाती है। इनमें स्तनपान करने वाले माँ के लिए स्तनपान कोचिंग और सहायक समूह, प्रसवकालीन मानसिक स्वास्थ्य समस्या या विशिष्ट मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं वाले माता पिता के लिए मदद कार्यक्रम, नवजात और शिशुओं को टीबी, हेपेटाइटिस बी, पोलियोमाइलाइटिस, डिफ्थीरिया, टेटनस, खांसी, न्यूमोकोकल संक्रमण, चिकन पॉक्स, मम्स, रुबेला और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाने के लिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा आयोजित नियमित समीक्षाओं की श्रृंखला शामिल है, जो स्वास्थ्य और विकासात्मक संबंधी समस्याओं वाले शिशुओं की समय पर पहचान और रेफरल प्राप्त करने के लिए तैयार की गई है। इसमें नवजात के लिए पहला स्वास्थ्य परामर्श, शिशु के विकास मानकों की अवधिक निगरानी, सुनवाई और विशिष्ट आयु में प्री स्कूल दृष्टि स्क्रीनिंग शामिल है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्र पूरी गर्भावस्था और प्रसव प्रक्रिया की निगरानी के लिए सार्वजनिक अस्पतालों के प्रसूति विभाग के सहयोग से एक व्यापक प्रसव पूर्वक साझा देखभाल कार्यक्रम संचालित करता है। प्रसव के बाद सभी महिलाओं को प्रसव बाद जांच और परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक पर सलाह दी जाती है। केंद्र प्रसव बाद माताओं को सहायता समूह और व्यक्तिगत परामर्श में अनुभव साझा करता है। इसके माध्यम से जीवन में बदलावों को अनुकूलित करने में भी मदद करता है। बच्चा जनने की उम्र वाली महिलाओं को उचित गर्भरोधक तरीकों का परामर्श और पर्चा प्रदान किया जाता है। परामर्श उन ग्राहकों को भी दिया जाता है जिनको बांझपन की समस्या होती है और विशेषज्ञों के पास रेफरल की उचित रूप में प्रबंध किया जाता है। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्र 25 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को गर्भाशय ग्रीवा जांच परीक्षण प्रदान करता है। महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और जीवन के विभिन्न चरणों में उनके स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना लक्ष्य है। महिला स्वास्थ्य केंद्र 64 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण कार्यक्रम प्रदान करते हैं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। स्वास्थ्य शिक्षा, परामर्श, शारीरिक परीक्षण और उपयुक्त जांच परीक्षण प्रदान किया जाता है। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्र में सत्र के आधार पर महिला स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान की जाती है। कार्यशालाओं और सहायक समूह के रूप में शैक्षिक कार्यक्रम नियमित रूप से मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ WHCS में विभिन्न सेवा सत्रों में आयोजित किया जाते हैं। शिशुओं और महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किया जाते हैं और जीवन के विभिन्न चरणों में उनके स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी अपने कम्युनिटी हेल्प के बारे में। तो ये कार्यक्रम फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत, नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है लेट्स डिटॉक्स और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। दोस्तों, ये वो समय होता है जब हम बात करते हैं अपने मन की, अपने युवाओं की, अपने भविष्य की। यानी कि ये जो प्रोग्राम है 4 बजे से 5 बजे के बीच में जब हम आपसे मिलते हैं तो सीधी बातें होती हैं कि किस तरह से हम अपने आप को आगे लेकर जाएं, कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमारे रास्ते में बाधा बनकर खड़ी होती हैं और हम कैसे उनसे पार पाते हैं। तो अगर ऐसी ही कुछ चीज़ों की बात करें तो आज के इस खास कार्यक्रम लेट्स डिटॉक्स में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आदत की जो धीरे धीरे इंसान की खुशी, आत्मविश्वास और मानसिक शांति को खा जाती है और वो है ओवरथिंकिंग, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की आदत। तो आज ओवरथिंकिंग डिटॉक्स, कभी भविष्य की चिंता, कभी पुरानी बातों का पछतावा, तो कभी छोटी सी बात को मन में बार बार दोहराना। हम में से बहुत से लोग इस अनदेखे बोझ को हर दिन ढो रहे हैं तो अब ज़रूरत है कि उस बोझ को उतार देने की। बहुत ज़्यादा ढोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब ज़्यादा हम ढोते हैं ना किसी चीज़ को तो हम थकने लगते हैं और थकना मना है, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें निरंतर उत्साह की ज़रूरत होती है, लगातार अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत होती है। तो वो जब हम करते हैं और ओवरथिंकिंग करते हैं तो फिर लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो समय कुछ ऐसे कामों में जा सकता है जो हमें आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं, वो हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचने में खर्च करते हैं। तो इसी पर हम आज बातचीत करेंगे और अगर आप भी कुछ अपनी सलाह, अपनी बात देना चाहते हैं इस विषय से जुड़ी हुई बात पर, तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी बात और हम उन्हीं SMS आपके जो मैसेजेस हम तक पहुँचते हैं उनको शामिल करेंगे जो हमारी इस बातचीत में कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे, कुछ अपनी बातचीत आपकी जो हमारी और एक दूसरे के साथ होती है उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 9868107070। इस नंबर पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम आपका स्वागत करते हैं इस गीत के साथ।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक। प्रोग्राम लेट्स डिटॉक्स में आज हम बात कर रहे हैं ओवरथिंकिंग डिटॉक्स की, यानी कि जरूरत से ज्यादा सोचने की जो आदत है उससे हम कैसे निकले बाहर इसकी। भगवान बुद्ध ने कहा था कि मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। सोचिए, अगर हमारा मन हर समय डर, चिंता और शंकाओं से भरा रहेगा तो जीवन में खुशी कैसे आएगी। आज बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से थोड़े थके से होते हैं। कारण सिर्फ काम का दबाव नहीं है बल्कि लगातार सोचते रहना भी है। कई बार समस्या छोटी होती है लेकिन हमारा जो मन है ना, वो इसे इतना बड़ा बना देता है कि हमारी शांति कहीं खो सी जाती है। और मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है। जब हम अंदर से खुश होते हैं ना और अंदर से शांत होते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं। हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। आप भी सोचिए, थोड़ा सा तो सोच सकते हैं, ज़्यादा सोचने पर मनाही है। तो आप सोचिए, और अगर आप सोचते हैं इसके बारे में कि क्या और कैसे हम इस ओवरथिंकिंग पर लगाम लगा सकते हैं, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, तो आप भी साझा कर सकते हैं अपनी बात और हम कुछ और इससे जुड़ी हुई बातें कुछ और कहते हैं ना कि हम अपनी ज़िंदगी में जब देखते हैं तो लगता है कि जो भी बात हो रही है, अगर हम हमारे साथ वो बात होती है तो हम उसके साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। हमें भी लगता है कि हाँ, ये तो हमारी ज़िंदगी में भी होता है। और ओवरथिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत से लोगों के साथ होता है कि काम आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन थोड़ी सी भी कहीं अगर चूक होती है तो जितना अच्छा काम किया है उस तरफ से ध्यान हटकर वो जो थोड़ी सी गलती होती है ना उस पर ध्यान चला जाता है। तो ये चीज़ कई बार हमारी मानसिक शांति के लिए बहुत घातक होती है और अगर ये आदत में शामिल हो जाए तब तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी से निकलने का हमारा प्रयास है।

दोस्तों, फिल्म बॉम्बे टू गोवा से ये गाना सुना आपने किशोर दा की आवाज़ में। किशोर कुमार ने क्या कमाल का गाना ये गाया। और जब हम बात करते हैं कुछ गीतों की, चाहे वो सैड गीत हों या फिर ऐसे खुशी भरे, तो उसमें किशोर दा की आवाज़ और उनका अंदाज सुनते ही बनता है, देखते ही बनता है। और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि जब आप अपने कार्य के प्रति एक अलग नज़रिया रखते हैं और ओवर थिंकिंग से बचते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं। वापस आते हैं अपने विषय पर। हमने आज सोचा है कि क्यों ना आज बात करें हम ओवर थिंकिंग डिटॉक्स की। तो ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए, एक दृश्य कल्पना कीजिए। रात काफ़ी हो चुकी है, पूरा घर सो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति छत को देखता हुआ जाग रहा है। दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही हैं। अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, क्या मैंने सही फैसला लिया। शरीर थक चुका है लेकिन मन शांत नहीं हो रहा। और ऐसे ही क्षणों के लिए भगवान बुद्ध का एक और संदेश याद आता है कि अतीत में मत उलझो, भविष्य की चिंता मत करो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। क्योंकि अधिकतर जो चिंताएं हैं या तो बीते हुए समय से जुड़ी होती हैं या फिर आने वाले कल से। तो जो हो रहा है उसको आज और अभी जो हो रहा है हम उसको अच्छा करते जाएं, तो फिर हमें ना तो बीते हुए कल की चिंता करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आने वाले कल के लिए हमें

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म यस बॉस से। और देखिए इस गीत की खूबसूरती कि इन्होंने सोचा नहीं था और इनकी जिंदगी में इतना कुछ अच्छा हुआ। तो सोचना तो ठीक है, लेकिन ज्यादा सोचना वो थोड़ा मुश्किलें पैदा करता है। एक बार एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा कि गुरुदेव, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है, मैं क्या करूं? तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि जब तुम चलते हो तो केवल चलो, जब खाते हो तो केवल खाओ, जब विश्राम करो तो केवल विश्राम करो। इसका अर्थ था कि हर पल में पूरी तरह उपस्थित रहना। लेकिन आज हमारा मन एक समय में कई जगहों पर भटकता रहता है। हम परिवार के साथ बैठते हैं लेकिन सोच ऑफिस में चल रही होती है। हम छुट्टी पर जाते हैं लेकिन चिंता कल की बनी रहती है, और यही भटकाव ओवरथिंकिंग को जन्म देता है। तो जब हमें मालूम है कि समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है, तो फिर उसके समाधान की तरफ तो हमें जाना होगा, किसी तरह से अपने दिल को समझाना होगा और इस ओवरथिंकिंग को अपने से दूर भगाना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, और कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, बस प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रयास करने से हम जिंदगी में बहुत सी चीज़ें हासिल कर लेते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: दिल के तराने, गाने नए।

0: पुरानी नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम है लेट्स डिटॉक्स और आज हम बात कर रहे हैं ओवरथिंकिंग डिटॉक्स की। मैं हूं आपके साथ राजेश। और साथियों, जब हम बात करते हैं ओवरथिंकिंग की, तो ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये वर्तमान की खुशियां छीन लेती है। एक बच्चा बारिश में भीग कर खुश हो सकता है क्योंकि उसका मन सिर्फ उसी पल में होता है, लेकिन बड़े लोग अक्सर खुशी के क्षणों में भी चिंताओं की एक लिस्ट बनाए रखते हैं। कहा जाता है कि शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। यानी अगर मन शांत नहीं है तो दुनिया की कोई भी सुविधा हमें सच्ची खुशी नहीं दे सकती। तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। दिन में कुछ मिनट अपने लिए निकालें, मोबाइल से दूरी बनाएं, सुबह कुछ देर शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए, अपने मन में चल रही हर बात को सच मानना बंद कीजिए। कई बार हमारा डर वास्तविकता नहीं केवल कल्पना होता है। कहा भी गया है कि हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। और जो इंसान अपने मन को संभालना सीख लेता है वो जीवन की आधी परेशानियों से मुक्त हो जाता है।

बिल्कुल, हम भी तो ऐसे हैं, हमेशा आपके साये की तरह रहते हैं 24 घंटे एफएम रेनबो आपके साथ अपने अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए। और जब बात यहाँ पर सोचने की आती है ना, तो अब मुझे सोचना अपना रोकना होगा, क्योंकि अगला प्रोग्राम लेकर थोड़ी देर में आप तक पहुंचेंगे मनीष आजाद, और प्रोग्राम का नाम है सिटी लाइट्स, जिसमें आप शहर की तमाम हलचलों तमाम गतिविधियों को उनके साथ मिलकर जानेंगे। और 6:05 पर होगा प्रोग्राम जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स, जिसे लेकर आप तक पहुंचेंगे निखिल वर्मा, जिसमें आप अपने मैसेजेस भेजते हैं और आपके मैसेजेस को वो आप तक आपके अपनों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे निखिल। और 7:05 पर हमारा वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम आप सुन पाएंगे, सैटरडे सिजलर्स पूजा आनंद, इस प्रोग्राम को लेकर आप तक पहुंचेंगे। तो आज के इस प्रोग्राम लेट्स डिटॉक्स में चलते चलते एक छोटा सा संकल्प ले सकते हैं हम, और वो ये कि हर बात को इतना महत्व नहीं देंगे कि वो हमारी शांति छीन ले। थोड़ा कम सोचेंगे, थोड़ा ज़्यादा महसूस करेंगे, थोड़ा कम डरेंगे, थोड़ा ज़्यादा जिएंगे, क्योंकि जीवन तब सबसे सुंदर लगता है जब मन वर्तमान में हो और भीतर शांति हो। तो इसी के साथ मैं राजेश आपसे लूंगा अनुमति, चलते चलते एक और गीत आप सभी के लिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपनी 5 देशों की यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकटों जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलेम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा

को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियर और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार

गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे के वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक की पूरी पहुंच थी। इस मामले में 5 आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और विस्तृत पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत और रिमांड पर लिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली का उपयोग किया है। CBSE ने कहा कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले 14 वर्षों में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से पेचिंग की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मिलेंगे। पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। ये घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इज़ुद्दीन और गोइस केफे को हराया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है, जबकि कोलकाता यह मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आपकी वाणी आकाशवाणी पर लेकर हाजिर आपका प्रोग्राम सिटी लाइट, आपके साथ आपका दोस्त मनीष आजाद। सांझ होते ही शहर अपना सा लगने लगता है, क्योंकि सारे दिन की जो थकान है आपको याद दिलाती है घर की, आपको याद दिलाती है अपनों की, वापस घर लौटने की। तो शुरुआत करते हैं आज का आपका ये वाला कार्यक्रम सिटी लाइट। जब आप सोचते हैं कि आज सारा दिन क्या किया, यानी कि सारा दिन की जो थकान है उसको दूर करने के लिए, एनर्जी से भरने के लिए आप सभी लोगों के बीच में लेकर हाजिर मनीष आजाद रेडियो वाला। तो आज का प्रोग्राम आपके लिए। ऐसे ही करेंगे।

ओए होए, ये शहर की बत्तियां जो है ना, ये साहब ये बहुत कमाल करती है। मैंने कहा ना, जब आपके लिए ये कहती है कि अब समय हो गया है आपको आपके घर जाने का, वैसे तो कहने के लिए आपका वीकेंड था, लेकिन बहुत जरूरी कुछ खासे काम होते हैं जब आप अपने घर से निकलकर जाते ही हैं, और फिर आपको शाम को लगता है कि साहब ये वापस जाना है ना, वापस भी जाना है, लेकिन आपको अपना ख्याल भी रखना है। क्योंकि साथ साथ मैं आपको बता दें कि जिस तरह से सरकार लगातार कोशिश करती रहती है आपको आपकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने की, समय समय पर कोशिश भी करती रहती है आपको सब कुछ बताने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसकी चपेट में आप आ जाते हैं, और फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर के पास लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। क्योंकि आज नेशनल डेंगू डे है ना, जिसको हम डेंगू भी कहते हैं। बात एक ही है, डॉक्टर साहब ने कहा था हिंदी में कहो चाहे अंग्रेजी में कहो, बात एक ही है, लेकिन साहब बात यह है कि हमें इससे सावधानी बरतनी चाहिए। अगर घर के पास में कोई भी पानी कहीं जरा सा भी इकट्ठा है तो बस उसको इकट्ठा मत होने दीजिए, ताकि ये घर ना कर पाए। कोई भी ऐसा मच्छर काटने से आपको इस बीमारी से कुछ हो ना जाए, फिर वो लाल लाल चकते चकते से हो जाते हैं, फिर आपको लगता है मच्छर ने काट तो लिया, लेकिन हाँ इसका जो ट्रीटमेंट है उसका इलाज है। घर पे ना करके भाई साहब डॉक्टर को दिखा लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, घर के डॉक्टर बनना नहीं, ठीक है। स्वास्थ्य का ध्यान अपने आप आपको ही रखना है। 5:15 बजे बहुत काम की बात, इसीलिए तो चलाएगा ना। सिटी लाइट आपके साथ, आपकी वाणी आकाशवाणी पर, मनीष आजाद रेडियो वाला।

नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। तो श्रोताओं, इस अंक में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में रेडियो की स्थापना के बारे में। 1947 के अशांत दौर में सूचना के सही प्रसार और सुरक्षा के मद्देनजर 1 दिसंबर 1947 को जम्मू में रेडियो कश्मीर की स्थापना की गई। इस स्टेशन की शुरुआत महाराजा हरि सिंह द्वारा की गई थी, जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूर्ण समर्थन और सक्रिय सहयोग प्राप्त था। युद्ध जैसी स्थितियों के बीच इस स्टेशन का मुख्य उद्देश्य जनता का मार्गदर्शन करना और शरणार्थियों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना था। 1 जुलाई 1948 को श्रीनगर में भी रेडियो स्टेशन की नींव रखी गई। 1954 में इन दोनों स्टेशनों का विधिवत विलय ऑल इंडिया रेडियो में कर दिया गया। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

सिटी लाइट सुन रहे हैं आप, आकाशवाणी आपकी वाणी जो है आप सबके साथ। मैंने कहा ना, जहां कोई नहीं वहां पर आकाशवाणी आपको जरूर मिलेगा, लेकिन अब साथ में ये बहुत जरूरी हो जाता है। मैंने कहा ना कि जब आप घर से निकलते हैं तो फिर आप ये सोचते हैं कि भाई सुबह तो साहब मैं बिल्कुल ठीक ठाक से निकला था, लेकिन अब ये घर पहुंचते पहुंचते ये ट्रैफिक इतना ज्यादा क्यों हो चुका है, ऐसा क्यों हो चुका है। ऐसे में आपको थोड़ा सा संयम बरतने के लिए सब कहते हैं, लेकिन आप बरतते नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि भाई मैं थोड़ा सा जल्दी अगर चलूंगा तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जल्दबाजी जो होती है ना साहब, कभी कभी वो बहुत बड़ा कारण बन जाता है।

लगती है जब आप रोड रेज के शिकार हो जाते हैं। होता क्या है कि जब आपकी गाड़ी दूसरी गाड़ी, समझ गए ना, ये जब आपस में कुछ हो जाता है तो इसमें आपस में होने के बाद आप नीचे उतरते हैं, साहब नीचे वाले उतरते हैं, फिर एक दूसरे को हिंदी की कविताएं सुनाई जाती हैं, और इस समय पे जितना ट्रैफिक जो होता है साहब वो जाम लग जाता है। थोड़ा सा फर्क इतना है कि हम अपने घर से या अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले जो है वो सही समय पर नहीं निकलते, यही हो जाता। आप देखिए ना साहब, इस समय अगर आप इस समय आर के आश्रम मार्ग से आ रहे हैं, वो भी ये पहाड़गंज की तरफ से, ये देखिए साहब, तो ये जो लाल लाल जो लाइन है ना, ये इसीलिए कि वहां पर एक तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम है, लेकिन कुछ टू व्हीलर वाले भाई साहब दूसरी तरफ से आकर ये जो ट्रैफिक का जाम यहाँ लगा रहे हैं, इस वजह से ये लाल लाल लाइन यहाँ पर आपको नजर आ रही है, इस वजह से आपको जाम का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। अगर आप इस समय हौज खास से मालवीय नगर की तरफ बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स कुतुब मीनार अगर जाने की सोच रहे हैं उस वाले रास्ते पर, ये भाई साहब थोड़ी सी लंबी समझ गए ना, ये लंबी वाली लाल लाल यहाँ पर लाइन है जिसके कारण यहाँ पर जाम का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो जरा होले होले वहां पर चलते रहना, चल रहा है ट्रैफिक, रुका नहीं है, स्पीड जो है वो थोड़ी सी 20 की स्पीड में हो चुकी है। यहां पर महिपालपुर से टूवर्ड्स अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं तो जरा होले होले चलना मेरे भाई साहब, क्योंकि वहां पर भी लाल वाली लाइन है। इसके साथ साथ में जे बात ये आया ना, कुछ लंबा वाला जहां पर आपने यहां पर अपना, अगर आप इस समय रोहिणी में दीपाली चौक की तरफ से सेक्टर 6-7 यानी कि ईस्ट रोहिणी की तरफ बढ़ रहे हैं तो भाई साहब ये लंबा वाला यहां पर लाल लाल लगा पड़ा है, क्योंकि यहां पर ओह ये जो आप अंडरपास देख रहे हैं ना भाई साहब दीपाली चौक के पास में, ये यहां से जो साइड में लोग जाने वाले हैं जो इधर इधर से दोनों के दोनों तरफ से, क्योंकि कुछ लोगों को यहां से लेफ्ट से राइट में जाना है अंडरपास की तरफ से, जिस वजह से लंबा वाला लाइन यहां पर लगा पड़ा है। आगे चलकर अगर आप दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी कि DTU की तरफ से महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे हैं तो रूट थोड़ा सा ठकाठक है, लेकिन जैसे ही बवाना धाम की तरफ आप बढ़ेंगे साहब वहां पर आपको ये लाल लाल रूट देखने को मिलेगा। लो जी सबसे बड़ा इस समय लाल लाल रूट, अगर आप मोहन नगर की तरफ बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स वहां से आप गाजियाबाद रोड की तरफ जा रहे हैं तो ये लंबा वाला आपको जाम लगा पड़ा है। साहिबाबाद की तरफ से ट्रैफिक धड़ाधड़ बढ़ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप भी इस समय ट्रैफिक में कहीं पर ऐसे थोड़े से वैसे लगे बड़े हैं तो फिर आप भी थोड़ा सा ट्रैफिक के साथ साथ इस गीतों का आनंद उठाइए, एक्सीलेटर पर पैर तेज मत दबाइए, धीरे धीरे चलते जाइए। उला उलाला सुनते रहिए सिटी लाइट, आपके साथ आपका दोस्त मनीष आजाद, रेडियो वाला। आप दो भाई या दो बहनें हैं तो आप भी इस तरह से गुनगुना सकते हैं, क्योंकि नेहा कक्कड़ सोनू कक्कड़ दोनों के दोनों ये टोनी कक्कड़ साथ में।

कितने अच्छे परिवार के लोग हैं, एक साथ सारे के सारे लगे पड़े हैं। लेकिन आप भी सारे के सारे ये सोच सकते हैं कि भाई साहब क्या कुछ ऐसा है जिस वजह से आप सारे के सारे परेशानी में आ सकते हैं या सारे के सारे लोगों को फायदा हो सकता है। अगर आप घर के अंदर चार लोग हैं और चारों के चारों बड़े हैं यानी कि अडल्ट हैं और चारों के पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं और आपको अगर कहीं जाना है तो आप अपनी अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात है, आपको लगता है हाँ भी हम अपने अपनी गाड़ी लेके जाते हैं। भाई साहब, बहन जी, भाभी जी, मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब कितना आप नुकसान पर्यावरण का तो कर रहे हैं, साथ साथ में अपने शरीर को भी थोड़ा सा थका रहे। क्यों? गाड़ी का एक्सीलेटर, क्लच, ये दबाते रहिए। अब जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान शुरू कर दिया है तो कई सारे लोग, आप देखेंगे मंत्रियां भी जितने हैं साहब, वो कोई मेट्रो में जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, ई रिक्शा पे जा रहा है। जबकि अगर आप थोड़ा सा इस बात पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे आकाशवाणी इस बात को आज से नहीं बहुत पहले से लगातार कहता आया है कि आप कार पूल का इस्तेमाल कीजिए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, आप उन साधनों का इस्तेमाल कीजिए जिससे आपका पेट्रोल, आपके साथ साथ आपका वो जो डीजल है वो भी बचेगा, साथ साथ में आपकी मेहनत भी थोड़ी सी कम लगेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप जाते हैं, मेट्रो में अगर आप सफर करते हैं तो आप देखेंगे कई सारे, बहुत सारे ऐसे जो काम हैं जो आप चलते चलते मोबाइल पर कर लेते हैं, किसी से बात कर ली, किसी को रिपोर्ट भेज दी। कारपूल अगर आप करते हैं तो एक बंदा गाड़ी चलाता रहता है, बाकी तीन लोग अपने काम कर सकते हैं, एक दिन दूसरा, एक दिन दूसरा, बचत भी होगी, आप थकेंगे भी नहीं, एनर्जेटिक ऑफिस में जाएंगे, बॉस आपके ऊपर कितना भी आपको कुछ कहते रह जाए लेकिन आप कहेंगे नहीं सर जी आप बस छिल मारिए। लेकिन हम ये सब क्यों करें भाई, हमारे घर में चार गाड़ी है तो हम चार गाड़ी ही लेकर जाएंगे, आप अपने लिए ही आफत बुलाएंगे, ये आप सोच के रखिए। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा इन इन बातों पर गौर करना शुरू कर देंगे तो सच में जो आपका जीवन है ना, बहुत हद तक सुधर भी जाएगा, अच्छा भी लगेगा। फिर आप कहेंगे भाई लगातार हमें जो बातें ना आकाशवाणी पर सुनते रहते हैं, आकाशवाणी लगातार आपके हित में और आपके लिए ही कार्य करता रहता है, जिस तरह से 24 घंटे आपके लिए लगातार शोज करता रहता है। सुनते रहिए सैटेलाइट, मेरा नाम है मनीष आजाद, रेडियो वाला। अब यहां पर गाना सुनेंगे, उसके बाद ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि अभी बच्चों की छुट्टियां हो गई है, सब घर में यही चर्चा है, जाए कहां, हम बताएंगे आपको बच्चों के लिए आपको क्या करना चाहिए, कहाँ भेजना चाहिए। नानी का घर तो नानी का है ही, दादी का घर तो दादी का है ही, लेकिन बच्चों को उसके साथ क्या करना है ये हम आपको बताएंगे गाना सुन के, उसके बाद में।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: केले का छिलका सड़क पे, ना भाई ना। चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर, ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
3: मंगल भवन मंगल हारी,
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

चलिए जी, वेलकम वाले बैक को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अब आपको फिर थोड़ी सी और काम की बात, काम की जानकारी आपको बता दें कि शहर के अंदर क्या क्या कुछ हो रहा है। सिटी लाइट प्रोग्राम चल रहा है साहब, मैंने आपसे कहा ना कि ये आपके घर जाने का समय होता है। कहीं भी हम चले जाएं, मतलब अगर हम वैसे तो दो चार दिनों के लिए पहाड़ पर जाते हैं कि भाई थोड़ी सी ठंडी वाली जगह पर चलते हैं, बच्चों को लगता है कि हाँ मम्मी डैडी ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब कुछ थोड़ा सब घर के अंदर ये चर्चा है, सभी घरों मतलब कहाँ जाया जाए कुछ दिनों के बाद। लेकिन मैं आपको बताऊं, कहीं भी आप चले जाएं कुछ दिनों के बाद लगता है घर की याद आ रही, जल्दी चलो ना घर पे। क्यों? वो जो घर के अंदर वो जो खुलापन है, आप घर के अंदर जाके ये सामान उधर फेंको, ये सामान उधर, वो वहां तो नहीं कर सकते ना साहब आप, है ना। इसीलिए कहीं भी चले जाए वापस तो आपको यहीं आना पड़ेगा। जब वापस आप सुबह कहीं जाएंगे तो फिर शाम को तो वापस घर आना ही पड़ेगा। जब घर वापस आना पड़ेगा तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि साहब अब क्या किया जाए। क्या किया जाए तो फिर क्या यही किया जाए कि अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चों, तो बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे तो सरकारी ऐसी वर्कशॉप भी हैं जो की जा रही हैं, आप उनमें भी बच्चों को डाल सकते हैं। जैसे संगीत कला परिषद ने भी इस समय अपने उन्होंने म्यूजिक्स के अंदर, डांस के अंदर, थिएटर के अंदर उन्होंने वर्कशॉप्स निकाल रखी हैं, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर पैसे नहीं देने होते, जो उनके जो नॉमिनल कुछ होते हैं वो है। कुछ प्राइवेट वाले होते हैं वो अलग अलग जगह पर आप देखेंगे, वो भी बच्चों को कराते हैं, आपके घर के पास के कुछ होते हैं, कई स्कूल्स के अंदर होते हैं, कई कुछ कुछ ऐसी संस्थाएँ कराती हैं। ऐसे ही NSG भी एक संस्था है, NSG भी संस्था है, वो भी अपने बच्चों के लिए जो वहाँ पर जो संस्कार रंग टोली है, जो थिएटर इन एजुकेशन जिसको कहा जाता है, वो भी अपने आपके बच्चों के लिए वर्कशॉप्स लगातार लगातार हर साल कराती रहती है। 8 साल से लेकर 16 साल के अंतर्गत अगर आपके बच्चे आते हैं तो आप इसमें उन बच्चों को भेज सकते हैं। इन बच्चों को आप वहां पर भेजेंगे तो बच्चा ये नहीं कि वो एक्टिंग के अंदर बिल्कुल मास्टर बन जाएगा साहब, ये उसके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके बच्चों के स्किल्स, उनको फोकस, क्रिएटिविटी और सामाजिक स्तर पर जितने भी इंट्रैक्शंस होते हैं वो सब ये सिखाते हैं। दिल्ली के 20 स्कूल्स के अंदर ये वाली वर्कशॉप यहाँ पर हर साल होती है। अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है तो आप www.nsd.gov.in पर जाकर आप जानकारी हासिल कर लीजिए। 22 मई से 21 जून ये हर साल लगती है। बच्चा बिजी रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि होमवर्क तो मिला होगा, होमवर्क तो है ही, लेकिन बच्चे तो होमवर्क तो 3-4 दिन के अंदर ही निपटा देते हैं। कुछ बच्चे शुरू में करके छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे जब स्कूल खुलने वाले होते हैं उससे पहले करना शुरू करते हैं, ज़्यादातर वैसे तभी करते हैं ना। लेकिन फिलहाल अगर आप नानी के घर भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, 2-3 दिन का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो अगर आप इस तरह की वर्कशॉप्स के अंदर बच्चों को डालेंगे तो उनका मानसिक, जो कहते हैं ना कि जो दिमाग है भाई साहब, वो मानसिक तौर पर और भी ज़्यादा मजबूत बनते हैं। इसलिए कहते हैं कि साहब ये काम आप करवाएंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर आप सोचते ही रह जाएंगे कि भाई साहब क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, क्या ना करें।

क्योंकि सोचने सोचने में सारा जो समय है ना धीरे धीरे करके यही निकल जाता है। शो चल रहा है सांझ वाला शो सिटी लाइट, मैं आपके साथ आपका दोस्त मनीष आजाद।

ये इन्होंने भाई, ये इन्होंने पापा पाँ पापा पाँ वाला ये जो बजाया, मुझे लगता है कि ये बेनी दयाल भाई साहब ने सैक्सोफोन जिस तरह से बजाया, मैं दो बारे गिर चुका हूँ इस पर। मतलब ऐसे वो कैसे बजाया, चलो खैर फिर भी। लेकिन ये जो कहते हैं कि भाई साहब जो दिल है वो बदतमीज़ है या नहीं है, लेकिन ये दिल आपके अंदर से आवाज़ें बहुत देता है। ये कहता है कि साहब लगातार लगातार काम वो नहीं करना चाहिए, लेकिन बावजूद उसके आप उस काम के अंदर ऐसे उलझ जाते हैं, आपको लगता है कि ना ऐसा होगा। जबकि सरकार, जबकि जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जितने भी समाचार पत्र हैं, ये शब्द आपको लगातार बोलते हैं कि साहब ये शब्द है ही नहीं, कानून की भाषा के अंदर इस शब्द का कोई भी लेना

देना है ही नहीं, लिखा ही नहीं है। जिस शब्द की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है? डिजिटल अरेस्ट। इस शब्द के बारे में कहीं नहीं लिखा। आप देखेंगे आपके घर में अगर अखबार आता होगा तो आप उसके अंदर देखेंगे, बोलती है पुलिस कि साहब ये शब्द नहीं है। लेकिन हम जब देखते हैं कि हम इस तरह के शब्दों पर ना विश्वास करके फिर भी हम इसमें उलझ जाते हैं और हम इसका शिकार बन जाते हैं। जिस तरह से आप अपने घर से सुबह रोजाना मम्मी डैडी पापा अंकल आंटी चाचा चाची मौसा मौसी दादी दादा आपकी बुआ फूफा जो भी आप जाते हैं ना कहीं काम करने के लिए, दुकान खोलने जा रहा है कोई, काम करने जा रहा है कोई, पढ़ने जा रहा है कोई, पढ़ाने जा रहा है, ऐसे ही ये लोग साहब रोजाना नए नए पैंतरे ऐसे आजमाते हैं जिससे आपको किसी तरह से ये अपने जाल के अंदर ऐसे फंसा लिया। और उस समय होता क्या है कि हम इनकी गिरफ्त में आ जाते हैं। जबकि अगर आप एक बहुत ही ज्यादा मोटी मोटी बात अगर आप गौर करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ जो कॉलिंग करते हैं ये व्हाट्सएप पर कॉलिंग करते हैं, जिसको हम इंटरनेट कॉलिंग बोलते हैं। क्या नॉर्मल कॉल्स आते हैं? नहीं आते हैं। अगर हम थोड़ा सा ये भी समझ जाएंगे तो बहुत हद तक हम संभल जाएंगे साहब, है ना। लेकिन होता क्या है कि हम ये सोचते हैं नहीं भाई एक बार ऐसा किसी ने फोन उठा के देख लीजिए, वो आपको इस तरह से डरा देते हैं कि आप उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं। फिर वो ये है कि सभी समाचार पत्रों के अंदर आप देखते हैं इतना इतना इतना, आप यकीन मानेंगे ये जो नेटवर्क है साहब 72,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इस समय नेटवर्क हो चुका है। पीछे दिल्ली पुलिस ने एक अभी वर्कशॉप करी थी उसके अंदर बताया कि इस समय 20 कॉल्स अगर आती हैं तो 20 में से 4 व्यक्ति इस तरह के शिकार हो रहे हैं। तो सावधानी साहब इसमें इतनी है कि हमें जागरूक बनना पड़ेगा थोड़ा सा। हम थोड़ा सा जागरूक बन जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, बाकी तो फिर मुझसे ज्यादा समझदार आप हैं। जावेद अली नीति मोहन, ओके, आप थोड़ा सा इस तरह से अगर हम मुस्कुरा के उनकी बातों में आ जाते हैं तो फिर वो गलत बात हो जाती है। हम पे बोलो सुनते रहिए सिडिल लाइट, आपका दोस्त मनीष आजाद रेडियो वाला। मुस्कुराते हैं वो लोग जब आपको फंसा लेते हैं, तेरा यूं मुस्कुराना गलत बात है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

प्रोग्राम चल रहा है साहब सिटी लाइट। सिटी लाइट के अंदर आज रेडियो पर आपको जो जानकारी दे रहा है आपका दोस्त मनीष आजाद रेडियो वाला। कभी कभी हम सोचते हैं कि साहब सभी के सभी जानकारी अगर हमारे पास है तो हम क्या करेंगे। हम सोचते हैं कि आपके बच्चे अगर आपकी तरह नहीं निकले तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुख होगा। ठीक है, यकीनन दुख होता है थोड़ी बात, लेकिन वो दुख कब तक आप मनाएंगे, क्योंकि सभी बच्चे आपकी तरह, मैं तो कहूंगा कि आप यानी कि भाभी जी भैया जी आप दोनों के दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन क्या जिस तरह से हमारे हाथ की सभी उंगलियां एक जैसी नहीं हैं तो क्या घर में परिवार के सभी लोग एक जैसे हैं। क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे भाभी जी किचन के अंदर आज क्या कोई खाएगा, तो क्या कोई खाएगा का मतलब, वो कहने का मतलब यही है कि क्या किसकी क्या पसंद है। इसलिए जब पसंद अलग अलग है, भगवान ने दिमाग भी भाई सब अलग अलग भी दिए हैं, इसलिए किसी को कम आंकना ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए कहते हैं कि जिस तरह से अभी आप देखेंगे कि 10th और 12th के लोगों की कुछ कुछ कंपार्टमेंट्स आई हैं, इनके एग्जाम्स दोबारा से होंगे, एक बार फिर एक बार मौका देने की ज़रूरत है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि मौका दे के देख ले साहब कुछ नहीं, तो शायद वो कुछ और चाहता हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसके साथ बैठा जाए, जो उसकी दिलचस्पी वाली चीज़ें हैं उसमें देखा जाए। कितनी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर 12th के मार्क्स की नहीं साहब, वहाँ पर जो दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं, CUT हो गया, और भी कई सारे ऐसे परीक्षा लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके भरोसे ही वो आगे बढ़ सकता है, तो शायद वो अच्छा सा कर जाए। इसलिए हमें अपने आप से सवाल करने से ज़्यादा अच्छा है एक बार उसके साथ बैठा जाए, कहीं बाहर जाया जाए, बाहर जाके उससे बात की जाए। क्योंकि हम घर के अंदर जो माहौल हम देखते हैं वो लगते हैं भाई नहीं नहीं ये डांटना डूटना नहीं, थोड़ा सा तो समय देके देखिए साहब, है ना। कभी कभी ऐसा होता भी है, ये एक बहुत अच्छी वो मतलब मेरे को भी हिलाई, मतलब बहुत पहले की बात है, बहुत कुछ 4-5 साल पहले की, जब हमारी नानी

हुआ करती थी। उनके साथ बैठा तो पता चला कि एक भारी सवाल अपने आप से उन्होंने करना था, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि भैया जब तुम्हारे मार्क्स आते थे उस दौरान टीचर कैसे होते थे, क्या भैया पढ़ाई ऐसी होती थी? आज सब कुछ बदल चुका है, सच में बदल चुका है। ये बात हमें समझने में कितना बदलाव आया होगा, तो इसलिए बच्चों के साथ भी थोड़ा सा बदलाव जरूरी है ना। कहाँ भाग रहा है देश, कहाँ भाग रहे हैं लोग, सोच कहाँ भाग रही है, पढ़ाई भी तो जा रही है साहब। कितना चले सिटी लाइट।

हो जी एक मेरे साथ भी बहुत अच्छी अच्छी बात अभी अभी हो गई स्टूडियो के अंदर, क्योंकि स्टूडियो के अंदर इस समय जिस तरह सा माहौल है भाजी, मैं तो बिल्कुल नाच रहा हूँ। लेकिन इस समय मैं देखा जी नेहा ककड़ियो ऐसे हंस के उन्होंने बोला जी तेरी और मैं चली थी, मैं भी उतरे उतरे चल रहा, उन्हें पीछे पीछे मैं जा रहा जी। मेरा भी समय हो चुका साहब घर जाने का। लेकिन ये कहकर कि आपको अपने आप को खुश रखने के तरीके खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। कोई आपको लगे कि बाहर आकर आपको समझा जाए, 2 किलो खुशी आपको दे जाए, 1 किलो कोई आपको उसमें कुछ मिला के चला जाए, कोई नहीं करेगा साहब। ये सब आपको खुद अपने आप में करने पड़ेंगे, क्योंकि खुशी का दूसरा जो नाम है साहब FM रेनबो लगातार 24 घंटे आपके लिए कोशिश यही करता रहता है। आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, ठीक रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। निखिल आने वाले लेकर प्रोग्राम MMM माँ से मनीष नहीं है, मैसेज मसाला मिक्स, पूजा आनंद आपके साथ होंगी, वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम होगा, उसके बाद म्यूजिक मस्ती आपके साथ, निखिल आपके साथ दोबारा होंगे, विनीता बेदी आपके साथ में होंगी रेनबो सेलब लेकर, उसके बाद में आप रंगे महफिल का प्रोग्राम अब विंद जी के बाद साथ में सुनेंगे। बाद में तो कोई और होगा नहीं, मैं अब चलेंगे ठीक है। मैं क्या जी, ध्यान रखिएगा अपना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग

और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र

अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार एंड वेरी वेरी वेलकम शो में जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आरजे निखिल वर्मा। शो में लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, और हर शो में हम एक टॉपिक लेकर आते हैं जिस पर हम बात करते हैं, लेकिन आज का टॉपिक क्या होने वाला है कि मैं आपको बताऊंगा और बिना वेट के बताऊंगा। कभी आपने नोटिस किया है, लाइफ कितनी भी मैसी हो, दुनिया कितनी भी कंफ्यूजिंग हो, लेकिन हम सबके पास एक इंसान जरूर होता है जिसको कॉल करते ही लगता है कि बस अब सब समझ जाएगा। वो इंसान जो गूगल से पहले हमें याद आता है, जिसको हेलो बोलते ही समझ आ जाता है उस सामने वाले इंसान को कि भाई प्रॉब्लम सीरियस है या बस इनका यूजुअल ड्रामा चल रहा है, और जो आपके सीक्रेट्स का लॉकर बॉक्स भी है और साथ ही साथ आपके हर इमोशंस का फर्स्ट एड बॉक्स भी। कभी मम्मी, कभी बेस्ट फ्रेंड, कभी आपके भाई या बहन, कभी लाइफ पार्टनर, या फिर कभी एक वो अनएक्सपेक्टेड इंसान जिससे आप कभी उम्मीद भी नहीं करते और वो आपका एक सॉल्यूशन बॉक्स बन जाता है। तो आज मैसेज मसाला मिक्स में हम बात करेंगे माय ह्यूमन हेल्पलाइन, यानी कि माय गो टू पर्सन। आपकी ह्यूमन हेल्पलाइन कौन है? वो इंसान जिसको आप हर सिचुएशन में कॉल करते हो, हर सर्कमस्टेंसेस में उसके पास जाना प्रेफर करते हो, खुशी हो, हार्ट ब्रेक हो, कंफ्यूजन हो, या फिर लाइफ का सिस्टम फुल हैंग हो। तो आज मुझे बताइए, हु इज योर ह्यूमन हेल्पलाइन? 9868107070 9868107070 पे अपने मैसेजेस मुझे भेज दीजिए। मैं हूं आपका अपना म्यूजिकल हमसफर आरजे निखिल वर्मा, आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स, और आप मुझे आज बताएंगे माय ह्यूमन हेल्पलाइन।

ऑफ कोर्स यू फील गुड जब आपका गो टू पर्सन, आपका ह्यूमन हेल्पलाइन आपके लिए हमेशा अवेलेबल हो. और मेरे गो टू पर्सन यानी कि मेरे लिसनर्स, इनके मैसेजेस आ चुके हैं, बहुत सारे मैसेजेस हम तक पहुंच गए हैं. और सबसे पहला मैसेज हमें प्रेमचंद प्रेमी जैतरा धामपुर से आया है. और थोड़ा सा इन्होंने खेद व्यक्त किया कि ये हमारा शो नहीं सुन पा रहे थे, बट थैंक यू प्रेमचंद जी, आप हमेशा शो सुनते हैं, सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर दैट. और अगला मैसेज हमें भेजा है, ये मैसेज हमें आया है कस्बा गुन्नौर यूपी से, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा, और ये भी हमें सुन रहे हैं और इनको भी शो पसंद आ रहा है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. आरिफ रब्बानी साहब लिख रहे हैं हमें जिला हापुड़ से, मेरे पास लिखते हैं कि हाँ जी बिल्कुल, मेरे पास भी एक ऐसा दोस्त है, मेरी किसी भी सिचुएशन में मेरे साथ होता है, आधी रात में भी हाजिर हो जाता है, और उसका नाम है

सलमान अब्बासी। ओके, तो सलमान साहब अगर आप सुन रहे हैं तो देखिए ना, आपके दोस्त आपके कितने शुक्रगुजार हैं और आपके थैंकफुल हैं। और एक मैसेज मुझे और आया है, ये मैसेज मुझे भेजा है साजिद ने दिल्ली से, और ये लिख रहे हैं कि इनके पास भी एक ह्यूमन हेल्पलाइन है और उनका नाम है सैयद शारिक, जो कि नजीबाबाद से हैं, और सारी परेशानी के जो सॉल्यूशन है वो इनके दोस्त सैयद शारिक साहब हैं। सो थैंक यू साजिद फॉर योर मैसेज एज वेल। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सारे मैसेजेस मैं पढ़ूंगा एज ऑलवेज। जोया का मैसेज आया है, हमें मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से लिख रहे हैं, लिखते हैं कि माय ह्यूमन हेल्पलाइन इज माय ओन ब्रेन, माय ब्रेन नोज एवरीथिंग एंड ही एडवाइसेस मी व्हाट टू डू एंड व्हेन विदाउट डिस्क्लोजिंग माय पर्सनल सर्कमस्टांसेस टू एनीवन एल्स। ऑल द एडवाइसेस ही हैज गिवन मी हैज बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल सो फार, सो गुड, दैट्स सो गुड। बट इनडायरेक्टली आपकी ह्यूमन हेल्पलाइन आप खुद ही हैं, बिकॉज यू नो योर दैट ब्रेन इज इनसाइड योर बॉडी। सो थैंक यू सो मच, एंड दिस इज अनदर प्रॉस्पेक्ट टू सी लाइफ, है ना। तो ये भी बहुत अच्छा जरिया है अपने आप को पहचानने का और यू नो एक सेल्फ रियलाइजेशन करने का। ये मैसेज भेजा है हमें छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दतरेगी से हीरामणि वर्मा जी ने, लिख रहे हैं कि मेरे सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मेरे बड़े भैया जी हैं। जब भी मैं परेशान होता हूँ, कुछ समझ नहीं आता, तो उस स्थिति में मैं अपने बड़े भैया के पास जाता हूँ और अपनी बात कहता हूँ। यदि वो ड्यूटी पर होते हैं या कहीं बाहर होते हैं तो मैं उनको कॉल कर लेता हूँ, एंड आई एम श्योर हीरामणि जी फिर आपकी सारी सॉल्यूशंस छू मंतर हो जाती होंगी। एक मैसेज और ले लेता हूँ, और ये मैसेज भेजा है हमें मिनी ने द्वारका से, लिखते हैं कि मेरे ह्यूमन हेल्पलाइन है मेरे वो भाई और बहन जो मैंने खुद चुने हैं, दे आर माई गॉड गिफ्टेड सिबलिंग्स। इन दोनों के साथ मैं बिना डरे अपने मन की हर बात कह सकती हूँ। इनसे बात करने के लिए मुझे घड़ी नहीं देखनी पड़ती, दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी अनकंडीशनली, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव दैम इन माई लाइफ, एंड वी आर ऑल्सो ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव ऑल द लिसनर जो हमें मैसेज भेज रहे हैं, एंड दैट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज मिनी। और मतलब सारे मैसेजेस पढ़ रहे हैं, और मैं खुद ऑब्वियसली हर शो में जैसे कि मैं टूवर्ड्स दी एंड बताता हूँ कि मेरा ह्यूमन हेल्पलाइन ये कोई भी टॉपिक होता है ना, तो आई विल ऑल्सो शेयर दैट, वो मैं सीक्रेट नहीं रखूंगा। ऑल राइट, सो बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं, सारे मैसेजेस जैसा कि मैंने बोला है पढ़ूंगा। गुन्नौर से आदिर कमर तस्दीक अली का मैसेज भी हम तक पहुँच चुका है, ये मैसेज भेजा है मोहम्मद इम्तियाज ने। फिर हमारे पास मैसेज आया है सरफराज आलम साहब का, और गुजरात से भी शहजाद का मैसेज आया है, पंकज कामरवती से, राजकुमार सनातनी अंकोला महाराष्ट्र से, और भी बहुत सारे मैसेज आए हैं, लेकिन ये सारे मैसेजेस मैं पढ़ूंगा इस प्यारे से गाने के बाद। और ये गाना है वही गाना जो मैं हमेशा आप लोगों को डेडिकेट करता हूं, बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंडशिप,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: वेलकम बैक, मैं सालम मिक्स सुन रहे हैं आप मेरे साथ। मैं कौन, आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आरजी निखिल वर्मा। और सच बताओ आप लोग मुझे, है ना, ये है ना आप लोगों के फोन में वो नंबर्स हैं, वो कुछ जो आपकी ह्यूमन हेल्पलाइन है वो हेल्पलाइन की तरह ही सेव है। जिसको कॉल करते हैं ना हम, तो सामने से जवाब जरूर आता है कि अब क्या कर दिया आपने। और फनी बात यह है कि वो लोग हमारी लाइफ के अनपेड थेरेपिस्ट होते हैं, जिनको हम रिलेशनशिप इशू हो कॉल देम, ऑफिस फ्रस्ट्रेशन कॉल देम, घर पे डांट पड़ी या घर में किसी से झगड़ा हुआ यू विल स्टिल कॉल देम। और कुछ भी, उसके अलावा कुछ भी गलत हो जाए तो भी अब यार मैं क्या करूं। तो ये सब के लिए आप एक नंबर जरूर डायल करते हैं। आप और किसको करते हैं, वही जो आपकी ह्यूमन हेल्पलाइन है। और कभी कभी तो प्रॉब्लम सॉल्व वो नहीं कर पाते, लेकिन उनको साथ होना ही ना बस हमारे बीपी को नॉर्मल कर देता है। तो आज हम उन्हीं हेल्पलाइन को डेडिकेट कर रहे हैं ये वाला शो। तो आप भी मुझे बताइए कि आपकी ह्यूमन हेल्पलाइन कौन है। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 9868107070। जी हाँ, 9868107070 पे आप अपने व्हाट्सएप मैसेजेस हम तक भेज दीजिए। और बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं विदाउट अ डिले। अब मैं ये सारे मैसेजेस जल्दी से पढ़ लेता हूँ। और ये मैसेज मुझे भेजा है गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली साहब ने। लिख रहे हैं कि आदाब अर्ज है आपको भी, और लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ोन मैं अपने भाइयों के पास करता हूँ जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ऑलराइट, ओके। और ये मैसेज मुझे भेजा है मोहम्मद इम्तियाज अली ने जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से। लिखते हैं कि इतना कहना चाहता हूँ कि वैसे तो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जल्दी कोई साथ नहीं देता, और मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं खुद को कॉल करता हूँ, क्योंकि अपने आप को ही मजबूत करना है आज के समय में समझदारी है। अब पिछले मंथ की बात है, कुछ पैसों की इनको ज़रूरत होगी तो दोस्त को किसी को नहीं फ़ोन किसी ने दोस्त को फ़ोन नहीं उठाया तो तो ये कह रहे हैं कि मेरे पास 200 कॉन्टैक्ट है लेकिन उन कॉन्टैक्ट का होना जीरो है। खैर, अब बस ये भी एक तरह का एक आई वुड से कि देयर इज अगेन अ पॉइंट ऑफ व्यू देखने का, लेकिन वो बात है कि भाई दोस्त तो होने बहुत ज़रूरी हैं। और आई एम श्योर आपके कोई ना कोई दोस्त होंगे, यार आपने हिचकिचाहट से उनके पास नहीं गए होंगे तो वो अलग बात है। एक मैसेज और पढ़ लेते हैं, सफराज आलम जो कि हरदर्शना बाजार से भेज रहे हैं। कह रहे हैं मेरे ह्यूमन हेल्पलाइन मेरे रेडियो दोस्त प्रेमचंद प्रेमी जी हैं। मैं जब से ज़िंदगी के किसी मोड़ में उलझ जाता हूँ, जब भी फैसले लेना मुश्किल हो जाता है तो उनकी बातें हौसला देती और सही राह दिखाती है। कुछ रिश्ते खून से नहीं, एहसास और भरोसे से बनते हैं, और मेरे लिए प्रेमचंद प्रेमी जी वह अनमोल रिश्ता है। आप दोनों का जो दोस्ती वाला रिश्ता है ना, इससे मैं भी बहुत ही ज्यादा वाकिफ हूं, क्योंकि आप लोग बहुत मैसेजेस भेजते हैं एक दूसरे को और बहुत तारीफें भी आप लोग करते हैं। आप दोनों लिखते बहुत अच्छा है, सो आई नो दैट। ऑलराइट, पंकज का मैसेज हमें आया है अमरावती महाराष्ट्र से। लिखते हैं कि मेरे ह्यूमन हेल्पलाइन मेरे बेस्ट फ्रेंड श्रीकांत है, और जब भी मैं मुश्किल घड़ी में हूँ या मेरी तबीयत की कोई समस्या है या किसी भी चीज़ से ग्रसित होता हूँ तो सबसे पहले उन्हें कॉल करता हूँ। वो एक कॉल पर मेरी मदद करने आता है, और पिछले हफ्ते मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी। आई होप यू आर ओके पंकज। लिखते हैं कि उन्होंने मेरा कॉल किया और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया, दवाइयों का खर्चा भी उसने उठाया, जब तक मेरी अस्पताल से छुट्टी नहीं हुई तब तक मेरे साथ था। देखिए ना, ह्यूमन हेल्पलाइन नहीं कहते हैं जो हर वक्त हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ बिल्कुल बराबर खड़े रहे। तो आप बहुत लकी है पंकज जी, आपने अपने दोस्त का नाम नहीं बताया, अगर उनका नाम बता देते ना तो अच्छा, नाम आपने बता दिया श्रीकांत, ओके ओके, थैंक यू। और ये मैसेज हमें भेजा है राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से। लिख रहे हैं कि कैसे है? मैं बहुत बढ़िया जी। लिखते हैं कि आपकी बातचीत बहुत प्यारी है, मीठी है, और लिखते हैं कि दोस्ती प्यार है जो सदैव हम एक दूसरे के काम आना चाहिए। और इनका दोस्त जो है ना वो FM रेनबो भी है। ऑलराइट, तो हम भी आपके दोस्त हैं जी, और हमारा ये रिश्ता जो है ना दिल से दिल का ही तो बना ही रहता है। बीरभूम बिष्णुपुर गांव से पश्चिम बंगाल का है जो बंकिम दास हमें लिख रहे हैं कि मेरे ह्यूमन हेल्पलाइन है मेरे घर के सदस्य, जब भी किसी मुश्किल में पड़ता हूं तो मेरे घर के बुजुर्ग लोगों से डिस्कस करता हूं, बाद में बच्चों की भी राय लेता हूं और मेरी फैमिली मेरी हेल्पलाइन है। ऑल राइट, एक मैसेज और ले लेते हैं। ये अफशारा खानम धामपुर से भेज रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच। और अफशा, अगर आपने अभी भी ज्वाइन इन किया है और अगर आपको टॉपिक नहीं पता तो अब तो पता लग गया होगा, आपको बताना है आपकी ह्यूमन हेल्पलाइन। तो एक मैसेज और ले लेता हूँ बिकॉज बहुत सारे मैसेज आए हैं और मैं सारे मैसेजेस पढ़ना चाहता हूँ बिकॉज मैं किसी को मेरा नाराज नहीं करता। लिखते हैं, डियर निखिल सर कैसे हैं, मैं बहुत बढ़िया जी। अंशी का मैसेज है हमें, अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ से लिख रहे हैं कि आज के टॉपिक पर ये कहना चाहूँगी कि जब बात ह्यूमन हेल्पलाइन की आती है तो सबसे पहले मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, नाम तो मैं नहीं बताऊँगी, एक मेरी दोनों बड़ी सिस्टर्स हैं, ऑलवेज साथ देती हैं, बस ये सभी। अरे भाई, किनका तो नाम बताइए, आप ना आपने सिस्टर्स का नाम बताया ना आपने दोस्त का नाम बताया, बट खैर आपको पता है और अगर वो शो सुन रहे हैं तो उनको भी पता है, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। और थैंक यू आपके मैसेज के लिए। किशन वंजानी, नीलम वंजानी, स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से लिख रहे हैं कि आज के टॉपिक पर ये कहेंगे, हमारा एक दोस्त है जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं चाहे कोई भी समस्या हो, उनका नाम है सुरेश मोतवानी जी और वो कालका जी में ही रहते हैं और गीत संगीत हमें बेहद पसंद आ रहा है, प्लेलिस्ट लाजवाब है, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं लूंगा एक म्यूजिकल ब्रेक, बट डोंट यू वरी, अगर आपने मैसेज भेजा है तो आपका मैसेज मैं जरूर ऑन एयर लूंगा। एंड लाइक आई सेड, बहुत सारे मैसेज आए हैं तो प्लीज आप निराश मत होना कि भाई आपका मैसेज अब तक मैंने क्यों नहीं पढ़ा है। मैं ब्रेक म्यूजिकल ब्रेक से वापस लौटूंगा तो आप सबके मैसेजेस एक एक करके बिल्कुल पढ़ूंगा।

वो तो मैं हूँ, देखिए आपका यार, आपका दोस्त, आपका रेडियो का म्यूजिकल हम सफ़र, वो मैं हूँ। और मैसेजेस आपके आ रहे हैं, तो अगला मैसेज हम ले लेते हैं। ये मैसेज हमें भेजा है छाबी राम जी ने, छाबी राम सिंह राजपूत, जिला फरुखाबाद यूपी से। लिखते हैं कि आपके नियमित श्रोता हैं और रेनबो मेरे दिल की धड़कन, वेरी गुड चैनल, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, थैंक यू जी। और जिनके बारे में आपने पूछा है वो हमारे जो आरजे दोस्त हैं, वो मतलब आप शो करने क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उसकी जानकारी मुझे मिली है, तो आई एम सॉरी मैं नहीं बता पाऊँगा। ये मैसेज भेजा है हमें डॉली ने, लिख रहे हैं निखिल कोल्ड वाली वॉइस सुनाई दे रही है। ओके हाँ, मुझे एक्चुअली एक हफ्ते से कोल्ड एंड कफ चल रहा है, बट थैंक यू दोस्त है, आप नोटिस कर लिया आपने। कहते हैं मेरे पास 3 वुमेन हेल्पलाइन है मेरी दोस्त, पर खुशी हो या गम सबसे पहले भारती को कॉल करती हूँ, स्कूल टाइम से अब तक। ओ इतनी लंबी दोस्ती, यही दोस्ती होनी चाहिए। रंजीत कुमार मंडल सिक्टी अररिया बिहार से मैसेज लिख रहे हैं कि यदि मेरे जीवन में कोई कठिनाई आती है तो उसका सामना मुझे मेरे दोस्तों से

0: मिल जाता है और हर दृष्टिकोण से वो मेरी मदद करते हैं। ऑल राइट, और एक मैसेज हम और ले लेते हैं। ये मैसेज हमें आया है आदर्श का, लिख रहे हैं दिल्ली से। आई एम लविंग योर प्लेलिस्ट। मेरा ह्यूमन हेल्पलाइन मेरे मैनेजर है ऑफिस में, उनका नाम भी निखिल है। कोई भी उल्टा सीधा काम करता हूँ तो वो बचा लेते हैं मुझे हर बार। ऑल राइट, वैसे ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मतलब ज्यादातर हम सुनते हैं मैसेजेस तो वो थोड़ा अगेंस्ट ही आते हैं, बट ठीक है, अगर आपके साथ मैनेजर की ऐसी वाली बॉन्डिंग है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ह्यूमन हेल्पलाइन। हाँ ओके, ऑल राइट, थैंक यू आदर्श फॉर योर मैसेज। और मेरठ से ये मैसेज भेजा है हमें संजय ने। कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम रोज सुनता हूँ, बल्कि इंतजार करता हूँ। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, टॉपिक देना बहुत ही अच्छा लगता है। और आज के टॉपिक पर मैं बता दूँ, मैं खुद ही वन मैन आर्मी हूँ। मुझे किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ना मैं किसी से उम्मीद करता, चाहे कोई भी हो। कोई भी उम्मीद से नहीं पलटा, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो बहुत दर्द होता है। ये है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि दोस्ती रखनी चाहिए, और दोस्त फिर ऐसे ही बनाने चाहिए कि वो आपके विश्वास, आपकी दोस्ती को कभी ना टूटने दे। बट अगर आप वन मैन आर्मी है तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। बट हाँ, दोस्तों और दोस्ती का होना भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। थैंक यू अरुण, सॉरी थैंक यू संजय जी। और अगला मैसेज हमारे पास अरुण का आया है, बठिंडा से लिख रहे हैं कि मेरी ह्यूमन हेल्पलाइन मेरे पेरेंट्स हैं, जिनका नाम है गुरदीप कुमार और रीता रानी। जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मेरे माँ बाप के साथ एक स्मॉल डिस्कशन करने पर मिल जाता है। दैट्स सो स्वीट अरुण जी, दैट्स सो स्वीट कि भाई अब तो इतने सपोर्टिंग पेरेंट्स हैं और यू नो दे लिसन टू यू। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मैसेज। नूरबी खान लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश से मैसेज भेजते हैं, लिखते हैं कि हाय डियर निक्कू सर। ओके निक्कू मेरा नया नाम। आई होप आप बढ़िया और अच्छे होंगे, और आई लाइक योर वॉइस। थैंक यू। फिलहाल तो हमें ह्यूमन हेल्पलाइन मेरे पास नहीं है FM के सिवा, और बस रोना आ जाता है वहीं पे। सबसे बड़ी हेल्पलाइन आप लोगों की है। ऑल राइट, थैंक यू, दिस इज़ द स्वीटेस्ट मैसेज। तो ठीक है, हम तो रहेंगे आपके साथ 24x7। हम आपके साथ रहते हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके इंफरटेनमेंट के लिए। तो आप हमसे जुड़े रहिए 24x7, तो आपको सारी हेल्प यहाँ पे मिल जाएगी, है ना। उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर किरतपुर से मोहम्मद कासिम लिख रहे हैं कि आपको मेरा प्यार भरा सलाम, और मेरी हेल्पलाइन है मेरी माँ जो हर वक्त मेरे साथ रहती है। अगेन ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू सो मच। और शहजाद हमें सूरत गुजरात से मैसेज भेज रहे हैं, कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच शहजाद, आपका भी अपने प्रोग्राम सुन रहे हैं। एक मैसेज और ले लेता हूँ, स्वरूप नगर दिल्ली से भेज रहे हैं सूरज, लिखते हैं माय मॉम इज माय लाइफ लाइन, माय ह्यूमन हेल्पलाइन एंड एवरीथिंग। ऑल राइट, बहुत सारे मैसेजेस फिर से आ गए हैं। अरे आप लोग आज कितना प्यार दिखाओगे। बट सारे मैसेजेस मैं लूंगा, तो एक मैसेज और लेता हूँ। ये थोड़ा लंबा मैसेज है, बट मैं इस मैसेज को पढ़ लेता हूँ और उसके बाद फिर एक ब्रेक लूंगा, और ब्रेक के बाद म्यूजिक। ये मैसेज भेजा है हमें गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील व जिला हांसी से रामधारी आवारा जी ने। लिख रहे हैं कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत मेरी अर्धांगिनी है, मेरी हर मुश्किल में साथ खड़ी रहने वाली मेरी ह्यूमन लाइफ लाइन। उसके साथ से हर समस्या आसान लगती है और हर चुनौती से निकलने का हौसला भी मिल जाता है। गूगल से पहले जिसका जवाब आता है, हर मुश्किल में जो साथ निभाता है, ना कोई वेटिंग ना कोई लाइन, मेरी अर्धांगिनी ही है मेरी ह्यूमन हेल्पलाइन। अरे वाह, आपने तो क्या राइमिंग स्कीम बिठाई है। आगे भी लिख रहे हैं, आगे भी लिख रहे हैं, सुनिए आप सब। हर दर्द की दवा, हर सवाल का जवाब, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत किताब। 24x7 जो खड़ी है मेरे साथ, वो मेरी पत्नी नहीं, मेरी ताकत वर बन ओके 24x7 जो मेरे साथ खड़ी रहती है, वो मेरी पत्नी नहीं, मेरी ताकत बनकर रहती है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच इतना सारा लिखने के लिए, पर इतना बढ़िया लिखने के लिए रामधारी सिंह। एंड आई होप कि आपकी श्रीमती जी आपके साथ हैं और सुन रही हैं। आपने उनका नाम नहीं बताया, बट अगर वो साथ में है तो ऑब्वियसली वो सुनी रही होंगी और वो समझ भी गई होंगी, है ना। तो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं आप लोगों के। संजय दर्शन का मुंबई से मैसेज आया है, साथ ही साथ हमें अनिल शर्मा जी का भी सरिता विहार से मैसेज आया हुआ है, और प्रेमचंद प्रेमी जी का मैसेज भी है, सरफराज आलम भाई ने भी मैसेज भेजा है दोबारा, आशीष गोस्वामी, ज्योति गोस्वामी, सुदर्शन अनिता मुखी जी ने भी मैसेज भेजा है, दीपू ने भी मैसेज भेजा है। मैं आप सबके नाम्स ले रहा हूँ ताकि आपको लगे आपके मैसेज मुझ तक पहुँच गए हैं। नवलू वरक ने भी मैसेज भेजा है, और भी काफ़ी सारे मैसेजेस आ रखे हैं। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर एक गाना, और फिर आप सबके मैसेजेस की तरफ फिर से। ऑलराइट, सो दिस इज शॉर्ट एंड ब्रेक, आई विल बी राइट बैक।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

ये तो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि अपनी अतरंगी यारी के साथ इन सतरंगी पटरियों पर जो कि है रेनबो की, उस पर मैं हमेशा आता हूँ आपसे मिलने के लिए, है ना। तो अपनी यारी तो अतरंगी है ही। और राइट, और आपके मैसेजेस भी बहुत प्यारे प्यारे हैं, तो ये मैसेज ले लेते हैं। ये मैसेज हमें भेजा है संजय दर्शन ने, मुंबई मलाड से लिख रहे हैं कि दोस्ती सब मर्ज का इलाज है और आत्मा की आवाज़ सबसे बेस्ट।

होती है. दैट इज सो ट्रू. थैंक यू फॉर योर मैसेज. और सरिता विहार से अनिल शर्मा जी भेज रहे हैं मैसेज, कहते हैं मेरा हेल्पलाइन मेरा मोबाइल है, जहाँ जाऊँ मेरे साथ रहता है, जिससे लोग मुझसे संपर्क में रहते हैं, कहें तो दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, और जब भी ज़रूरत पड़े तो मौजूद और मदद करता है मेरा मोबाइल. सो मेरा हेल्पलाइन मेरा मोबाइल ही. ऑल राइट, फेयर इनफ. और भुवनेश का मैसेज आया है, अशोक विहार दिल्ली से लिख रहे हैं, हाउ आर यू ऑन टुडेज़ टॉपिक. आई वुड लाइक टू से दैट देयर आर मैनी पीपल फॉर ह्यूमन हेल्पलाइन इन माई लाइफ. फर्स्ट इज ऑफ कोर्स माई फैमिली, एंड देन माई सिस्टर, देन माई चाइल्ड हुड बेस्ट फ्रेंड, एंड थर्ड इज माई नाना जी. दे ऑलवेज हेल्प मी सॉल्व माई प्रॉब्लम्स, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव देम इन माई लाइफ. ऑल राइट, सो यू हैव मल्टीपल हेल्पलाइंस, सो गुड गुड भुवनेश, गुड फॉर यू. एक मैसेज हमें ये भेजा है, ओके प्रेमचंद प्रेमी जी ने भेजा है, कहते हैं कि ये कहना चाहूँगा कि जब भी सलाह की ज़रूरत पड़ती है तो अपने एक दो दोस्त आर जे मित्र जो हैं, और जिनका नाम सरफराज आलम है, उनसे भी एक बार ज़रूर सलाह करता हूँ. यकीन मानना मेरी समस्या एकदम छूमंतर हो जाती है. निखिल भाई, आप सभी आर जे मित्र बहुत अच्छा बोलते हैं, और सरफराज जी बहुत अच्छा लिखते हैं. मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सभी को. थैंक यू प्रेमचंद जी, आप भी बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ. और साथ ही साथ सरफराज साहब का भी मैसेज आ गया है, कहते हैं कि 90 उन्होंने एक शेर लिखा है कि 90 बरस का ये सफ़र आज भी दिलों में जमा है, आकाशवाणी की आवाज़ में हिंदुस्तान का कारवां है, हर घर में मोहब्बत, हर दिल में पहचान बनी, रेडियो नहीं सिर्फ ये एहसासों की दास्तां है. थैंक यू सो मच. जी हाँ, वी आर कंप्लीटिंग 90 ईयर्स ऑफ आकाशवाणी, सो ये भी एक अलग ही सफ़र है, और इस सफ़र में आप सब जुड़ते रहे और कारवां बनता गया, तो बस ये भी एक अपनी बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है. और राइट, नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं हम. सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी जी का ये भेज रहे हैं अपना मैसेज हमें. सिमरन मुखी भी हैं और शांतिनगर सोनीपत से लिख रहे हैं कि इंसान की सबसे ट्रू हेल्पलाइन उसका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है. उम्मीद दूसरों पर करोगे तो कमज़ोर बना देंगे, उम्मीद खुद पर करोगे तो ताकत बन जाएगी. दैट्स सो ट्रू. बट अगेन, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक दोस्तों हर किसी की लाइफ में होता है ना, कि जिस पर आप यकीन करते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए. और जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसों की या फिर किसी चीज की या फिर किसी दुख में. कभी कभी आप इतने खुश होते हैं, आप बोलते हैं किसको बताऊंगी. आप अपने फैमिली को करते हो या अपने दोस्त को करते हो, तो ये बहुत जरूरी भी होता है. बट हाँ, मैं आपकी बात से भी बिल्कुल रब्ता रखता हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंट होना भी बहुत ज़रूरी है. दीपू का मैसेज हमें आया है, और ये पुरकाजी मुजफ्फरनगर से लिख रहे हैं, कहते हैं मेरी हेल्पलाइन पूरा पुरकाजी है. ओके, पूरा पुरकाजी, मैं तो बोलता हूँ शायद पूरा मुजफ्फरनगर ना हो. कह रहे हैं जहाँ रहता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है. ऑल राइट, थैंक यू. और नमस्ते, ये मैसेज हमें भेजा है नवलू वरक फ्रॉम मलपण गोवा से, लिखते हैं कि ये प्रोग्राम सुन रहा हूँ, आपका सॉन्ग सिलेक्शन बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस. थैंक यू जी. गोवा में इन दिनों गर्मी बहुत बढ़ गई है, और मेरे लिए मेरी ह्यूमन हेल्पलाइन मेरी पत्नी है. हो सके तो अच्छा, आपने गाने की रिक्वेस्ट करी है, बट आई एम सो सॉरी ये सॉन्ग्स मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा. बट आपका मैसेज आया उसके लिए थैंक यू. और आप अपनी वाइफ का नाम बता दें तो अगर वो सुन रही होती तो उनको भी पता चल जाता आप उनके लिए आप हेल्पलाइन है. अगर नहीं बताया, अगर नहीं सुन रही है ना, तो प्लीज़ आज उनको ज़रूर बताइएगा कि आज मैंने बताया था कि यू आर माय ह्यूमन हेल्पलाइन. ऑल राइट. और डॉली फिर से कहते हैं कि दोस्ती जितनी पुरानी है लंबी हो उतनी ही पक्की हो जाती है. दैट्स सो ट्रू. गुदू धाकर जी का मैसेज हमें आया है मध्य प्रदेश जिले के बेड़ावन गांव से, लिख रहे हैं मेरी हेल्पलाइन तो मेरे छोटे 5 भाई बहन है. जब भी कोई समस्या आती है तो फ़ोन पर बात कर लेता हूँ, एक दूसरे के घर चले जाते हैं और समस्या का समाधान अपने आप निकल जाता है. आशीष गोस्वामी, ज्योति गोस्वामी, आराध्या एंड श्रेया फरीदाबाद BPDP से मैसेज लिख रहे हैं कि योर प्रोग्राम इज सो एंटरटेनिंग, इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच. हैप्पी सैटरडे टू यू टू. थैंक यू फॉर द मैसेज. और प्रवीण चौहान खारगोन मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति नहीं, कोई क्योंकि समस्याएं अलग अलग प्रकार की आती हैं, उनका समाधान भी अलग अलग व्यक्तियों से मिलता है. इसलिए मेरी जिंदगी में सबसे पहले मैं खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, फिर मेरे परिवार वाले, दोस्त या रिश्तेदार, और फिर भी हल नहीं होता तो मैं समय पर छोड़ देता हूँ. ये भी अच्छी बात कही है आपने. ऑल राइट. और बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों ने किए, आपका प्यार बहुत सारा दिखा, और आज के टॉपिक पे भी बहुत सारे व्यूज आए हैं. और अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो रबते वाली बात है उसी का होना भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रिलायंट होना भी बहुत ज़रूरी है. तो आप लोगों के लिए एक प्यारा सा गाना मेरी तरफ से, क्योंकि आपसे मेरा रबता है.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मैं हूं आपके साथ आपका अपना म्यूजिकल हमसफर आरजे निखिल वर्मा, और घड़ी की सुइयां अब इशारा दे रही हैं कि मुझे आपसे लेनी होगी विदा, लेकिन मिलूंगा मैं आपसे 8 बजे फिर से, और शो रहेगा म्यूजिक मस्ती, लेकिन मेरे बाद आएंगी पूजा लेकर प्रोग्राम सैटरडे सिजलर्स। तो आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है हमारे साथ और सुनते रहना है आकाशवाणी रेनबो। दो मैसेजेस मेरे पास और आए हैं। ये मैसेज हमें भेजा है कैलाश शर्मा, गुरुग्राम से भेज रहे हैं। कहते हैं कि ये कहना चाहूंगा आज के टॉपिक पर कि मेरी हेल्पलाइन तो मेरी वाइफ है, जो हर समस्या का समाधान उनके पास हमेशा होता है, चाहे पारिवारिक समस्या हो चाहे सामाजिक समस्या हो, हर चीज का सॉल्यूशन उनके पास मिल जाता है और वही मेरी फर्स्ट हेल्पलाइन है। ऑल राइट, दैट्स स्वीट कैलाश जी। और एक मैसेज और भेजा है हमें होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन और दीपांशु ने। लिख रहे हैं कि प्रोग्राम के सभी गाने हमें अच्छे लग रहे हैं और थैंक यू सो मच जी। और इसी के साथ सारे मैसेजेस आज मैंने पढ़ लिए, ये हो गया मेरा प्रॉमिस आप सबसे पूरा। बट अब ये आपसे कहना चाहूंगा कि ये बात भी है कि कभी कभी हम खुद भी ना किसी की ह्यूमन हेल्पलाइन होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। किसी के लिए हम शायद कंफर्ट कॉल होते हैं, किसी के लिए सेफ प्लेस, और किसी के लिए शायद यार प्लीज पिक अप माय कॉल वाला पर्सन, है ना। तो अगर आज किसी ने आपको याद किया है तो ट्रस्ट मी, दैट्स वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ लव। रिलेशनशिप्स सिर्फ रोमांटिक नहीं होते ऑनेस्टली। कुछ लोग बस हमारी लाइफ को ना मेंटली सर्वाइवेबल बना देते हैं, मैं ये बोलूंगा। और उन्हीं लोगों के नाम आज का मैसेज मसाला मिक्स था। आज जब ये शो खत्म हो जाएगा ना, तो बस एक काम करना, अपने ह्यूमन हेल्पलाइन को एक मैसेज भेजना और बोलना थैंक यू फॉर मेकिंग माय लाइफ इजियर। और मेरी ह्यूमन हेल्पलाइन के बारे में बताऊं तो बहुत सारे लोग हैं, यू नो एवरीवन लव्स मी और सपोर्ट्स मी, थोड़ी ज्यादा तारीफ कर दी अपनी, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि मेरी ह्यूमन हेल्पलाइन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तजिंदर सिंह नाम है, वी कॉल हिम विक्की प्यार से, और अगेन देहरादून से है, हमारी दोस्ती को 22 साल हो चुके हैं एंड इट्स लाइक मोर देन 2 decades, और हमेशा बनी रहेगी। ही इज वन पर्सन हु नोज मी इन एंड आउट, और उसको पता रहता है कि भाई बिना देखे भी अगर मेरा मैसेज गया तो मैसेज की टोन समझ जाएगा, कॉल गया तो कॉल से भी पता लग जाता है, एंड वही आपकी असली ह्यूमन हेल्पलाइन होती है जो बिना कुछ बोले भी आपको समझ जा रहा है। छोड़े जा रहा हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे गाने के साथ, और आपसे फिर मिलूंगा 8 बजे म्यूजिक मस्ती में। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई लव यू ऑल। बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के तीसरे चरण में कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के पास गणना प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने का विकल्प भी होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले, विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की भी समीक्षा की गई।

में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश क्वांटम तकनीक, डीप टेक फाइनेंसिंग और उद्योग आधारित शोध के जरिए नवाचार संचालित विकास के नए दौर की ओर बढ़ रहा है। कार्यक्रम में अनुसंधान विकास नवाचार आरडीआई निधि योजना के तहत 5 परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: Good. Take care, because it's super hot outside today. But nevertheless, I know we're looking hotter. Well, if that's the attitude you're going with, then you're gonna rock it. So enjoy a great weekend, stay close, and stay tuned, because I still have some amazing tracks lined up. But after this short little break, I gotta take. So don't go anywhere. We'll be back in just a couple of seconds.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं, और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
4: कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: couple of seconds.
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ आपके साथ आपका अपना म्यूजिकल हमसफर आरजे निखिल वर्मा और आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती। सो ट्यून करके रहिए क्योंकि बहुत सारे डांस नंबर्स आ रहे हैं आपके लिए बैक टू बैक ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो। म्यूजिक मस्ती चल रहा है, मैं हूँ आपके साथ आरजे निखिल वर्मा।

0: टाइम फॉर शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के उस पार करेंगे मोर म्यूजिक एंड मोर मस्ती, स्टे ट्यून्ड और मिलिए उस ब्रेक के पार।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावरग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: म्यूजिक बस से सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। मैं हूं आपके साथ आपका अपना म्यूजिक हम सफर आरजे निखिल वर्मा। और म्यूजिक मस्ती में अब थोड़ी सी मस्ती, बैक फ्रॉम द 2006, ये गाना हिमेश रेशमिया की आवाज में, फ्रॉम द मूवी अक्सर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ऑलराइट, और अब वक्त हो गया कि मैं लूँ आपसे इजाजत इस वादे के साथ कि मिलूंगा आपसे बहुत जल्द। आप अपना ध्यान रखिएगा, आपको छोड़े जा रहा हूँ दो बैक टू बैक सॉन्ग्स के साथ। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, अगला प्रोग्राम रेनबो सेलेंस।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आकाशवाणी रेनबो पर स्वागत है आप सभी का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेनबो सेलेब्स। आज के हमारे विशेष अतिथि हैं पद्मश्री प्रोफेसर भरत गुप्त, रत्न सदस्य संगीत नाटक एकेडमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कार्यकारी ट्रस्टी और उपाध्यक्ष राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। भेंट करता है राजलक्ष्मी स्वाइन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो और मैं हूं आपकी होस्ट राजलक्ष्मी। आज का रेनबो सेलेब्स बेहद खास है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कला संस्कृति संगीत और नाट्य परंपरा के एक ऐसे विद्वान जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक मंचों तक पहुंचाया है। हमारे आज के विशेष अतिथि हैं पद्मश्री प्रोफेसर भरत गुप्त जी। आप वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के, रत्न सदस्य हैं संगीत नाटक अकादमी से, आप पूर्व में दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर भी रह चुके हैं और अभी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कार्यकारी ट्रस्टी हैं। प्रोफेसर भरत गुप्त जी प्रख्यात रंगमंच चिंतक, संगीतविद, संस्कृत ग्रंथों के अध्येता, लेखक और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के सशक्त प्रतिनिधि हैं। उनके लेखन ने प्राचीन ग्रीक नाटक को पश्चिमी रंगमंच के रूप में देखने की धारणा को बदल दिया है, जो प्राचीन भारतीय रंगमंच की तकनीकों के साथ इसकी पूर्ण निकटता को दर्शाता है। उन्हें नाट्य शास्त्र के एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। प्राचीन ग्रीक और भारतीय रंगमंच की तुलना पर उनकी पुस्तक दुनिया के सभी पुस्तकालयों में पाई जाती है और इसे शिक्षण पाठ के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। और इस बातचीत को खास बनाता है एक और अवसर, आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा है। 90 वर्षों से आकाशवाणी केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक धड़कन, भावनाओं की आवाज और पीढ़ियों की स्मृतियों का हिस्सा रहा है। ऐसे अवसर पर प्रोफेसर भरत गुप्त जी का हमारे साथ होना हमारे लिए बेहद सम्मान की बात है। भरत जी, एफएम रेनबो में आपका हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके एफएम रेनबो में कुछ बोलने का अवसर पा रहा हूँ। ऑल इंडिया रेडियो पर आना तो हमेशा एक फख्र की बात होती है, एक विशेष ही मौका होता है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा, क्या बचपन से ही आपकी कला और संस्कृति की तरफ झुकाव था?
3: बिल्कुल, देखिए मैं एक सामान्य हिंदू घर में जिसमें निरंतर रामचरितमानस सुनने को मिले और जिसमें शास्त्रीय संगीत का अभ्यास परिवार का कोई व्यक्ति कर रहा हो और जहाँ संस्कृत में भगवद गीता और अन्य ग्रंथों के श्लोकों का उच्चारण सुनने को मिले, ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ और 11-12 वर्ष की आयु तक यही कुछ था जो कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। ये संस्कार हैं जो कि व्यक्ति के मन में बैठ जाते हैं और मुझे बहुत ही बचपन से संगीत का बहुत ही आकर्षण था, तो मैं संगीत ही सुनता था। ऑल इंडिया रेडियो पर भी मैं फिल्मी गाने नहीं सुनता था
2: जी।
3: मैं क्लासिकल म्यूजिक ही सुनता था और हमारे घर में कभी कभी देश के बड़े बड़े जाने माने कलाकार रात भर की बैठक दिया करते थे। एक बार मुझे याद है कि हमारे मुरादाबाद के घर में पंडित कृष्णराव शंकर पंडित आए थे और उन्होंने रात भर मुरादाबाद के रसिकों को अपने गायन से सराबोर किया था। फिर उसके एक महीने बाद वो यहाँ ऑल इंडिया रेडियो में नेशनल प्रोग्राम करने आए और उनके नेशनल प्रोग्राम में स्टूडियो के अंदर उनके पास बैठने की विशेष अनुमति ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर साहब ने मुझे दी, क्योंकि 8-10 वर्ष का बच्चा अलाउड नहीं होता था
2: जी।
3: तो ये सब मेरी बहुत ही विशिष्ट यादें हैं।
2: सर, इन यादों को ही मैं मान पा रही हूँ कि ये आपके लिए जो है वो पहली प्रेरणा

0: का काम किया कि आप संगीत के क्षेत्र में रुचि लें?
1: बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है
0: सर। तो इतने विविध क्षेत्रों में, एक तरफ संगीत है, एक तरफ नाटक है, दर्शन है, संस्कृत है, तो इन सब में आपकी रुचि कैसे विकसित होती गई?
1: देखिए, ये उस समय का जो पाठ्यक्रम हुआ करता था, एक तो मेरा घर, मेरा परिवार और पारंपरिक संस्कार जो कि एक हिंदू परिवार में मिले, और दूसरे

0: तो शेक्सपियर से सर कालिदास की तरफ कैसे आपने रुख किया?
1: नहीं, ये सामान्य सा मामूली सा ज्ञान तो बचपन में ही मुझे संस्कृत का पिताजी ने करा दिया था, लेकिन फिर मैंने बाद में जब मैं कॉलेज में था और इंग्लिश ऑनर्स कर रहा था, तो उस समय एक संस्कृत के आचार्य हुआ करते थे सत्यभूषण योगी, बड़े प्रखर विद्वान थे।
0: जी जी
1: तो वो मुझको संस्कृत पढ़ाया करते थे, तो हफ्ते में 4 दिन मैं संस्कृत उनसे 4 से 6 अपनी क्लास खत्म होने के बाद पढ़ता था, और फिर धीरे धीरे 5 वर्षों में उन्होंने मुझे एक प्रकार से संस्कृत का BA MA कोर्स ही पढ़वा दिया।
0: अच्छा अच्छा जी सर, आप संगीत नाटक अकादमी से भी जुड़े रहे हैं, आप संगीत नाटक अकादमी के रत्न सदस्य रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सर कि भारतीय ज्ञान परंपरा को हम दुनिया तक पहुंचा सके, ऐसा हम डिफरेंट क्या कर सकते हैं?
1: देखिए, हमारे जो कलाकार हैं और उन कलाकारों में जिनके अंदर मन में ये प्रेरणा है कि इस संगीत, इस विद्या, इस साहित्य का प्रचार हो, वो कार्य उन्होंने बहुत किया है। कुछ सरकारों ने किया है जितना कि उनको करना चाहिए था, लेकिन बड़े बड़े कलाकार हुए और वो बड़े बड़े कलाकार अपनी अथक प्रयास से और घोर कष्ट में वो विदेशों में गए। उन्होंने सन 20 में, सन 30 में वहां जाकर बड़े कठिन परिस्थितियों में प्रोग्राम किए, प्रचार किया, और फिर 60 के दशक में पंडित रविशंकर, अली अकबर खां, इस तरह के संगीतकार गए और उन्होंने भारतीय संगीत का प्रचार किया। तो वो एक युग का परिवर्तन था।
0: बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ऐसे गीत का जो अपनी मिट्टी, अपनी भावनाओं की उसी खूबसूरती को महसूस कराता है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। FM रेनबो पर सुनिए ये शानदार गीत।

0: और ये था बेहद खूबसूरत गीत एफएम रेनबो पर। आप सुन रहे हैं रेनबो सेलेब्स और आज हमारे साथ बने हुए हैं पद्मश्री प्रोफेसर भरत गुप्त जी। सर, आपने प्राचीन यूनानी और भारतीय रंगमंच की तुलना पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। आम श्रोताओं के लिए अगर आप सरल भाषा में बताएं कि भारतीय रंगमंच दुनिया के विभिन्न रंगमंचों से किस प्रकार अलग है।
1: देखिए, हमारा सबसे प्राचीन रंगमंच, इससे पहले किसी रंगमंच की कोई प्रमाण इत्यादि नहीं है जो हमको मिलता हो। तो इस संगीत का और इस नाटक की परंपरा का सबसे पहले वेद के साथ संबंध है, और जितना भी आगे चलकर थिएटर या जिसको हम नाटक कहते हैं, जब उसका विकास हुआ तो जो वैदिक गान में, साम गान में, जो वैदिक क्रियाओं में, यज्ञ करते समय जो क्रियाएं होती थी, उन सब को लेकर नाट्य की विद्या बनी। तो भारतीय नाट्य का उदय हुआ वो लोक कल्याण की एक प्रबल इच्छा के द्वारा किया गया। जो हमारे मनीषी थे, जो लेखक थे, उन्होंने ये सोचा कि जो गूढ़ ज्ञान है, जो कि दर्शन में है, जो कि वेदों में है, जो कि अन्य ग्रंथों में है, उस सबको सहज सरल रूप से हम सामान्य जनता तक कैसे पहुंचाते
0: जी।
1: तो उस दृष्टि से नाट्य शास्त्र में जैसा बताया गया है वो भी अक्षरशः सच है। उस दृष्टि से नाटकों का मंचन हुआ, विभिन्न प्रकार के नाटक थे, बहुत सारी भाषाओं में थे। प्राचीन काल में संस्कृत नाटक नहीं होता था, संस्कृत तो एक भाषा होती थी नाटक में, बहुत सारी प्राकृत, बहुत सारे क्षेत्र की सब भाषाएं एक ही नाटक में होती थी। तो उसका प्रचार जो सारे भारतवर्ष में होता था, उससे देश की पौराणिक कथाएं, देश के महापुरुष, देश के ऋषि मुनि, चिंतक, दार्शनिक, उन सब का विवरण नाटक के द्वारा सहज रूप में बच्चे से लेकर बड़े तक, बुढ़े तक, सबको पहुंचा दिया जाता था।
0: जी, तो क्या ऋग्वेद से और सामवेद से प्रेरणा लेता हुआ हमारा भारतीय नाट्य शास्त्र, आपका मानना है कि आज भी हमारी आधुनिक थिएटर को और हमारे सिनेमा को एक नई दिशा की ओर ले जा सकता है?
1: देखिए, नई दिशा की ओर ले जाने के लिए तो हमें जो परंपरा से मिला है, यानी जो हमको शास्त्र मिला है, नाट्य शास्त्र मिला है, जो हमको बड़ी बड़ी रचनाएं मिली हैं, भास, कालिदास, शूद्रक इत्यादि की, और भी जो अन्य इतने सारे नाट्यकार हुए, उनके नाटकों को जब हम दोबारा मंचन करेंगे और ऐसा करेंगे कि आज की जनता उसको बहुत ही चाव के साथ, शौक के साथ देखे, तब हमारे एक नई कला का प्रागट्य होगा।
0: जी सर, आपने इतने नए लोगों की बात की, मतलब मान लेते हैं कि हम जेन ज़ी की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सर, नाट्य शास्त्र की बात हो रही है तो भरत मुनि का नाम लेना जो है वो लाजमी है, तो भरत मुनि अगर आज के समय पे होते तो वो हमारे OTT और सोशल मीडिया के दौर को किस प्रकार देखते?
1: उसमें कोई उनको दुराव छिपाव नहीं होता। देखिए, नाटक जो है वो तो कोने कोने तक देश के जाने के लिए है। नाटक इसलिए नहीं हो कि वो किसी विशेष वर्ग का होता है, नाटक इसलिए नहीं होता कि किसी प्रकार से एक विशेष आइडियोलॉजी या दर्शन को आगे बढ़ाने का होता है। नाटक तो जनता के बीच में जितनी भी कहानियां हैं, जिस जिस की कहानियां हैं, गांव के लोगों की हैं, पहाड़ के लोगों की हैं, नदी के किनारे रहने वाली बस्तियों की हैं, उन सबको खेलता है। भारत के अंदर 10 प्रकार के नाटक हुआ करते थे पहले प्राचीन काल में
0: जी।
1: उसमें समाज की सारी विविधता के पात्र होते थे। तो उस नाटक को हम दोबारा उसी प्रकार से नाटक को खेलें। आज जैसे नाटक भाषाओं में बंध गया है, लेकिन प्राचीन काल में नाटक बहुभाषीय था। भारत का जो नाटक था वो एक भाषा में नहीं होता था। आज जैसे बंगाली थिएटर, मराठी थिएटर, तमिल थिएटर है, ये सब यूरोप के प्रभाव में 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी से पहले हमारे यहाँ जितना भी रंगमंच पर नाटक खेला जाता था उसमें कई भाषाएं होती थी पारंपरिक रूप में, और प्राचीन काल में तो 6-7 भाषाएं होती थी। तो विभिन्न प्रकार के लोग आकर उसको देखते थे, और जो खेलने वाले लोग होते थे, नटकर्मी होते थे, एक्टर्स होते थे।

0: वो भी सारे भारत में जाके परफॉर्म करते थे। तो इस प्रकार से देश को बांधने का कार्य भी नाटक ने किया, और जो प्रसिद्ध कथाएं थीं और जो हमारे अवतार हुए हैं उनके चरित्र का जो उज्जवल स्वरूप है, जो दर्शन है, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया। तो इसीलिए आप देखते हैं कि सामान्य व्यक्ति भी भारत में वो इन ग्रंथों के विषय में, जो हमारे उच्च कोटि के ग्रंथ हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी रखता है। कैसे? नाटक के द्वारा। नाटक का सिद्धांत यह है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसे चरित्र और पात्र दिखाता है।
1: तो एक तरह से शिक्षा तो देता ही है, इनर सेल्फ को रिफ्लेक्ट कर सके।
0: बिल्कुल, वो शिक्षा देता है। इसलिए बहुत कहा जाता है कि इट्स रिफ्लेक्स सोशल रियलिटी। नहीं, केवल जो हो रहा है उसे नहीं दिखाना है, जो श्रेष्ठ है, जीवन के मूल्य हैं और जो श्रेष्ठ पात्र हैं, हीरो उसे ही कहते हैं कि जिसने कुछ अच्छा किया हो, मोर देन एवरेज किया हो, उसको दिखाना है।
1: लेकिन सर, हीरो से भी तो गलतियां हो सकती है, तो हमें एक मोरल कंपास तो देता ही है, जिससे कि देता है सही और गलत के बीच में।
0: बिल्कुल, क्योंकि हीरो जो है वो मनुष्य है
1: जी,
0: और जब भगवान भी अगर मानव के अवतार में आते हैं तो वो रोते हैं, बिलखते हैं, तरह तरह की गलतियां करते हैं। तो मानव का चरित्र दिव्य चरित्र के साथ मिलकर ही नाटक में दिखाया जाता है।
1: तो कला केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि हमारे समाज को एक गति देता है। और इसी विचार के साथ अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें भावनाओं की गहराई भी है और जीवन के रंग भी हैं।

0: एफएम रेनबो पर आपका स्वागत है। आज रेनबो सेलेब्स में हमारे साथ हैं प्रोफेसर भरत गुप्त जी और बातचीत अब पहुंच रही है संगीत और साधना की ओर। सर, संगीत आपके लिए क्या है? एक कला है, एक साधना है या आपके लिए एक आध्यात्मिक अनुभव है?
1: देखिए, मैं समझता हूँ भारत में जिसने भी कुछ समय संगीत के साथ गुजारा है उसके लिए संगीत ये तीनों चीजें हैं। उसके लिए एक आध्यात्मिक खोज भी है, उसके लिए ये एक कला भी है जीवन को सुंदर बनाने की, इस रस की प्राप्ति की, और उसके लिए एक ये शिक्षा भी है अपने चरित्र को बनाने की, अपने जीवन को ढालने की। तो ये तीनों चीजें भारतीय संगीत, या संगीत ही नहीं कोई भी कला अगर भारत में हो रही है तो उसमें ये तीनों चीजें अनिवार्य रूप से हैं। और मनुष्य को अपने दैनिक जीवन से ऊपर उठना है, कुछ विचार करना है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से ऊपर भी कुछ है, अलग भी कुछ है, बड़ा भी कुछ है, हम जो जी रहे हैं उससे पूरा ये ब्रह्मांड कहाँ है, कैसे है, किसने बनाया, ये जो प्रश्न है, दर्शन के प्रश्न है, उनकी ओर ले जाने वाली चीज कला है। तो ये भारत में हमेशा से माना गया है। एक बहुत प्राचीन काल में याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि वीणा वादन तत्वज्ञो, जो वीणा वादन के तत्व को जानता हो, जाति श्रुति विशारदः, यानी प्राचीन काल में रागों को जाति कहते थे, जाति श्रुति को जो जानता हो, तालज्ञो, और जो ताल का भेद और ताल के प्रकार और ताल का विलास जिसको पता हो, ऐसा व्यक्ति मोक्ष मार्गम नियच्छति, वो मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ जाता है, यानी उसके लिए उस दिशा में जाना सरल हो जाता है। तो संगीत हमें आध्यात्म की ओर ही ले जाएगा, साहित्य भी ले जाएगा, जितनी भी कलाएं हैं, अगर वो नहीं ले जाती तो शायद वो भारतीय कला नहीं है।
0: तो हम ये मान सकते हैं कि भारतीय संगीत या भारतीय कला, चाहे वो नाटक हो, संगीत हो, मोक्ष की तरफ तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है आज की भागती दौड़ती जिंदगी में जब हमारे पास स्वयं के लिए भी समय कम है, तो हमें भारतीय संगीत जो है वो मानसिक शांति और इनर हीलिंग का तो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माध्यम बन सकता है।
1: इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि देखिए, जब तक मैं व्यवस्थित नहीं होऊंगा, जब तक मैं अपनी भावनाओं को समझूंगा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तब तक मैं चैन कैसे पाऊंगा। और जब इस भूमिका पर आऊंगा और थोड़ा बहुत ये समझ में आने लगेगा तो मैं और मांगूंगा कि इसके ऊपर भी क्या है, इससे अलग भी क्या है। तो वो निरंतर एक यात्रा है, और वही यात्रा को हम मोक्ष की यात्रा कहते हैं। मोक्ष का मतलब केवल ब्रह्म में लीन होना नहीं होता, मोक्ष का मतलब इस संसार से ऊपर उठना भी होता है, धीरे धीरे इस संसार में समझना कि ये संसार क्या है।
0: जी, तो आज के युवाओं के लिए भी हम यही संदेश देंगे कि वो अपनी भावनाओं को समझे, अपने आप को समझे,
1: बिल्कुल,
0: और जीवन में आगे बढ़ते रहे। सर, युवाओं की बात हो रही है तो आज के युवाओं को शास्त्रीय संगीत कहीं ना कहीं कठिन लगता है, आपको क्या लगता है उन्हें शास्त्रीय संगीत से जोड़ने का एक सरल तरीका क्या हो सकता है, और संगीत नाटक अकादमी की इसमें भूमिका क्या है?
1: देखिए, आपने दो बातें रखी हैं। एक तो युवा संगीत की ओर पहले से ज्यादा आकर्षित हैं, क्योंकि अब साधन बहुत हैं।
0: जी,
1: मेरे बचपन में तो सिर्फ रेडियो था, टेलीविजन हुआ ही नहीं करता था, उसका आविष्कार नहीं हुआ था, यानी मैं 50s की बात कर रहा हूँ, तो उस समय केवल रेडियो से हम सुनते थे। और आज ये मोबाइल फोन, जो स्मार्टफोन है, इसमें सब कुछ है, पूरी लाइब्रेरियां हैं, आप दुनिया भर की लाइब्रेरियों को देख सकते हैं, म्यूजियम्स को देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते। तो आज जो स्कूल कॉलेज में पढ़ता हुआ बच्चा है वो तो बहुत सौभाग्यशाली है, हमें तो मीलों जाना पड़ता था लाइब्रेरी में एक किताब निकाल कर कुछ पढ़ने के लिए। तो ये सब कुछ है, लेकिन इसमें खतरा भी है। अब तो बच्चे के अंदर ये विवेक, छात्र छात्राओं में जेंजी कह रहे हैं, यंग में, ये विवेक पैदा करना है, और ये पहले परिवार पैदा करेगा, शिक्षक पैदा करेगा। अगर ये विवेक हो गया तो आज के जितने साधन है सबका सदुपयोग होगा, सबसे आपको शिक्षा मिलेगी और जीवन आपका अच्छा होगा।
0: तो आपको अगर उनके लिए तीन कोई सांस्कृतिक आदतें सुझानी हो तो वो क्या होंगी?
1: संगीत सुनिए, अच्छा संगीत, ऐसा संगीत जो आपके मन में ठहराव और शांति पैदा कर।

0: चाहे कहीं का भी हो, लेकिन ऐसा संगीत जो आपको विचलित कर दे, काए काए हो, कर्ण प्रिय न हो, ऐसा मत सुनिए, क्योंकि उससे आपका स्वास्थ्य ही खराब होगा। जो एक गहराई और विचार की ओर ले जाने की भूमिका बनाता हो, ऐसा सुनिए। और फिर कुछ ऐसे लोगों से संपर्क करिए जो कि संगीतकार माने जाते हैं, या आर्टिस्ट माने जाते हैं, या लेखक माने जाते हैं। ऐसे लोगों से जान पहचान करिए, वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, कुछ इसका प्रयास करें।
1: तो संगीत वो सुनिए जो केवल सुना नहीं जाता है, महसूस भी किया जाता है। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं एक मधुर गीत FM रेनबो पर।

0: संगीत सचमुच मन को एक अलग ही शांति देता है और शायद यही वजह है कि भारतीय संगीत को साधना कहा गया है। प्रोफेसर गुप्त ने दर्जनों अंतर धार्मिक संवादों में भाग लिया है जो ग्रीस, यूरोप और अमेरिका में गंभीर शैक्षणिक स्थानों पर आयोजित किए गए थे। उनका सबसे प्रसिद्ध अनुभव इसराइल के रबी दानियाल स्पर्बर के साथ स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आयोजित हिंदू यहूदी संवाद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करना था। सर, इससे जुड़ा हुआ आप कोई ऐसा व्याख्या बताना चाहेंगे जिसने आपको सबसे ज्यादा भावित किया हो?
1: ये जो कार्यक्रम था ये दिल्ली में 5 दिन के लिए हैबिटेट सेंटर में हुआ था और दो पक्ष बैठे थे, यहूदी पक्ष और हिंदू पक्ष। तो उसमें मैं स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ बैठा था यहूदी विद्वानों के साथ चर्चा करने के लिए, और जो समस्याएं हैं, किन कारणों से संवाद नहीं हो पाता या भ्रांतियां हैं उनको सुलझाने के लिए। तो वो 5 दिन चला, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और बहुत गहराई से चर्चा हुई और बहुत सारे विषय उसमें लिए गए कि कैसे एक दूसरे को समझने का अच्छा प्रयास करना चाहिए और जो भ्रांतियां एक दूसरे के बारे में हैं उनको कैसे कम करना चाहिए। तो अब इसमें कोई रोचक सी चीज तो नहीं हो सकती क्योंकि ये तो एक दार्शनिक संवाद है, इट्स अ सीरियस डिस्कशन। हाँ, ऐसे कुछ लम्हे होते हैं कि जब थोड़ा बातचीत काफी टेंस हो जाती है, तो वो भी रहा। तो प्रश्न मेरा ये था कि आप लोगों को मूर्ति पूजा से इतनी नफरत क्यों है? इसका वास्तविक कारण कभी आपने सोचा क्यों है, और इसका ऐतिहासिक कारण है क्या कोई? तो उस पर चर्चा हुई। उनके जवाब ये थे कि जो लोग मूर्ति पूजा करते थे हमारे इतिहास में उनके चरित्र अच्छे नहीं थे। तो अब हमारा प्रत्युत्तर तो ये था कि अलग अलग संस्कृतियों के अलग अलग आचरण होते हैं, तो एक को दूसरे का आचरण अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके वजह से आप मूर्ति पूजा जो कि हिंदू या वो वहां के लोग भी करते थे, हिंदुओं की बात छोड़िए, मूर्ति पूजा तो पूरे मिडिल ईस्ट में रहा है, वही उनके चारों तरफ रहा है, तो आप क्यों करते थे?
0: सर, भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ बढ़ते हैं कि आपको क्या लगता है विदेशों में भारतीय संस्कृति को लेकर सबसे बड़ी जिज्ञासा क्या अभी तक भी रेलिवेंट है? ऐसी कोई जिज्ञासा जो उनको अट्रैक्ट करती है कि वो हमारे इंडिया के कल्चर के बारे में जानें?
1: देखिए, विदेश के लोग अलग अलग कारण से भारत के प्रति आकर्षित होते हैं। एक तो सीधा साधा कारण है कि भारत में माल, भारत में संपदा बहुत है, तो जो लोग चाहते हैं कि किसी तरह से व्यापार करें वो आकर्षित होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे लोग आकर्षित होते हैं जिनको ये जिज्ञासा है कि वास्तविक आध्यात्म कहाँ है, मनुष्य के जीने का लक्ष्य क्या है। तो जो गंभीरता से इस पर विचार करते हैं कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, ये कैसा बना है, वो लोग भारत के प्रति आकर्षित होते हैं, समय गुजारते हैं, अध्ययन करते हैं और कभी कभी पूरा जीवन ही बिता देते हैं।
0: आधुनिक शिक्षा का जो पारंपरिक शिक्षा से थोड़ी भिन्न है, उसका मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: देखिए, आधुनिक शिक्षा आज की तारीख में यूरोप और अमेरिका की संस्कृति की शिक्षा है और वो एक बहुत बड़े संकट में है। पिछले लगभग 100 सालों से हमने सोचा ये आधुनिक है इसलिए हमें इसे अपना लेना चाहिए, और विशेषकर जब भारत आजाद हुआ और हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी का समय था, तब ये माना गया कि वो पश्चिम की जो धारणाएं हैं वो श्रेष्ठतम हैं और उनको लागू किया गया, हमारी शिक्षा नीति वैसी बनाई गई।

0: विशेषकर उस समय शिक्षा में कला का कोई स्थान नहीं था। देखा जाए तो आज भी स्कूल और कॉलेज के करिकुलम में शिक्षा का न्यूनतम स्थान है।
1: पर आप कैम्ब्रिज के विद्यार्थी थे तो उस वक्त पे वहाँ पे कला का कुछ था और आज के कैम्ब्रिज
0: बिल्कुल नहीं
1: क्या?
0: था, बिल्कुल था ही नहीं।
1: तो ऐसे ही टाइम पे जो है हम, मुझे लगता है कि हमारा जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है
0: जी, जी।
1: और संगीत नाटक अकादमी हो गया, ललित कला अकादमी, इनका रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट हो
0: जाता है। देखिए इनका रोल तो बहुत महत्व रखता है क्योंकि ये जो रिसर्च, ये जो पूरे क्रियाकलाप करते हैं वो समाज के लिए बड़े अच्छे हैं। लेकिन अभी जो बात हो रही थी, आप शिक्षा की बात जब कर रहे हैं, तो जो एक सामान्य शिक्षा स्कूल कॉलेजों में शिक्षा नीति के अंतर्गत भारत सरकार पढ़ाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसमें कला का स्थान न्यूनतम रहा है। कहीं कहीं स्कूलों में थोड़ा सा एक सिलेबस में होता है कि आप कुछ पेंटिंग कर लीजिए, कहीं कुछ म्यूजिक कर लीजिए, कल्चर कर लीजिए, लेकिन वो सब हाशिए पर होता है, वो प्राथमिक नहीं होता। वो एक ऐसा हिस्सा नहीं होता शिक्षा का कि जो आवश्यक है, जो कंपलसरी है, जो सब करेंगे,
1: मैंडेटरी नहीं है।
0: मैंडेटरी है, जब वो नहीं है तो बच्चे के जीवन में जो घर में उसके शिक्षा है या कला है या गीत है संगीत है, वो फिर स्कूल में नहीं ला पाता। वो सब एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में कभी कभी होती है, जब कोई विशेष व्यक्ति आता है तो स्कूल वाले करा देते हैं कि भाई अब आप गा लीजिए, नृत्य कर लीजिए। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, ऐसे संगीत नहीं सिखाया जाता। अगर 3-4 साल की आयु से ही बच्चे को अगर आप ये कला सिखाएंगे, पेंटिंग करना सिखाएंगे, रोज सिखाएंगे, संगीत सिखाएंगे, तब वो ऐसे ही हो जाएगा कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अंग्रेजी है।
1: सर आधुनिक शिक्षा की बढ़ोतरी में ही जो हमारा म्यूजिक था पहले एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के रूप में जाना चाहता था, लेकिन हमारा अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो प्रयास कर रहे हैं इस दिशा में, उस संदर्भ में आपका क्या कहना है?
0: देखिए ये बहुत अच्छा विचार है और 60-70 वर्षों से ये ऐसा नहीं हुआ और अब ये नई सरकार के आने पर इस दिशा में कुछ किया जा रहा है, तो ये स्वागत योग्य है। लेकिन इसकी करने की जो गति है उसमें एक बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है, बहुत कुछ बड़ा लंबा चौड़ा काम है। अभी जैसे आपने कहा कि ये एक्स्ट्रा कैरिकुलर रूप में स्कूल की शिक्षा में था, उसका वो दर्जा नहीं था जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और जो अंग्रेजी भाषाएं एसेंशियल सब्जेक्ट्स जो माने जाते थे। तो मेरा ये कहना है कि उनको एसेंशियल संगीत को, कला को, पेंटिंग को, यानी विभिन्न प्रकार की कलाओं को, भारतीय कलाओं को, पारंपरिक कलाओं को उसी दर्जे पर लाना चाहिए जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है। क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, कुछ विशेष करियर्स बनाएंगे, उसमें जाएंगे, लेकिन आज कला के द्वारा भी बहुत सारे करियर्स मिल रहे हैं।
1: जी जी।
0: अगर आप कला में निष्णात हैं तो आप कई प्रकार के नए क्षेत्र खुले हैं, संस्कृति के क्षेत्र खुले हैं, करियर्स खुले हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर ये खुला है जिसमें आप आजीविका कमाने के लिए जा सकते हैं। तो शिक्षा को कला के लिए नई दृष्टि से सोचना चाहिए कि कला में निष्णात होकर आजीविका कमाना आज सरल है। माँ बाप डरते थे, सरकारें भी उपेक्षा करती थीं क्योंकि इसकी आजीविका नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब जमाना बदल गया है, इस पर हमको बहुत तेजी से काम करना चाहिए।
1: बिल्कुल, कला को, म्यूजिक को, संगीत को, नाटक को,
0: जितनी भी कला
1: मेन स्ट्रीम एजुकेशन लाइन में लाना चाहिए और उसको एक करियर के लिए भी एक ऑप्शन हमारे विद्यार्थियों के लिए ओपन करना चाहिए। सर आप अपने निजी जीवन में सबसे अधिक खुशी किन छोटी चीजों से प्राप्त करते हैं?
0: किस चीज से प्राप्त करता हूँ? देखिए ये तो अवस्था के हिसाब से होता है। 20 साल की उम्र में कुछ और था, 30 साल की उम्र में कुछ और था, अब मैं लगभग 80 वर्ष का हूँ तो अब आप कुछ और है। तो ये तो जो सामान्यतः होता है वो ही सब मेरे लिए रहा, लेकिन विशेषकर मेरी रुचि जो है वो कुछ दर्शन में रहती है और साहित्य और संगीत में रहती है।
1: मुझे आशा है कि हमारा आकाशवाणी संगीत से जुड़ी आपकी कुछ खुशियों में अपना छोटा सा एक अहम भूमिका तो निभाता ही होगा।
0: छोटी सी नहीं, उसकी तो बहुत ही बड़ी भूमिका रही
1: जी,
0: जैसा मैंने आपको बताया बचपन से मैं संगीत सुनता रहा हूँ, विविध प्रकार का संगीत, और जिसको अब आज शास्त्रीय संगीत कहते हैं, और मैं रविंद्र संगीत भी

0: सुनता रहा हूँ बचपन से,
1: हमारे आकाशवाणी पे लगातार प्रसारित
0: और आपके
1: भी होते
0: बिल्कुल
1: जी,
0: होता
1: जी।
0: है। और एक जमाना था जबकि देश के संगीतकारों को, नर्तकों को तो नहीं, वो तो टेलीविजन आने के बाद हुआ और नर्तकियों को, लेकिन संगीतकारों को, गाने बजाने वालों को तो रेडियो ने ही आजीविका दी। आप देखिए कि सन 50 से लेकर सन 80 तक जो लोग रेडियो आर्टिस्ट होते थे और जिनको हर महीने के करीब एक प्रोग्राम मिलता था बजाने के लिए, तो वो उनकी आजीविका में सहायक होता था।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेनबो सेलेब्स, और संगीत की जहां इतनी बात हो रही है वहां हम लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है प्रोफेसर भरत गुप्त जी हमारे रेनबो सेलेब्स में। सर, आकाशवाणी की हमने इतनी बात की, आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं और कई वर्षों से संगीत का, नाटक का, हर प्रकार की कला का एक बेहतरीन माध्यम रहा है, तो आकाशवाणी के साथ सर आपकी शुरुआती यादें क्या रही?
1: शुरुआत की याद तो ये है कि आपका जो बाल कार्यक्रम है उसमें मैं 8-9 वर्ष की आयु से आता रहा था और चांदनी चौक में हम लोग रहते थे, तो चार आने में यहाँ आ सकते थे और वो इतवार के दिन 10 बजे होता था जहाँ तक मुझे याद है।
0: जी जी जी सर, अभी भी रेडियो किड्स है हमारा।
1: तो शायद 6-7 वर्ष तक मैं आया। उसके बाद जब मैं कॉलेज में था तब कुछ एक दो यूथ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे तो उसमें भी मैं था। फिर जब AIR और टेलीविजन दोनों मिलकर बहुत कार्य करते थे तो उस समय भी मैंने कुछ टॉक्स दी, यानी मैं तब MA में था 1967 में, तो साहित्य के विषय में, नाटक के विषय में, हिंदी नाटक के विषय में मैं बोल चुका हूँ यहाँ। और एक मेरा जो कनेक्शन ये रहा कि यहाँ बहुत सारे जो संगीतकार थे, बड़े अच्छे अच्छे घरानेदार कलाकार जो एक जमाने में यहाँ की मुलाजमत कहें यानी सर्विसेज कहें उसमें हुआ करते थे, उनमें से बहुत से मेरा परिचय था। चूंकि मैंने 10 वर्ष तक सितार, आलाप जोड़, झाला, गत की तालीम पंडित उमा शंकर मिश्र जी से प्रोफेशनली ली, तो मैं यहाँ दिल्ली के जितने भी संगीतकार थे उन सब से
0: जुड़े हुए थे,
1: जुड़ा हुआ था, जानता था। और सबसे बड़ा कनेक्शन तो मेरा यहाँ आपके रेडियो में जो एक सबसे बड़ी प्रसिद्ध हस्ती हुआ करते थे, आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति, तो वो यहाँ के चीफ प्रोड्यूसर ऑफ म्यूजिक थे करीब करीब 15 वर्ष तक।
0: जी जी।
1: और संस्कृत न्यूज उन्होंने प्रारंभ किया था ऑल इंडिया रेडियो पर,
0: अभी तक
1: जो कि चल रहा जी, है जी, तो वो उन्हीं का स्थापित किया गया था। तो आचार्य जी मेरे गुरु थे, आचार्य जी से ही मैंने नाटशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया था, तो वो एक बहुत बड़ा संबंध रेडियो से रहा है।
0: सर, रेडियो का ऐसा कोई फेवरेट आपका हमारा कोई कार्यक्रम रहा या कोई ऐसी पहली बार जब आपने रेडियो सुना तो वो कौन सा कार्यक्रम था या सिर्फ संगीत ही था जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया कि अब मैं इससे जुड़ना भी चाहूंगा?
1: देखिए, एक तो संगीत था प्रमुख रूप से और दूसरे कविता पाठ जो हुआ करता था रेडियो पर आपके विभिन्न कार्यक्रमों में, तो वो कविता पाठ भी मैं बहुत सुनता था। और उस जमाने में जो शहर में कवि सम्मेलन और मुशायरे होते थे की रिकॉर्डिंग जो है वो मैं सुना करता था। और इस प्रकार से यानी मेरा जुड़ाव रहा यहाँ से सीखने का, जानने का, क्योंकि देखिए 70-80-90 तक रेडियो जो था वो प्रमुख माध्यम था संचार का। टेलीविजन के आने से पहले, टेलीविजन के आने के 10-12 वर्ष तक भी रेडियो ही चलता रहा और रेडियो की व्यापकता शायद आज भी है उतनी टेलीविजन की नहीं है। आज भी रेडियो दूर दूर तक, गांव गांव तक, पहाड़ तक जाता है, लोग सुनते हैं, तो व्याप्ति रेडियो की आज भी बहुत है। मैं ये आशा करता हूँ कि इस दिशा में कुछ नया काम किया जाएगा।
0: सर, रेडियो की मुझे लगता है व्याप्ति के लिए सबसे बड़ा आज का हमारा आधुनिक समाज भी जिम्मेदार है, क्योंकि आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में हम लोग सुनना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप कार ड्राइव करते हुए रेडियो सुन सकते हैं, आप कहीं दूर जा रहे हैं जैसा कि आपने बोला, चाहे वो समुद्र के किनारे हो या फिर आप पहाड़ों पे गए हो, तो रेडियो की पहुंच वहां तक है। तो शायद हमारा आकाशवाणी जो है और बाकी रेडियो के माध्यम भी जो है आज तक बने हुए हैं। सर, आपको इसी वार्ता से क्या लगता है कि आज

0: विजुअल्स के दौर में हमारी जो रेडियो की इंटीमेसी है वो अभी भी कहीं ना कहीं कोई भाव उत्पन्न करती है, अलग मानी जाती है। तो आपके अनुसार हमारे रेडियो की सबसे बड़ी ताकत क्या है?
1: देखिए, आज की तारीख में लोग जिसको हम टॉक कहें, प्रवचन कहें, किसी के विचार कहें, ये फिर सुनने लगे हैं। केवल देखना ही नहीं, यानी वो वीडियो नहीं, किसी का वीडियो देखकर उसको सुनना ही नहीं, क्योंकि वो देखना इतना आवश्यक नहीं होता, उनको सुनना आवश्यक होता है। तो अगर इस प्रकार से श्रव्य कार्यक्रम, सुनने वाले कार्यक्रम विशेष रूप से नए बनाए जाएं, तो मैं समझता हूँ लोग उसको सुनेंगे और एक अच्छे स्तर के बनाए जाएं। क्योंकि सच्चाई ये है कि टेलीविजन पर, क्योंकि देखिए सरकारी टेलीविजन एक पक्ष है टेलीविजन का, लेकिन व्यापक पक्ष जो है 90% जो है वो जनता का है, प्राइवेट है, उसका स्तर बहुत अच्छा नहीं है। मैं पहले टेलीविजन के ऊपर डिबेट्स होते हैं उसमें जाया करता था, 8-10 साल तक गया, अब मैंने जाना छोड़ दिया, क्योंकि वहां अब जो बहस होती है वो ऐसी नहीं होती कि जिसमें कुछ विचारशीलता हो। अगर आप इस तरह की विचारशील बहस, बातें दोबारा किसी प्रकार से सुलभ करा सकेंगे और अलग अलग विषयों, आकाशवाणी के माध्यम से, केवल संगीत या साहित्य ही नहीं, तो लोग सुनेंगे और उसके कार्यक्रम निर्धारित हों और लोगों को पता लगे कि अब अमुक समय पर कोई विशिष्ट व्यक्ति आएगा, अच्छी चर्चा करेगा, तो अगर स्तर आपका ऊंचा है तो फिर से आकाशवाणी की ओर आकर्षित होंगे।
0: लेकिन सर, जिस विधा से हम जुड़े हुए हैं, आज भी ऐसे आपने जिनको जनता का माध्यम बताया, जो हमारे हम बोल सकते हैं कि प्राइवेट माध्यम है, उस माध्यम के मुकाबले आकाशवाणी आज भी एक, आई थिंक, इकलौता ही एक ऐसा माध्यम है जो आज भी हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखा है। चाहे वो नाटक हो, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, वार्ता हो, कविता हो, इन सब विधाओं को बाकी जगहों पे इतना स्पेस नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं आकाशवाणी
1: इतना क्या
0: भूमिका,
1: इतना क्या, बिल्कुल नहीं मिलता।
0: तो इसमें हमारे रेडियो की अहम भूमिका,
1: बिल्कुल आपके रेडियो और आपके टेलीविजन की प्रमुखतम भूमिका है। देखिए, शिक्षा के लिए और उच्च स्तरीय मनोरंजन के लिए जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसके काम करने की संभावना निल है। ये काम सरकार को करना पड़ेगा, ये काम विद्वत जनों को करना पड़ेगा। और देखिए, कलाकार और विद्वान इसमें पूरी तरह से सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर बैठे हैं। तो अगर ये व्यवस्था दोबारा होती है तो बहुत से लोग आकर अपना समय देंगे।
0: सर, रेडियो की हम इतनी बात कर रहे हैं क्योंकि पॉडकास्ट कल्चर इतना चल रहा है, तो लोगों की लिसनिंग हैबिट वो दोबारा वापस आ रही है, चाहे वो किसी भी माध्यम से है, लोग आजकल देखना नहीं, सुनना, तो मान सकते हैं कि क्या ये हमारी वही पुरानी रेडियो संस्कृति की वापसी हो रही है?
1: देखिए, इसको रेडियो संस्कृति कहें, इसको वाचिक परंपरा कहें, इसको श्रव्य जो भी माध्यम है उसका एक प्रकार से दोबारा लोगों पर सुलभ होना कहें, तो ये हो रहा है और ये लोगों के लिए सुलभ होगा, क्योंकि अब लोग क्या चाहते हैं कि मैं अभी नहीं सुन सकता, शाम को सुनूंगा, तो मैं किसी प्रकार से उसको सहेज कर रख लूं और फिर दोबारा सुन लूं।
0: तो आज के युवा जो सर रेडियो को कहीं ना कहीं पुराना माध्यम कहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्यों हमारे आकाशवाणी की तरफ वो और आकर्षित हों?
1: देखिए, इसमें दोनों चीजें आकाशवाणी को करनी चाहिए। एक तो जो आपके पास पूरा खजाना है, आप ये समझिए सन 1920 से लेकर और आज तक का अद्भुत संगीत है, बड़े बड़े पूरा इतिहास है महान कलाकारों का, तो एक तो उसको सुलभ कराना, तो ये तो रहा कि जो आपका ऐतिहासिक पक्ष है। दूसरी बात है कि जो आज की आधुनिक जीवन की और दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं, उस पर चर्चा, उसके ऊपर सोच विचार, उसके ऊपर वार्तालाप, और थोड़ा खुला वार्तालाप एक प्रकार से, लेकिन जिसमें एक जिम्मेदारी रहे, जिसमें लोक कल्याण की भावना रहे, जिसमें कुछ अच्छा करने की इच्छा हो, इसको प्रकट किया जाए। जो ऐसे लगता है कि वो पुराना मीडियम था, वो पुराना नहीं, वो आधुनिकतम हो जाएगा।
0: जी सर, और हमारा तो मोटो ही है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
1: बिल्कुल
0: सर, आकाशवाणी के 90 वर्ष जैसा कि आप जानते हैं 8 जून को पूरे होने वाले हैं, तो आप 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के श्रोताओं को, आकाशवाणी के ब्रॉडकास्टर्स को, रेडियो प्रोफेशनल को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, आप लोग जो हैं वो भारत की सांस्कृतिक परंपरा की रीढ़ की हड्डी हैं, यानी ये जो माध्यम है ये 90 वर्षों में प्रमुखतम रहा है, और इसके कुछ ऐतिहासिक कारण अलग भी हैं। वो ये है कि हमारे यहाँ जो वाचिक परंपरा है,

0: और जो हमारे यहाँ परंपरा है कि ज्ञान को बोलकर बांट दो, उससे रेडियो का संबंध है। रेडियो जब नहीं था तब ये दूसरे साधनों से होता था, कथावाचकों से, गुरुओं से, उपदेश देने वालों से। अब ये काम रेडियो ने किया तो रेडियो दोबारा उस काम को कर सकता है और सामाजिक जिम्मेदारी जो है उसको निभा सकता है। और मैं ये कहूँगा कि देखिए, कुछ ऐसे पक्ष हैं हमारे समाज के जिनको रेडियो ने कुछ ही कारणों से बहुत छोड़ दिया है हमेशा। जैसे हमारे बहुत सारे जिनको धार्मिक विषयों पर बोलने वाले विद्वान, कथाकार हुए, गुरु हुए, इस प्रकार के लोग हैं, उनको हमने ये कह के कि ये तो एक अलग विशेष वर्ग है, एक धर्म विशेष है, तो सेक्युलर स्टेट में इनकी जगह नहीं होगी, तो इसलिए इनके साथ संवाद, इनके साथ बातचीत ये रेडियो पे इतनी नहीं हो पाई। तो मैं समझता हूँ कि वो होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी संप्रदाय विशेष का प्रचार करें या किसी व्यक्ति का प्रचार करें, लेकिन जो धर्म से संबंधित चर्चाएं हैं, समाज के अंदर जो चर्चाएं हैं, उसमें प्रबुद्ध और अच्छे जानकार लोगों को बुलाकर उसकी चर्चाएं होनी चाहिए।
1: जी जी, इंडियन कल्चर को हम प्रमोट भी करेंगे और सर आपके सुझावों का हम मान भी रखेंगे। और सेक्युलर स्टेट की आपने बात की, लेकिन हम लोगों के यहाँ पे कई ऐसे प्रायोजित कार्यक्रम हैं। सुबह हमारी रामचरितमानस से शुरू हो रही है,
0: तो हमेशा ही होता है।
1: जी सर, मतलब हम हर धर्म से जुड़े हुए जो चिंतन है हमारा कार्यक्रम, उसमें हम बड़े बड़े गुरुजनों की बातों को हम साझा करते हैं और सुबह की शुरुआत ही ताकि हमारी श्रोताओं के एक पॉजिटिव थॉट के साथ हो।
0: बिल्कुल।
1: प्रोफेसर भरत गुप्त जी, आज की ये बातचीत केवल एक इंटरव्यू नहीं थी बल्कि भारतीय संस्कृति, संगीत, रंगमंच, ज्ञान और संवेदनाओं की एक सुंदर यात्रा रही। और आकाशवाणी के 90 वर्षों के इस विशेष अवसर पर आपका हमारे साथ होना सर हमारे लिए सचमुच एक गर्व की बात है। FM रेनबो की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मुझे भी बड़ा फख्र है कि मैं आया, आपकी बातें मैंने सुनकर कुछ यथाशक्ति उत्तर दिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि रेडियो जो है वो एक नए प्रकार से देश की सेवा कर पाएगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज रेनबो सेलेब्स में हमारे साथ उपस्थित थे प्रोफेसर भरत गुप्त जी, जो पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय, रत्न सदस्य संगीत नाटक अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कार्यकारी ट्रस्टी और वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के। दोस्तों, ये था आज का विशेष रेनबो सेलेब्स। मैं हूँ राजलक्ष्मी और आप सुनते रहिए FM रेनबो। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेनबो सेलेब्स। आज के अतिथि रहे पद्मश्री प्रोफेसर भरत गुप्त, रत्न सदस्य संगीत नाटक एकेडमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कार्यकारी ट्रस्टी और उपाध्यक्ष राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थीं राजलक्ष्मी स्वाइन।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि

0: भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरण के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन की औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंध, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता CBI की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान CBI ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। CBI ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले सभी निर्णय को भी सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित कर रखने का भारत का फैसला अभी भी लागू है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियों और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Well, I fell in love with both Whitney Houston and Kevin Costner, all in the same movie. Well, I don't know about you guys, but the fact is I'm having a gala time here today. What a gorgeous Saturday evening. I know it's hot, but so what? We're indoors and we are having some great tracks to be played. At the moment, you're tuned in live with me only on Akashvani FM Rainbow 102.6, musically yours. My name's Pooja Anand. This is In The Groove and we're having the grooviest time today with all the groovy songs that I have to play for you from the movies. Well, I am crazy about the movies and of course, their songs, their singers. Well, this is for me officially La La Land. No, I'm not playing that track. It's been played too many times. Of course, Shallow's also been played so many times, but definitely I'm going to be talking about them. Can't help but say a little bit about those movies too. So come back after this short break I gotta take. Trust me, you don't want to miss what I have in store.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर सुरों की महफिल रंगे महफिल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आज विनीता बेदी। और दोस्तों, रात जब अपने आंचल में थोड़ी खामोशी, थोड़ी तन्हाई और थोड़ी सी नमी समेट लेती है ना, तब कहीं जाकर जन्म लेती है गजल। गजल जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है, जो अल्फाज से कम और खामोशियों से ज्यादा बात करती है। आज की इस महफिल में हम उन नगमों को समझाएं

सूफियाना रंग में डूबी, इश्क को इबादत बना देने वाली बहुत ही खूबसूरत पेशकश पूरन चंद वढ़ाली साहब की आवाज में, खास तौर पर आपके लिए।

दोस्तों रंग महफिल में आज आप हैं विनीता बेदी के साथ। पता है कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सुबह की पहली रोशनी जैसी लगती हैं, धीरे धीरे दिल पर उतरती हुई, और कुछ एहसास ऐसे जो दिन रात हमारे भीतर चलते रहते हैं बिना किसी दस्तक के। अब सुनिए हरिहरन की ऐसी ही आवाज़ में एक नर्म और रेशमी गजल, मुझे बहुत पसंद है, आपको भी आएगी।

0: शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं, इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: दोस्तों आकाशवाणी दिल्ली पर आप हैं, विनीता वेदी के साथ प्रोग्राम चल रहा है रंग महफिल। तन्हाई जब बहुत देर तक साथ रहती है ना, तो दीवारें भी सुनने लगती हैं। ध्यान दीजिएगा, तन्हाई जब बहुत देर तक साथ रहती है तो दीवारें भी सुनने लगती हैं, उनसे बातें होने लगती हैं और फिर इंसान अपने ही घर में अपनी ही यादों का मुसाफिर बन जाता है। इसी एहसास को अल्फाज देते हैं पंकज उदास।

दोस्तों, रंग महफिल की महफिल में आज आप हैं मेरे साथ। मैं हूं विनीता बेदी। और कहते हैं कि इश्क सिर्फ मिलना नहीं होता, इश्क कभी सिर्फ मिलन नहीं होता, कभी वो एक लंबा इंतजार भी होता है। एक ऐसा सफर जहां दिल थकता तो है मगर रुकता नहीं, क्योंकि रुक गया तो शायद रास्ता ही भूल जाएगा। और लीजिए, इसी बात पर पेश है एक बेहद उम्दा गजल आशा भोंसले की आवाज में, जिसके हर शेर में रिश्तों की तपिश और जुदाई की धूप है।

0: दोस्तों, सच्चाई ये है कि इश्क को समझना शायद आसान नहीं। कभी वो रोशनी बनकर राह दिखाता है तो कभी धुएं की तरह आंखों में उतर आता है, और तब दिल बस यही पूछता है कि आखिर एक इश्क है क्या और क्यों? क्या वाकई सिर्फ किसी से कुछ कह देना भर इश्क है?
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं विनीता बेदी के साथ प्रोग्राम रंग महफिल में। दोस्तों, मोहब्बत में दीवानगी अगर ना हो तो शायद वो मोहब्बत अधूरी ही रह जाती है, क्योंकि कुछ लोग दिल में इस तरह बस जाते हैं कि उनसे बिछड़ कर भी इंसान कभी भी उनसे अलग नहीं हो पाता, है ना? जगजीत सिंह की आवाज में जब कोई भी गजल कानों में उतरती है तो लगता है कि मोहब्बत और उसकी दीवानगी शायद सामने शक्ल पा गए हैं। और इस गजल के साथ ही इश्क, तन्हाई, याद और रूह की इन सरगोशियों के साथ आज की रंगे महफिल यहीं सिमटती है। उम्मीद है इन गजलों की खुशबू काफी देर तक आपके एहसासों में बसी रहेगी। मैं हूं विनीता बेदी, अब आपसे इजाजत चाहती हूं। नमस्कार, शब्बा खैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के

थी कि दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय सीओए के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति ने अध्यक्ष पीपी चौधरी ने मीडिया को बताया कि समिति विभिन्न राज्यों से आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही है। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और शिक्षा विभाग, बैंकों तथा सरकार के संबंधित विभागों पर असर पड़ता है। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी। कोलकाता के लिए फिन एलन ने 93 रन की सर्वाधिक पारी खेली। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,

0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं।

हैं, इसके लिए आप अपने सुझाव 24 अप्रैल तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जी खड़े खड़े क्या देख रहे हैं?
1: कमाल है, उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका।
0: तो चांद को ही देखिए ना।
1: मगर वो सांस नहीं लेता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते

और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा मारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने मीडिया को बताया कि समिति विभिन्न राज्यों से आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही हैं। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और शिक्षा विभाग, बैंकों तथा सरकार के संबंधित विभागों पर असर पड़ता है। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी। कोलकाता के लिए फिन एलन ने सर्वाधिक 93 रन की पारी खेली। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए श्रोताओं, चलिए अब आपको ले चलते हैं हम अपने अगले कार्यक्रम की ओर, सुहानी रात में।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: कोयल सी तेरी बोली,
6: आय हाय,
5: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
7: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार और लोगों के आपसी संबंधों का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है। ये संबंध आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित रहे हैं। इस संबंध की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कड़ी नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 में स्वीडन यात्रा की शताब्दी से जुड़ी है। अब यह साझेदारी सांस्कृतिक आधार से आगे बढ़कर मजबूत औद्योगिक और आर्थिक सहयोग में बदल रही है। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के आमंत्रण पर आज और कल स्वीडन के गोथेनबर्ग के दौरे पर रहेंगे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने कल डोमिनिका की विदेश मंत्री के साथ फार्माकोपिया और त्वरित प्रभाव परियोजना QIP पर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। श्री मार्गेरिटा ने डोमिनिका के विदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार तथा ऊर्जा मंत्री विंस एंडरसन से मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में एविएशन टर्बाइन फ्यूल FTA पर लगने वाले VAT को 25% से घटाकर 7% करने का फैसला लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के विजन के अनुरूप लिया गया है और इसका उद्देश्य विमानन क्षेत्र को राहत देना, पर्यटन को बढ़ावा देना और लॉजिस्टिक गतिविधियों को गति प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि रियायती VAT दर फिलहाल 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और दिल्ली के हित में लिया गया यह फैसला सरकार के लिए लगभग 985 करोड़ रुपए के संभावित राजस्व नुकसान का कारण बन सकता है। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। मामले के एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है, जिसने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, जबकि संजय रॉय ने अपनी रिहाई की अपील की थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आतंकियों की तलाश के लिए बहुक्षेत्रीय तलाशी अभियान शुरू किया है। ये कार्रवाई मेंढर तहसील के मनकोट क्षेत्र में 12 मई को ही उस घुसपैठ की कोशिश के बाद शुरू की गई है, जिसमें एक घुसपैठिया मारा गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR खर्च है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार

0: सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार और लोगों के आपसी संबंधों का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है। यह संबंध आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के आमंत्रण पर आज और कल स्वीडन के गोथेनबर्ग के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और हरित परिवर्तन, AI प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जन संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे, जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन भी मौजूद रहेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे के दौरान विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। अहमदाबाद और गांधीनगर में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय में श्री शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और वृक्षारोपण अभियान की

समीक्षा की। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर के आधुनिकीकरण और घाट लोडिया गोटा चांद लोडिया तथा थलतेज क्षेत्रों में जिलों को जोड़ने की परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर दिया था। मामले के एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है, जिसने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, जबकि संजय रॉय ने अपनी रिहाई की अपील की थी। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ ने ऑपरेशन अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 माओवादियों को गिरफ्तार किया है और 5 अन्य माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। गिरफ्तार किए गए 8 माओवादियों में 2 संभागीय समिति सदस्य और 2 प्लाटून पार्टी समिति सदस्य शामिल हैं। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटन्स को 29 रन से हरा दिया। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनील नारायण ने 2 ओवर में 29 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के आमंत्रण पर आज से स्वीडन के गोथेनबर्ग की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच लगातार मजबूत होते रिश्तों में एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जा रही है। यह दौरा प्रधानमंत्री की व्यापक यूरोप यात्रा का 3रा चरण है और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष जनवरी में लागू होने के बाद यूरोप की उनकी ये पहली यात्रा भी है। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे, जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन भी मौजूद रहेंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान कल पहले दिन विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। अहमदाबाद और गांधीनगर में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय में श्री शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर के आधुनिकीकरण और घाट लोडिया, गोटा, चांद लोडिया तथा थलतेज क्षेत्रों में झीलों को जोड़ने की परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। गृहमंत्री ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के 70 नव निर्वाचित पार्षदों से भी मुलाकात की। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। कार्रवाई के दौरान CBI ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट

स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय सीओए के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। कोलंबिया में एक पूर्व मेयर रोजर्स देविया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके साथ उनके एक सहयोगी एडर कॉर्डोना की भी मौत हो गई। देविया पहले क्यूबराल शहर के मेयर रह चुके थे और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अबेलार्डो डी ला एस्प्रेला के समर्थक थे। इस घटना को राजनीतिक हिंसा माना जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। वहीं कल हुए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। अयोध्या से रामलला।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन भी यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। ये यूरोप के उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी की इस वर्ष जनवरी में ऐतिहासिक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद यूरोप की पहली यात्रा है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के अंतर्गत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इस दौरान टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण के लिए साझेदारी की है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा बागमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान CBI ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र तैयार करने की टीम में शामिल थे। CBI ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा बागमारे से लीक सामग्री एकत्र की। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और समाज के अन्य वर्गों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति की अध्यक्ष PP चौधरी ने बताया कि समिति विभिन्न राज्यों से आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही है। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, इससे आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और शिक्षा विभाग, बैंकों तथा सरकार से संबंधित विभागों पर असर पड़ता है। RG कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। मामले की एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के सभी निर्णय को भी अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि स्थगित करने का भारत का निर्णय अभी लागू है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और CRPF ने ऑपरेशन अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। 5 अन्य माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। गिरफ्तार किए गए 8 माओवादियों में 2 संभागीय

समिति सदस्य और दो प्लाटून पार्टी समिति सदस्य शामिल हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यानिक सिनर इटली ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में कल सिनर ने दानिल मेदवेदेव को हराया। फाइनल में आज सिनर का मुकाबला कैस्पर रूड से होगा। रूड ने दूसरे सेमीफाइनल में इटली के लुसियानो डार्डेरी को हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।